हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 10वीं तिथि तदनुसार 1 सितंबर 2026 प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार हिंदी में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम

0: रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

प्रभु नाम का जाप ही जीवन के सारे कोलाहल को समाप्त कर मन में शांति और एकाग्रता लाता है। जब मन की डोर ही उस परमेश्वर से जुड़ गई तो फिर भला कैसी अशांति।

हे प्रभु, मैं अकिंचन आपके गुण गाऊं, स्वीकार करना प्रभु मुझे जो कदाचित भूल कर जाऊं। एक तुम ही नाथ मेरे, तुम बिन शरण कहां मैं पाऊं, चरण अनुरागी बनकर जीवन सफल बनाऊं, भव सागर तर जाऊं।

सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस आज सुनिएगा 298वां भाग। संगीत सरिता कार्यक्रम 6:45 से इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा और किराना घराना। ये आज नई श्रृंखला शुरू हो रही है। पहली कड़ी आज से सुनिएगा कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के, 8 से सुनिए समाचार।

नमस्कार प्रभात। सुबह 8:15 से त्रिवेणी और 8:30 से चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार सी अर्जुन पर और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह 9:30 से। 10 बजे से सेहत नामा कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धुरत से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी सुनिएगा। 11:00 से रंग तरंग, 12:00 से हिंदी में समाचार, 12:05 से सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1:00 से सुरीला सफर और 2:00 से त्रिवेणी का पुनः प्रसारण, 2:15 से दोपहर समाचार और दोपहर 2:30 का समय है सदाबहार नगमे कार्यक्रम का और 3:00 सखी सहेली कार्यक्रम के साथ सखियों का इंतजार होगा खत्म।

शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेलुलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में अभिनेता जमील खान से बातचीत अनुराधा उपाध्याय की और इस कार्यक्रम के बाद 5 बजे से छाया गीत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। तराने नए पुराने कार्यक्रम का समय 5:30 का। 6 बजे से हिंदी में समाचार और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:35 से संध्या रंजन, 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना पहली कड़ी। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। शाम 7 बजे से जयमाला।

शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस विवाह यंत्र इस प्रहसन की पहली कड़ी सुनेगा हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे से, लेखन N.R. टंडन का, निर्देशन मुख्तार अहमद का, 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या और 9 बजे से आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम संगीतकार सी अर्जुन पंत के केंद्रित है ये कार्यक्रम। रात 10 बजे से छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। रात 11 बजे से रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि सुबह और रात्रि 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम में आज ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार सी अर्जुन पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम रामचरितमानस और आज सुनेंगे कड़ी 298।

रावण का दूत शुक, जिसको उसने विभीषण के पीछे पीछे श्रीराम की सेना का भेद लेने के लिए भेजा था, लौटकर रावण को वानर सेना की विशालता और बल का

विवरण देता है। उसने द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, शट, जामवंत आदि वीरों के अतुलनीय बल की झलक देखी थी और सहज ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। शुक ने रावण को वास्तविकता से परिचित कराने का भरसक प्रयत्न किया। वे करोड़ों शूरवीर रावण को सहज ही परास्त कर देंगे। सभी वानर समुद्र को सोख लेने या पर्वतों से उसे पाट देने को उतारू हैं, केवल राम की आज्ञा उन्हें नहीं मिल रही। स्वयं शुक तथा अन्य गुप्तचरों की भी उन्होंने मारपीट कर दुर्गति कर दी थी। वह तो श्री राम की सौगंध सुनकर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। शुक संवाद को रावण हंसकर टाल देता है, किंतु जब उसने लक्ष्मण का पत्र उसे दिया तो रावण एक बार भय से कांप गया।

श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: अपनी शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा में किराना घराने का विशेष स्थान है। आज की इस श्रृंखला में हम जानेंगे इस घराने की गायकी की विशेषताओं और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले महान संगीत साधकों के बारे में। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा शास्त्रीय संगीत। वो चाहे उत्तर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो या कर्नाटक शैली का शास्त्रीय संगीत हो, और ये संगीत संरक्षित हुआ है, सहेजा गया है गुरु शिष्य परंपरा से, और शास्त्रीय संगीत की इस धरोहर को संवर्धित किया है, आगे बढ़ाया है, इसे निरंतर रखा है घरानों ने। और इसीलिए इस श्रृंखला का शीर्षक है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी को,
2: जो हमारी अपनी आकाशवाणी परिवार की सदस्य हैं, आकाशवाणी पणजी से उद्घोषक के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं, और मूर्धन्य शास्त्रीय गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर गंगूबाई हनगल की शिष्या हैं। और डॉक्टर शकुंतला भरणे आकाशवाणी की अश्रेणी की कलाकार हैं।
1: शकुंतला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद जी।
1: डॉक्टर शकुंतला भरणे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं श्री रोहिदास परब। रोहिदास जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो में। और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री ऋषित होनावरकर। ऋषित जी, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। शकुंतला जी, ये जो हमारा शीर्षक है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, इस शीर्षक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपने ये शीर्षक चुना है?
3: किराना घराना जी, स्वर प्रधान घराना है, और मैं रही किराना घराने की गाने वाली
1: जी जी,
3: यानी मेरी गुरुजी पद्म विभूषण डॉक्टर गंगूबाई हनगल, उससे पहले पंडित रामराव नायक, जो पंडित फिरोज दस्तूर के शिष्य के शिष्य थे।
1: अच्छा,
3: मेरी शुरुआत ही किराना के स्वर से ही हुई है।
1: संगीत की परंपरा में ये घराने जो हुए हैं, कितने अलग अलग घराने हैं, इनकी शुरुआत कब और कैसे हुई?
3: संगीत के बहुत सारे घराने हैं, लेकिन मुख्य घराने चार ही है, ये तो हम जानते हैं। अभी देखो, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गुरु शिष्य परंपरा से विकसित विशिष्ट गायन या वादन को घराने की शैली। सबसे पुराना घराना जो है वो ग्वालियर घराना है।
1: अच्छा,
3: आगरा घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना और किराना घराना
1: जी।
3: उसके सिवाय और भी पतियाला घराना, रामपुर घराना, रामपुर सहसवान घराना, भिंडी बाजार घराना, मेवाड़ती घराना, बनारस का घराना, बहुत सारे, इंदौर घराना आमिर खान जी का, और ये सब बहुत सारे घराने हैं। लेकिन मुख्य चार क्यों है कि उनकी परंपरा चालू है।
1: अच्छा,
3: ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना ऐसा माना गया है। ग्वालियर घराने में हिंदुस्तानी ख्याल गायकी का सबसे बड़ा ये प्राचीन घराना है।
1: अच्छा,
3: तानसेन से टाइम से वो आज तक चालू है ऐसा बोलते हैं। सरल और शास्त्र सम्मत प्रस्तुति इसकी विशेषता है।
1: अच्छा,
3: सुबोधता, सुगमता, शास्त्र को एकदम ऐसा स्मूथली लेकर आगे जाना, ये ग्वालियर की खासियत है
1: जी।
3: अब हम सुनेंगे आगरा घराना क्या है। आगरा घराना दमदार आवाज,
1: अच्छा,
3: बोल बाट लहकारी, ध्रुपद अंग, ये सब आगरा की खासियत है। आगरा वाले थोड़ा टेक्निकल रहते हैं।
1: अच्छा,
3: तांत्रिक रहते हैं, यानी ताल के साथ खेलना।
1: अच्छा,
3: इस पर उनका कटाक्ष रहता है। अभी जयपुर घराने के बारे में सुर और ताल दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। जटिल रागों की निवड़ करना,

0: बौद्धिक विचार करना
1: जी,
0: और तान प्रकार भी थोड़ा सा जटिल पेचीदा होता है इसमें जयपुर गायकी में। और गायकी बहुत अच्छी है, बौद्धिक है। वैसा अपना किराना घराना जो है
1: जी,
0: वो एकदम स्वर प्रधानता वहाँ है
1: जी,
0: स्वर शुद्धता, श्रुति का सूक्ष्म प्रयोग, मिंड और विलंबित लय में राग विस्तार इसकी प्रमुख विशेषता है
1: जी।
0: सुर के लगाव में अचूकता, इसीलिए जयन जी किराना घराने का एक ब्रीदवाक्य है।
1: अच्छा,
0: सुर गया तो सिर गया, ताल गया तो बाल गए। किराना घराना कैसा कब शुरू हो गया, उसको किराना कैसा नाम पड़ गया
1: जी।
0: किराना अथवा कैराना,
1: अच्छा,
0: सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है।
1: अच्छा,
0: इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं। कोई ऐसे भी कहते हैं कि महाभारत कालीन दानवीर राजा, हम तो जानते हैं दानशूर कर्ण का आपने सुना है, कर्ण की नगरी को कर्ण नगरी कहते थे।
1: अच्छा।
0: और उनका जो अपभ्रंश हो गया वो किराना हो गया।
1: अच्छा,
0: कर्ण
1: अच्छा,
0: नगरी का अपभ्रंश। और एक बात भी है
1: जी,
0: यूपी के किराना सहरानपुर के एम्परर जहांगीर जो थे राजा, बहुत सारे म्यूजिशियन को उन्होंने रिसेटल किया।
1: अच्छा।
0: रिसेटल यानी तब बाढ़ आई थी और उसके कारण लोगों के घर नहीं थे, घर जमीन दोस्त हुए थे, और कुछ सारंगी वादक, कुछ सतार वादकों के लिए उन्होंने घर बांध के दिया
1: जी,
0: वो उसी गांव में दिया।
1: अच्छा।
0: और इसे प्रस्तापित किया उधर। हमारे किराने घराने के प्रवर्तक खान साहब अब्दुल करीम खान
1: जी,
0: उन्होंने लिखे रखा है कि जिसको हम कुरुक्षेत्र कहते हैं उस शहर का नाम किराना है।
1: अच्छा।
0: अर्थात वो राजा कर्ण का या हुसैनपुर और किराना में 20 मील का अंतर है दोनों गांव में।
1: अच्छा।
0: किराना का मैं यानी खान साहब रहने वाला हूँ, मैं वो किराना गांव के है, और खान साहब बंदे अली भी किराना घराने के रहने वाले।
1: अच्छा।
0: बंदे वाली मालूम है ना। बंदे अली खान यानी वो बिनकार बंदे अली खान कहते, उनके
1: अच्छा।
0: घराने से ही हमारा घराना ताल्लुक रखता है
1: जी,
0: कि वो रुद्र वीणा बजाते थे।
1: अच्छा।
0: बंदे अली खान
1: जी,
0: वो भी उसी गांव के है, इसीलिए कहते हैं कि वो घराना बंदे अली खान से उधर से ही आया है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: किराना घराने के बारे में बहुत सारी दंतकथा भी मिलती है। एक प्रसिद्ध दंतकथा संक्षिप्त में आपको बता दूं
1: जी,
0: राजा मानसिंह ग्वालियर के दरबार में नायक धोंडू और नायक मन्नू थे। नायक यानी प्रतिभावान, सृजनशील
1: जी।
0: नायक धोंडू कृष्ण भक्त थे बहुत ही। उन्होंने वृंदावन में जाकर तपश्चर्या की और साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए।
1: अच्छा।
0: और तुम्हें क्या वर दूं, ऐसा उन्होंने पूछा।
1: अच्छा।
0: तब धोंडू नायक ने कह दिया, क्या कह दिया, तुम्हारे बांसुरी के स्वर मेरे गले में दे दे।
1: ओहो।
0: नायक धोंडू और नायक मन्नू यह घराने की शुरुआत उनसे हो गई,
1: वहां से हुई।
0: हाँ। और कुछ लोग इस गायकी का संबंध गोपाल नायक से जोड़ देते हैं। नियाज अहमद, फैज अहमद, खान साहब किराना घराने का परंपरा का नायक बैजू बावरा, उसी संबंध से ये यहाँ मानते हैं। किराना घराने के वंश परंपरा में दो मत प्रवाह है
1: जी।
0: पहला, किराना घराने की गायकी वंश परंपरा को जिनको मिली है वो मशकूर अली खां, आपने नाम सुना होगा, मशकूर अली खां, और उन्होंने अपनी परंपरा के अपने जो संकेत स्थल है उधर सब दे दिया है।
1: अच्छा।
0: दूसरा जो है अब्दुल करीम खान साहब का, जिसे हम हमारे घराने के प्रवर्तक कहते हैं, लेकिन उससे पहले भी किराने घराने का बहुमूल्य योगदान दिया गया है, यानी कितने सालों से पहले आप सोच सकते हैं।
1: जी जी जी।
0: पहली शाखा तो हो गई, और शुरू का जो धोंडू नायक थे वो 1456 थे। बाद में गांजी खां 1656, रहमत अली खां 1748
1: जी,
0: वाजिद अली खां और काले खां का तो साल नहीं मिला, अब्दुल करीम खां 1872
1: जी,
0: सुरेश बाबू माने और बाद में सवाई गंधर्व, उसके बाद तो सबको मालूम है।
1: हाँ। जी।
0: उसके बाद डॉक्टर गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित फिरोज दस्तूर, पंडित सवाई गंधर्व का ये शिष्य परिवार है
1: जी।
0: सुरेश बाबू माने का शिष्य परिवार, उससे पहले वहीद खां और अब्दुल करीम खां
1: जी, जी।
0: वहीद खां के शिष्य सुरेश बाबू माने हीराबाई बड़ोदेकर, और जिसके गुरु अब्दुल करीम खां के इससे जो आए हैं वो हीराबाई बड़ोदेकर।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: दिन है सुहाना आज पहली तारीख है

हमको पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना, करो ना बहाना बहाना बहाना, करो ना बहाना।

मेहमान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

नहीं रास्ते, खेती को गम है कि पैसों चलो हाथ से। अरे लुटेगा खजाना खजाना खजाना, लुटेगा खजाना आज पैसे।

0: खेल मजेदार है। आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाचने का दसाना, पाचने का दसाना, पाचने का दसाना,
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना।

आवाज कमर जलालाबादी के बोल सुधीर फड़के का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और आज संगीतकार सी अर्जुन का जन्मदिन है और उनके संगीतबद्ध कुछ गीत आपको इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं।

0: दिलों में जरा लाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख आज पहली तारीख है।
1: पहली तारीख फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार के।

0: पुनर्मिलन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, सी अर्जुन का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर।

प्रातः के 7:15 हुए हैं। आइए आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद 7:20 से और शाम 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रातः 7:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम अमृत कलश। प्रातः 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संगम और कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन सकेंगे दोपहर 2 बजे से। प्रातः 8:30 से कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आज की बात होगी स्वस्थ जीवन के लिए सही पोषण। साथ ही इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गीत और जानेंगे समाचार पत्रों से शहर की कुछ खास खबरें। कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुनेंगे प्रातः 9 बजे से और कार्यक्रम कुछ तुमने कहा हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1 बजे से। प्रातः 9:30 से और रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। दोपहर 12:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग। शाम 5:30 से कार्यक्रम लोक संगीत और गूंजे स्वर गांव के आप सुनेंगे शाम 6:30 से। दोपहर 2:30 से कार्यक्रम नारी जगत में चर्चा होगी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह विषय पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दो

दोपहर 3 बजे से, शाम 5 बजे से कार्यक्रम युवाणी में चर्चा होगी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह विषय पर। साथ ही भारतीय इतिहास से जानेंगे नील विद्रोह पर जानकारी और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे चक्रव्यूह। शाम 6:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम शाम सुहानी और कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन सकेंगे रात्रि 8:15 से। शाम 6:50 से आकाशवाणी लखनऊ से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे से कार्यक्रम महफिले गजल हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:15 से। राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से रात्रि 10 बजे से। समाचारों का अनुप्रसारण अपने नियमित समय पर होगा। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। 7:18 होने को है, कुछ ही देर बाद 7:20 से आप सुनेंगे आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी लोड़ी वादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। वैश्विक संकट के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की पहली तिमाही में 7.8% की दर्ज हुई वृद्धि। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह वृद्धि 6.9% की गई थी दर्ज। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, नए रेलखंड और रेल कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र के विकास को मिलेगी मदद। और प्रदेश में बाढ़ से 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव, और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के, वो इम्पैक्ट रख रहे हैं। और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है, और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ

0: है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक मजबूत, समृद्ध और विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत को चिप निर्माण का हब बनाने के लिए सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
2: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद कल नई दिल्ली में मसौदा सूची को जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। कौशाम्बी के पुरामफ्ती थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में कल एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के समय फैक्ट्री में 20 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, एयरफोर्स, NDRF और SDRF के करीब 200 जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। जिलाधिकारी डॉ अमित पाल ने बताया कि घायलों के उपचार, राहत और बचाव कार्य की निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2-2 लाख रुपए की राहत राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कल बहराइच में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने इस खंड पर नेपालगंज रोड से वाराणसी सिटी विशेष रेलगाड़ी को भी रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए रेलखंड और ट्रेनों से मिली कनेक्टिविटी प्रदेश में केवल बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा और सुविधा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।
3: ये कनेक्टिविटी हमारे लिए केवल बॉर्डर क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए और सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कारण इस क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं बढ़ेंगी, उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और कृषि को एक नया आयाम मिलेगा।
1: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नेपाल में हुई त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत सरकार की ओर से अपने मित्र राष्ट्र नेपाल के सहयोग के लिए त्वरित कदम उठाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नए रेलखंड की शुरुआत से यात्रियों की आवाजाही अधिक आसान होगी और क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी के साथ विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि गेज परिवर्तन के साथ नानपारा, मटेरा, रिसिया, बहराइच, बभनान और नेपालगंज बड़े रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। कार्यक्रम में उन्होंने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई।
4: भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रेलवे भी इस प्रयास में जुड़ा है। रेलवे के जो बॉर्डर के जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, एनसीआर, ईसीआर और एनएफआर के कुछ हिस्से, इन सबके साथ मैं लगातार संपर्क में हूँ और रेलवे के अधिकारी, जिले के अधिकारियों के साथ, राज्य के अधिकारियों के साथ

0: और एमईए के कोऑर्डिनेशन में लगातार काम कर रहे हैं। जहां पर भी रेस्क्यू होकर यात्री पहुंचे उन सबके लिए स्पेशल कोच लगा के व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का भी रेलवे ने लगातार प्रयास किया है।
1: कार्यक्रम में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस परियोजना से नेपाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 17 जिलों की करीब 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गंगा के किनारे बसे कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। एसीपी दशाश्वमेध घाट अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की हैं, साथ ही ड्रोन से स्थिति की निगरानी की जा रही है। उधर चित्रकूट में रामघाट पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से राजापुर और मऊ के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एक रिपोर्ट।
2: जिले में 24 बार चौकियां चिकित्सीय स्टाफ और आवश्यक दवाओं के साथ संचालित हैं। एम्बुलेंस सेवाएं अलर्ट पर हैं, जबकि अस्पतालों में अतिरिक्त बेड आरक्षित किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और रैन बसेरों में भी मेडिकल टीमें तैनात हैं और रैपिड रिस्पॉन्स टीमें 24 घंटे सक्रिय हैं। जिले में बारिश और जल प्रभाव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए आज अवकाश घोषित किया गया है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
1: मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसकी वजह से जौनपुर और चंदौली में कक्षा 8 तक के विद्यालयों को जिला प्रशासन ने बंद कर दिया है। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में फरार चल रहे दोनों बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ में दो आरक्षी भी घायल हुए हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने कहा कि यूपी पुलिस शेष अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कल शामली पहुंचकर अंकित के परिजनों से मुलाकात करके संवेदना व्यक्त की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वैश्विक संकट के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की पहली तिमाही में 7.8% की दर्ज हुई वृद्धि। पिछले वर्ष इसी अवधि में ये वृद्धि 6.9% की गई थी दर्ज। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा नए रेलखंड और रेल कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र के विकास को मिलेगी मदद। और प्रदेश में बाढ़ से 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष

0: घुसराना, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: कहानी नहीं बत...

0: digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

तलाश ना कर मुझे जमी व आसमां की गर्दिशों में, तलाश ना कर मुझे जमी व आसमां की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं। जी हाँ, इन्हीं विचारों के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के इस खूबसूरत सफर में मैं हूँ ऋचा आपके साथ।

मन में राम का नाम रहे होठों पर हनुमान, भक्ति बने जीवन की शक्ति और विश्वास। जी हाँ, इसी श्रद्धा से जुड़े रहिए, मन को भक्ति में रमाइए और अनुभव कीजिए उस दिव्य भाव को जहाँ भक्त और ईश्वर के बीच केवल प्रेम और समर्पण का मधुर संबंध होता है।

वाकई अद्भुत। भक्ति से सजे इन स्वरों ने पूरे वातावरण को ही राममय और हनुमतमय कर दिया। हनुमान जी की शक्ति हमें यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। संकट मोचन प्रभु श्री हनुमान जी, उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि हमें निस्वार्थ सेवा, साहस, अनुशासन और समर्पण का मार्ग भी दिखाता है।

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अबनियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर, जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा न कोई।
1: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी, अयोध्या।

0: होती है उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री राम के बिना हनुमान अधूरे हैं और हनुमान जी के बिना प्रभु श्री राम की भक्ति का स्वरूप अधूरा सा लगता है। एक आराध्य है तो दूसरा उस आराध्य की अनन्य भक्ति का अनुपम उदाहरण। राम नाम हनुमान की शक्ति ऐसी है और हनुमान श्री राम के प्रति समर्पण की जीवंत पहचान।

कहते हैं भक्ति में शक्ति है जो असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। भक्ति तर्क नहीं, श्रद्धा और विश्वास है। भक्ति से ही मनुष्य में सात्विक गुणों का विकास होता है और कहते हैं जब भक्ति स्वयं में प्रवेश करती है तो मन गंगा जल की तरह पावन पवित्र हो जाता है।

शर्मा बंधु के गाए इस भक्ति रचना के साथ कार्यक्रम अमृत कलश अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग

संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क

0: जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
3: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
1: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
4: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
4: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान है

0: स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
2: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केंद्र के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने

0: 81वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। और ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की GDP सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचारों के बाद एक बार पुनः स्वागत है आकाशवाणी अयोध्या में हमारे सभी श्रोताओं का। प्रातः के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
6: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
5: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
6: जी हाँ, और वो है योग।
5: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
6: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
5: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
6: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
5: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
6: योग करिए, निरोग रहिए।
0: सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं साबरी ब्रदर्स की आवाज में ये गीत।

इसी गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। प्रातः के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतिया बिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
2: आपके संदेश
3: संदेश से आते हैं
2: आपके गीत
3: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
2: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
4: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
5: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
4: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।

0: व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
1: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

विविध रंगों से सजा कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले आज की बात और आज की बात का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए सही पोषण। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा शरीर और हमारी जीवन शैली हो जाती है। इसलिए भोजन केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आधार है। एक ऐसी थाली कल्पना कीजिए जिसमें रंग बिरंगी सब्जियों की ताजगी हो, फलों की प्राकृतिक मिठास हो, दाल हो और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों का संतुलन हो और पर्याप्त मात्रा में पानी हमारे शरीर को मिले। पोषण की थाली जितनी समृद्ध होगी, स्वस्थ जीवन की राह उतनी ही मजबूत होगी। सही पोषण हमें रोजमर्रा के कामों के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है और शरीर की सामान्य विकास व कार्यों में भी सहायता करता है। इसलिए भोजन में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि क्या स्वादिष्ट है बल्कि यह देखना जरूरी है कि क्या पौष्टिक है। अपनी थाली को केवल स्वाद का नहीं बल्कि स्वास्थ्य का उत्सव बनाएं। अनाज और दालों के साथ सब्जियां, फल, उचित मात्रा में दूध या उसके विकल्प, पौष्टिक वसा के स्रोत और पर्याप्त पानी, भोजन में विविधता बनाए रखना एक अच्छी आदत है। स्वास्थ्य कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं बल्कि हर दिन की छोटी छोटी अच्छी अच्छी आदतों का परिणाम है। तो क्यों ना आज से ही अपनी थाली को रंग बिरंगी बनाएं। तो ये तो रही बात स्वस्थ जीवन के लिए सही पोषण, और हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी भी है।

अब कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह विषय पर। जी हाँ दोस्तों, अच्छा पोषण केवल स्वस्थ शरीर नहीं बनाता बल्कि स्वस्थ विचार और उज्जवल भविष्य की नींव भी रखता है। हर वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। यह सप्ताह हमें याद दिलाता है कि भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं बल्कि हमारे विकास, ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। एक स्वस्थ थाली में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, अनाज, दूध और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ, मेवे तथा पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण पहल है।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या और आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह विषय पर। अगर हम बात करें इसके इतिहास के बारे में तो इसकी शुरुआत वर्ष 1982 में की गई थी। इसका मूल उद्देश्य लोगों को यह समझाना था कि पौष्टिक और संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि देश के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। भारत में पोषण संबंधी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए पोषण अभियान जैसी महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर मिलकर काम करते हुए कुपोषण को कम करना और पोषण के प्रति जन भागीदारी बढ़ाना है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की यात्रा केवल क्या खाना चाहिए तक सीमित नहीं रही बल्कि यह संदेश देना भी था कि सही भोजन, सही आदतें और सही जानकारी मिलकर स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। आज राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े विभिन्न विभागों के सहयोग से की गई, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग बच्चे किशोर गर्भवती महिलाएं माताओं को पोषण के महत्व के बारे में जानकारी दी जा सकेगी।

और अगर बात हम स्वास्थ्य की करते हैं तो पेड़ पौधों को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, स्वास्थ्य के लिए पौधे भी बहुत ही जरूरी हैं। कहते हैं प्रकृति केवल हमारी जरूरतें पूरी नहीं करते बल्कि वह हमारे जीवन को स्वस्थ, संतुलित और सुंदर भी बनाते हैं। कहते हैं पौधे हमारे जीवन के लिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण हैं। ये हमें फल, सब्जियां, अनाज, मसाले, अनेक उपयोगी वनस्पतियां प्रदान करते हैं। हरी सब्जियां, फल हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्व भी हैं। हमारी परंपरा में कई पौधों का उपयोग घरेलू और पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल में भी पाया जाता है। जैसे हम बात करें अगर नीम की, नीम भारतीय परंपरा में अपने अनेक उपयोगों और औषधीय महत्व के लिए जाना जाता है। इसकी पत्तियां, छाल और बीजों का पारंपरिक उपयोग विभिन्न रूपों में किया जा रहा है। और अगर हम नीम की बात करें तो हम सहजन को कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, सहजन की पत्तियां और फलियां भोजन का हिस्सा बनती हैं और इनमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। तुलसी, जो भारतीय घरों में सदियों से उगाई जाने वाली पारंपरिक स्वास्थ्य और संस्कृति में विशेष स्थान रखती है। जी हाँ, इसी तरह से बहुत से पौधे हैं जैसे आंवला, जो पोषक तत्व खासतौर से विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। और अगर हम बात करें अर्जुन की, तो यह वृक्ष भारतीय पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान में लंबे समय से जाना जाता है। गिलोय, जो भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण वनस्पति है। तो पौधे का महत्व केवल औषधीय या पोषण संबंधी उपयोग तक सीमित नहीं है बल्कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। ये हमारे मिट्टी को थामे रखने में और जैव विविधता को सहारा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पेड़ों के महत्व को समझें, वृक्ष लगाएं।

अपने आसपास के वातावरण को अधिक सुखद बनाएं। पेड़ों की देखभाल करना भी प्रकृति से जुड़ने का एक सुंदर माध्यम है। तो संकल्प कीजिए कि अधिक से अधिक पौधा लगाएंगे, और लगाएंगे ही नहीं, उसका संरक्षण भी करेंगे।

एक स्वस्थ राष्ट्र की शुरुआत स्वस्थ नागरिकों से होती है। जब हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, युवा ऊर्जावान होंगे और परिवार पोषण के प्रति जागरूक होंगे, तभी भारत और अधिक सशक्त, सक्षम और समृद्ध बन सकेगा। तो आज राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यह संदेश दे रहा है कि स्वास्थ्य किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रतिदिन अपनाई जाने वाली अच्छी आदतों का परिणाम है। पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देना, भोजन में विविधता रखना, स्वच्छता का ध्यान रखना और पोषण के प्रति दूसरों को जागरूक करना, यही इस सप्ताह का वास्तविक भावना है। हर थाली हो पोषण से भरपूर, तभी बनेगा भारत स्वस्थ और मजबूत। इन्हीं विचारों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले चलते हैं समाचार पत्रों से, जहां सुनेंगे आप शहर की कुछ खास खबरों के बारे में।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल डाभा सेमर एथलेटिक्स से कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके साथ ही स्टेडियम में चल रही 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का भी समापन हुआ। विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम, अध्ययन प्रक्रिया और आगे के करियर अवसरों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूल परिसरों से गुजर रही 11,000 वोल्ट की बिजली लाइनों को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिले के 28 राजकीय और 50 एडेड माध्यमिक विद्यालयों से परिसर या उसके आसपास से गुजर रही हाई टेंशन लाइनों की सूचना मांगी गई है। विद्यालयों से जानकारी मिलने के बाद लाइनों का चिन्हीकरण और स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा और इसके बाद बिजली विभाग के सहयोग से उन्हें हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और राम मंदिर में चेक के माध्यम से दान देने वाले श्रद्धालुओं को अब बैंक से भुगतान की स्वीकृति मिलने के बाद ही दान की रसीद जारी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस संबंध में अपने सभी कार्यालय को निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत चेक का भुगतान बैंक से भुगतान पुष्टि होने के बाद दानदाता को ऑनलाइन रसीद उपलब्ध कराई जाएगी।

अवध विश्वविद्यालय के सरदार पटेल सेंटर तुलसी भवन में एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एवं पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिकल साइंस एवं इंटरनेशनल रिलेशंस के 2025-26 और 2026 बैच के विद्यार्थियों के लिए सोमवार को इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें

0: राम नगरी में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राम मंदिर समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्री राम मंदिर में 4 सितंबर को ही रात 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। परिवहन निगम की साधारण सेवा में बुजुर्ग महिलाओं का आधार कार्ड या वोटर आईडी से उम्र का सत्यापन कर जीरो बैलेंस का टिकट दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। यह सुविधा 28 अगस्त से शुरू की गई है। इन्हीं खबरों के साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या का आज का सफर बस यहीं तक।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना एरिया मार आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: प्रणाम अयोध्या।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हेलो
2: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
7: RHL Gold DMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो

0: फिर मानो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज के सफर में मैं हूं ऋचा आपके साथ। और कार्यक्रम में ये पहला संदेश जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये आया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। तो आप सबके पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में ये अगला संदेश आया है जसपुर उत्तराखंड से। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर का। तो आइए सुनते हैं आप सबके पसंद पर ये गीत।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सब आपकी एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, और कार्यक्रम में अगला संदेश आया है ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। और कार्यक्रम में अगला संदेश आया है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतना नाहटा। तो आइए सुनते हैं आप सबके पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम में अगला संदेश आया है नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनफ यशफ अब्बासी और रसीद वारसी का। और ये संदेश आया है मारहरा दरवाजा एटा से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: माँ, ये मोटा चश्मा कब उतरेगा?
3: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
4: मुझे तो मोतियाबिंद हो गया है।
5: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा बिना टाका, बिना इंजेक्शन बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी, शुगर से खराब हुए आँखों के पर्दे का इलाज, नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनैन आई हॉस्पिटल, निकट विवाट, नियावा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।

0: 7376804090 लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी और साथ में होंगे आप ही के पसंद के फिल्मी गाने इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में अभी कॉल कीजिए 7376804090 पर और कनेक्ट हो जाएं एजे अमरजीत सिंह के साथ आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार ये अलबेला सजीरा और दिलचस्प प्रोग्राम आपकी अपने एफएम 101.9 और स्मार्टफोन पर आ चुका है अवध की सुरीली धड़कन आकाशवाणी अयोध्या आइए शुरू करते हैं फिल्मी गीतों और आपकी प्यारी बातों का ये सुहाना सफर तो मेरे प्यारे सुनने वालों आप सभी का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और आज लाइव इस फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या में मेरे साथ ऋचा दुबे भी हैं और हम सब मिलकर आपसे बात करेंगे और देखेंगे आपकी पसंद आज क्या है और क्या कुछ दिलचस्प अच्छी बातें आप इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं आइए देखें हमारे पास कोई आ भी गया 7376804090 को डायल करके जी अपना नाम बताइए
1: जी सर ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी
2: भगवान सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में क्या करते हैं आप
1: धन्यवाद दीदी खेती किसानी करते हैं और हमारे आदरणीय सर अमरजीत जी को हमारा नमस्कार क्योंकि वो आप इतने सालों से आकाशवाणी अयोध्या में अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं सेवा दी है उन्होंने आप रिटायर होने वाले हैं तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं
0: जी नमस्कार जी परिहार जी और ये सब आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है बरसों बरसों तक आकाशवाणी छोड़ने के बाद भी हमको याद रहेगा आपकी तमाम चिट्ठियां फरमाइशी हमारे पास रखी हुई है आपकी फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी हुई है प्लीज प्लीज मुझे सुन लीजिए प्लीज थोड़ा सा अनाउंसरों को भी सुना कीजिए क्योंकि वो भी दिल की बात आपसे करना चाहते हैं तो आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास रखी हुई है जब मेरा मन करेगा तो मैं उसको सुनूंगा ठीक है ना तो ये बताइए आज गाना भगवान सिंह परमार जी कौन सा सुनना चाहते हैं
1: सर फिल्म का नाम है पिघलता आसमान और गाने के बोले तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में भी ना मिलेगी और सर आपको डेडिकेट रहेगा

0: लिस्ट थोड़ी छोटी रखिएगा।
1: जी जी
0: चलिए। अच्छा नाम नहीं लेने आपको, ठीक है बढ़िया है, क्योंकि तो आज इस
1: प्रोग्राम टाइम क्या है बहुत बहुत कम रहता है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: आधे घंटे का रहता है सर, तो इसमें क्या नाम लें आप?
2: हमारे जो श्रोता है अमरजीत वो बहुत समझदार हो गए हैं
0: जी,
2: तो
0: जी।
2: वो भी सहयोग कर रहे हैं, तो एंजॉय कीजिए अपने इस गीत को कॉल करने के लिए। धन्यवाद।

0: और अब हमें मिल गए हैं एक और श्रोता हमारे आकाशवाणी अयोध्या के इस प्रोग्राम में। आकाशवाणी अयोध्या से ये प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम का नाम तो हेलो अयोध्या है। और देखें अब किसकी बारी आ गई। ऋचा कौन देखिए बोल रहा है यहाँ से?
1: हेलो
2: हेलो, राम जागर गुप्ता बोले सामने चल गया था मैडम। नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप?
2: खेती बाड़ी करते हैं।
0: तो खेती बाड़ी में क्या कुछ लगा रखा है इस समय?
2: धान लगा हुआ सर।
0: तो धान किस किस्म का लगा? अच्छा वाला है कि जो बहुत गीला गीला बनता है वो लगाया आपने?
2: नहीं, बढ़िया वाला धान है, सांबा मंसूरी है।
0: खुशबू करता है कि नहीं? पहले अब मंसूरी खुशबू नहीं करती, पहले बचपन में बहुत खुशबू करती थी, चार चार घरों में उसकी खुशबू पहुंच जाती थी।
2: अभी भी खुशबू करती है।
0: अच्छा अच्छा, तो ये बताइए गाना किस फिल्म का सुनना चाहते हैं इस प्रोग्राम में? आज
1: मौसम भी बहुत सुहावना है, बारिश की रिमझिम फुहार है, मौसम बहुत सुहावना है।
0: चलिए धड़कन फिल्म का गाना आपकी पसंद का सुनवा रहे हैं। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
1: माँ, ये मोटा चश्मा कब उतरेगा?
2: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
1: मुझे तो मोतियाबिंद हो गया है।
0: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, बिना चेरा बिना टाका, बिना इंजेक्शन बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी, शुगर से खराब हुए आँखों के पर्दे का इलाज, नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनैन आई हॉस्पिटल, निकट विवाट नियावा फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।
3: और अब हेलो अयोध्या में रिजल्ट देखें, कौन है हमारे साथ अपनी आवाज मिलाने को तैयार है? जी बताइए अपना नाम कहाँ से?
4: हेलो नमस्कार सर।
5: नमस्कार जी, आपका शुभ नाम?
4: जी मैं मंसूरी क्लब ग्राम एक्सप्रेस जिला रामपुर से शखावत हुसैन मंसूरी बात कर रहा हूँ।
5: शखावत हुसैन मंसूरी जी, कैसे हैं आप?
4: जी बढ़िया हूँ।
5: और
4: आप सुनाइए, सब लोग ठीक हैं?
5: जी जी बहुत हम लोग अच्छे हैं। और किस फिल्म का गीत आज आप सुनेंगे?
4: जी मैम फिल्म का नाम है एक ही रास्ता गाने के बोला मेरे यार की रुके, और दो चार नाम है मैम।
5: जी जी जी, पर पहले हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि ये मूवी हमारे यहाँ नहीं है।
3: देखिए ये मूवी हमारे यहाँ नहीं है और आपको हम फकीरा फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। कॉल कर रही है, आपका शुक्रिया। नाम लेंगे तो फिर बाकी लोगों की बारी यहाँ लग नहीं पाएगी आज, है ना?
4: ठीक है,
3: आपकी तो कॉल रोज लगती रहती है यहाँ पर।

0: ऋचा, समय को कोई आज तक पकड़ नहीं पाया है, समय के पीछे भागना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ?
1: क्योंकि हम लोग इतना खुश हो जाते हैं अपने श्रोताओं से बात करके, इस समय का हमें ध्यान ही नहीं रहता
0: किसी को भी मायूस निराश करना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत मुश्किल से यहाँ कॉल लगती है। और अब मेरे साथ यहाँ पर आ कौन गया है, आइए उनका भी स्वागत करें। जी नाम बताइए अपना।
2: जी दिलदार बात कर रही हूँ।
1: दिलदार जी, नाम तो आपका बहुत ही अच्छा है
2: जी। शुक्रिया।
0: तो कहाँ से कॉल कर रहे हैं भाई?
2: हम कोरमा जहांगीर चापा छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं सर जी।
0: तो और वहाँ मौसम कैसा है? यहाँ तो कल भी बादल छाए हुए थे, धूप नहीं निकली, आज थोड़ी धूप निकली हुई है, लेकिन रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है लगातार।
2: यहाँ तो लगभग 3-4 दिनों से बादलों छाया हुआ है सर, और रिमझिम रिमझिम फुहारे चल रही है।
0: कहने को सावन तो चला गया, लेकिन भादो है, भादो भी बरसता है।
1: बरसे भी क्यों ना, क्योंकि मौसम वाकई बरसने से इतना सुहावना हो जाता है कि हर व्यक्ति मन मस्त इसका जो है मस्त मौसम में एकदम झूमने को कहने को तैयार हो जाता है। और कौन सा गीत आज आप सुनेंगे?
2: जी हम तो सुनेंगे, हमारा नाम ही दिलदार है, तो जब दिल न लगे दिलदार हमारे गली आ जाना, पुली नंबर 1 फिल्म का गाना है।
0: आप भी तो हमारी गली आ गए हैं आकाशवाणी अयोध्या की।
2: जी,
0: आपके बिना भी हम लोग का दिल नहीं लगता। सुनिए गाना कॉल के लिए।

0: अमरजीत, लगता है हमारी गली कोई और भी आ गया है।
1: बिल्कुल आएगा क्यों नहीं, क्योंकि टेलीफोन लाइन खुली हुई है। जैसे जैसे कॉल्स आ रही हम लोग रिसीव कर रहे हैं, उनसे बातें भी कर रहे हैं। मेरे पास आ कौन गया जी, बताइए वहाँ से कहाँ से आपकी आवाज आ रही है, किस गाँव से
2: जी? रेडियो के दीवाने आपके चाहने वाले, आप माने ना माने, आपके कॉलर पुराने और आपकी आवाज सुनकर सभी लोग आपको पहचाने।
1: जी बिल्कुल,
2: बड़े ही प्यार से आप गांव से चिंतापुर से सरारा की मैं बोल रहा हूँ, ब्लॉक पूरा बाजार से।
1: तो आपकी जब कॉल लगती है ना, तब आप हमको भूल जाते हैं, कहिए मैं गलत बोल रहा हूँ? है ना, आपकी कॉल मैं बराबर सुनता हूँ रेडियो से, आपकी कॉल बराबर लगती रहती है, लेकिन आप तभी याद करते हैं अनाउंसर को जब उसकी ड्यूटी होती है, ऐसा क्यों होता है?
2: सर अनाउंसर लोग बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी पर आप दूसरे का नाम मत लीजिए।
1: नहीं नहीं, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा,
0: ऐसा तो
1: हम सब एक परिवार से हैं, है ना। तो कपिल देव जी, आपने सराय राशि अयोध्या से कॉल की है ना?
2: जी हाँ जी हाँ।
1: तो बताइए आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
2: चोरी मेरा नाम
0: जी। तो क्या करते हैं आप?
2: मैं करता।
1: अरे वाह क्या बात है, हारमोनियम कौन बजाता है फिर साथ में, संगत कौन करता है?
2: साथ में हमारे एक मित्र हैं कमल जी।
1: जी आपका
2: जी जी तो हारमोनियम वो बजाते हैं, ढोल मैं करता हूं।
1: आपका तबला और ढोल और हारमोनियम भी मैंने सुना है रेडियो पर, लेकिन आज वक्त बहुत ज्यादा नहीं है इस प्रोग्राम में, क्योंकि काफी लोगों से बात करनी है। तो फिर कभी आएंगे तो आपका भी जो है ढोलक हम सुनेंगे।
2: सर एक बात कहना चाहते हैं, थोड़ा हम नाराज हैं आपसे, हाँ आप जो है आकाशवाणी छोड़कर जाइए मत सर।
1: अरे देखिए जाना तो पड़ेगा ही, सब गए तो हम क्यों बचे?
0: पर अभी कहाँ जा रहे हैं अमरजीत?
2: नहीं रहेंगे तो कार्यक्रम में उतनी
0: भाई, अभी अभी जाने की बात मत कीजिए।
1: सुनिए अगर मैं चला भी गया ना, तो मेरी रिकॉर्डिंग जो है आरजे अमरजीत सिंह के नाम से वहाँ पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वहाँ सुन लीजिएगा पुरानी रिकॉर्डिंग।
0: पर अमरजीत मुझे लगता है जाने की बात अभी से नहीं अच्छी लगती है।
1: वो तो है, अभी तो एक महीना है।
0: अरे एक महीना क्या, अभी आप है। तो चलिए एंजॉय कीजिए इस गीत को, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
2: ओके मैम, दोनों को धन्यवाद।

0: क्योंकि ये प्रोग्राम केवल हम दोनों से नहीं होता है, हमारे तमाम जो सुनने वाले हैं पता नहीं कहाँ कहाँ सुन रहे हैं, देश और विदेश में। अब तो न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर और आपका जो वेब
1: ओटीटी है सुन रहे हैं हमारे सारे श्रोता
0: जी। तो अब रेडियो की तरंगे जो हवा की होती है ना एयर वाली, उनसे निकलकर हम लोग बहुत दूर जा चुके हैं, इंटरनेट में पहुंच चुके हैं
1: एकदम। और अमरजीत देखते हैं कि कौन है लाइन पर।
0: जी आपका स्वागत है, नाम बताइए।
2: हेलो सर, नमस्ते, मैम को नमस्ते मेरा।
0: जी नमस्ते, बताइए कहाँ से नाम। बढ़िया है,
1: हम बहुत अच्छे हैं। आपका शुभ नाम।
2: सर मेरा नाम है प्रीति विश्वकर्मा, खानपुर तहसील मिर्ची को जिला एरिया।
0: तो प्रीति विश्वकर्मा बात करने के बाद बीच बीच में ब्रेक मत लगाइए, लगातार बातें करिए, करती क्या है आप।
2: सर हम कुछ नहीं, सिलाई करते हैं और बीए कर रहे हैं, क्योंकि सर आज मेरा फोन रिचार्ज नहीं था, दूसरे के मोबाइल लाकर फोन लगाया।
1: प्रीति आप पढ़ाई भी कर रही हैं, सिलाई भी कर रही हैं और कह रही हैं हम कुछ नहीं करते। अमरजीत कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
0: बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम है। और सबसे बड़ा काम उसका है जिसने आपको फोन दिया, उनको मिठाई खिलाइएगा आज जाकर।
1: और उनके फोन से
2: सर माता जी को भी हम कहेंगे हमारा फोन लगा दीजिए, हम प्रचार चलाएंगे, क्योंकि मुझे अमरजीत सर से कर्ज सर लगा रहे थे, बात नहीं हुई पाई।
0: जी जी, तो माता जी को मेरा नमस्ते बोलिएगा। गाना बताइए किस फिल्म का सुनवाएं प्रीति आपको।
2: सर गाना हम तो आपकी पसंद का ही सुनेंगे।
0: अच्छा, तो मेरी पसंद का गाना मैंने निकाला है दलाल फिल्म से। और कुछ कहना है तो फटाफट कह डालिए जल्दी से।
2: सर आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर, आप जो रिकॉर्डिंग करते थे भगवान देखिए, वो रिकॉर्डिंग मुझे बहुत पसंद
0: थी। अच्छा,
2: हम ही वहाँ
0: बिल्कुल, हम लोग जब बाहर जाते हैं रिकॉर्डिंग करने, आपको झूला मेला की जो रिकॉर्डिंग सुनवा रहे थे प्रथम दिवस की और अंतिम दिवस की, तो आपको लगे रेडियो पर कि हम आप अयोध्या में पहुँच गई हैं।
1: यही तो रेडियो की खासियत है। क्यों
2: भगवान का नाम ले रहे थे सर, लग रहा था कि हम भी वहाँ पर हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग चित्रों के माध्यम से चित्र के शब्दों के माध्यम से चित्र पूरा बना देते हैं आपकी आंखों के आगे सुनने पर। चलिए गाना आपका चल चुका है, शुक्रिया प्रीति कॉल के लिए।

0: और अब देखते हैं कितने दोस्तों से हम और बातचीत कर पाते हैं आज, क्योंकि अभी भी 8 मिनट का वक्त बाकी है ऋचा।
1: और देखते हैं कौन श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: हेलो
1: जी,
0: रुक क्यों गए?
2: जी बहन, प्रणाम भैया जी, प्रणाम, नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: थोड़ी स्पीड और बढ़ाइए, बुलेट ट्रेन वाली। पैसेंजर खत्म हो गई, आप पैसेंजर नहीं चलते यहाँ पर।
2: जी सर जी, मैं राजू यादव, ग्राम उपनिका श्रीराम पदेरा, सरीला राड मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा, जो स्टाइल आपका है ना राजू जी,
2: जी
0: वही स्टाइल जी हमारे यहाँ कपिल जी का भी है। अभी कुछ देर पहले सराय राशि से उनकी कॉल आई थी, वो भी इसी अंदाज में बोलते हैं।
2: जी सर जी।
0: तो आपने उनको नहीं सिखा दिया कहीं?
2: जी
0: आपने तो नहीं सिखा दिया उनको कि आप ऐसा बोलिए रेडियो पर?

0: लखनऊ या
1: छतरपुर अमरजीत, मुझे लगता है कि ये हेलो अयोध्या का प्यार है जो हमारे श्रोता इतने प्यार में खो जाते हैं कि इनका अंदाज ही बदल जाता है।
2: अच्छा गाना बताइए
0: जी बहना जी। जी बहना जी आपका ही इतने प्यार है कि हम लोग इतना खुश रहते हैं और कॉल लगाने का इंतजार करते रहते।
2: गाना बताइए जल्दी से आपका, फिर यहाँ से चलाया जाए।
0: बेटा मूवी का सैया जी से छुपके हुई क्या बात, और हेलो फरमाइश एक का ग्रुप के सभी प्यारे मित्रों को ये गीत डेडिकेट रहेगा।
2: तो सैया जी से क्या छुपके बात हुई हम आपसे पूछेंगे नहीं, गाना सुनवा रहे हैं। कॉल के लिए शुक्रिया आपका।

0: औरब जी 7380-4090 नंबर रिचा किसने लगा लिया?
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। आपका नाम?
2: नाम हमारा मैडम जी संदीप शर्मा है।
0: रेडियो पहले वहाँ कम कीजिए, नहीं तो फिर आपकी कॉल ड्रॉप हो सकती है।
2: जी जी जी जी जी।
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगे?
2: गाना सुनने से दबंग कर तो रहना है ना बड़े दगा आवाज रे।
0: चलिए आपके तो कॉल भी बराबर लगती रहती है।
1: संदीप कहाँ से कॉल किया है आपने?
0: नया पुरवा से जी। कॉल के लिए शुक्रिया आपका।
2: जी जी
0: पार्लर। ठीक ठीक है, सुनिए गाना।

0: और अब जी हाँ अगली कॉल भी आने वाली है, उससे पहले बता दें कि इस पूरे आधे घंटे में कंट्रोल रूम से हमारे इंजीनियर बने हुए हैं राजकुमार मौर्य। तो ऋचा अब किसकी कॉल ली जाए
1: देखते हैं। हेलो,
0: ये कॉल यहाँ पे ड्रॉप हो गई ऋचा और अब हमें डायरेक्ट किसी से बात करनी पड़ेगी और वो कॉल भी आ गई है। बताइए अपना नाम। हेलो, आप रेडियो पर आ चुके हैं। देखिए ये भी साइलेंट हो गई है कॉल और हमको यहाँ पे किसी का इंतजार तो करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। और कॉल देखिए लगातार आती रहती है, वहां पे कोई ब्रेक नहीं लगता। अब फिर कोई आ रहा है मेरे पास। जी आपका स्वागत है, नाम बताइए।
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसोड़ा तहसील नागदा जिला उद्यान से।
0: गाना बता दीजिए फटाफट क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है।
2: फिल्म का नाम है प्रेम रतन धन पायो।
1: तो प्रेम सिंह जी क्या करते हैं आप?
2: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
1: तो इस वक्त खेतों में क्या लगाया है?
2: अभी हमने सोयाबीन की फसल लगाई है जो 2 महीने की हो गई है, 1 महीने बाद इसकी कटाई हो जाएगी।
1: जी, और मौसम कैसा है वहाँ पर?
2: मौसम काफी अच्छा, ठंडी हवाएं चल रही है और कल बारिश भी हुई थी हल्की सी।
0: तो प्रेम जी कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं प्रेम रतन धन पायो से?
2: इसका टाइटल सॉन्ग सुनवा दीजिएगा आप।
0: टाइटल सॉन्ग कौन सा बता तो दीजिए।
2: जी जी
0: ठीक है जी, मिल गया कॉल के लिए आपका शुक्रिया बहुत बहुत।

0: पांचवी फिल्मी गानों का हेलो अयोध्या। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्रीय है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT वेब्स पर। 10 बज चुके हैं अब से लेकर 12:30 तक आप हम सुनवाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम जो इस समय मुंबई विविध भारती से हो रहे हैं। और फेसबुक फरमाइशी प्रोग्राम के लिए भी आप तैयार रहिएगा। 12:30 आपके लिए लोक रंग कार्यक्रम में लोकगीत सुनवाएंगे और 11:00 तक आप अपनी फरमाइश भेज दीजिएगा आज। और 1:00 कुछ तुमने कहा प्रोग्राम आपको सुनवाया जाएगा, दिल की जो बातें होंगी वो भी लिखिएगा। और 2:00 गीतांजलि प्रोग्राम होगा और 2:30 आपके लिए जो है वो महिलाओं का नारी जगत प्रोग्राम होगा। और 3:00 से फिर से आपको विविध भारती से आपको जोड़ देंगे और 2:15 से आपको देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उसके लिए दोपहर समाचार भी दिल्ली केंद्र से सुनवाएंगे। फिलहाल आइए अब आपको कनेक्ट करते हैं विविध भारती कार्यक्रमों से।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके निदान पर विशेषज्ञों से बातचीत। बालों की सुंदरता और इसके लचीलेपन को लेकर हम बड़े सजग रहते हैं और हर तरह से इनकी सुंदरता के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, फिर भी बालों को लेकर एक समय के बाद कुछ न कुछ समस्याएं देखने में आ ही जाती हैं। पिछले हफ्ते आज ही के दिन बालों की समस्या और देखभाल इस विषय को लेकर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत हमने आपको सुनवाई थी। आज इसी बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाते हैं।

0: तो आपको इसी गाने के साथ मेरे प्यारे सुनने वालों छोड़े जा रहे हैं। आप सब हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हेलो अयोध्या प्रोग्राम से अब एजे अमरजीत और
1: ऋचा को दीजिए अनुमति,
0: क्योंकि मैं अभी आपके साथ रहूंगा, कहीं जाइएगा नहीं, 5 बजे तक रहूंगा आपके साथ जी।

0: अच्छा मुझे ये बताइए कि कई पुरुषों में जो बालों की समस्या वो दो तरह से होती है, एक तो ये कि बाल पीछे की तरफ सरकते चले जाते हैं और ये माथा जो है वो बड़ा होता चला जाता है, दूसरा जिसको हम हिंदी में चांद निकलना कहते हैं, बैल्डनेस आती है बीच के हिस्से में, इन दोनों को रोका जा सकता है, इनका कोई उपाय है या ये जेनेटिक है और ये खानदानी चीजें हैं तो इसको टाला नहीं जा सकता?
1: एक भ्रम है लोगों में
0: अच्छा
1: कि जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट नहीं है, ये भ्रम। अगर मैं कहूं कि डायबिटीज भी जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मत लीजिए, हो सकता है
0: नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी।
1: तो जरूरी समझना है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती है, साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया कि उसमें ट्रीटमेंट लाई हुई है।
0: ओके
1: और हमने ऐसे ट्रीटमेंट देखे हुए हैं कि जिसको रिस्पांस काफी तरह से होता है, सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है। स्टेज वन, स्टेज टू, अलग अलग स्टेजेस में हमको ट्रीटमेंट देने होती है। तो चांद निकला है, शायद मेडिकल लाइन इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं गिरेगा क्योंकि बहुत बड़ा चांद है,
0: बहुत बड़ा चांद है सिर पर बहुत बड़ा चांद
1: तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
0: जी जी जी ओके
1: उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
0: उसकी भी बात हम आगे चलकर करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है, उसकी बात आगे करते हैं। तो ये टाला जा सकता है, मतलब ये कि अगर कोई खानदानी मामला भी है, जेनेटिक मामला भी है, तो भी डॉक्टर के पास जाएं।
1: या क्योंकि ट्रीटमेंट है, रिसर्च ने ट्रीटमेंट निकाली है उस पर।
0: जी
1: आपको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है।
0: राइट बिल्कुल। अच्छा ये जो चारों तरफ बड़े सजीले

0: करना आपका डिसीजन है।
1: राइट बिल्कुल। अच्छा ये जो चारों तरफ बड़े सजीले विज्ञापन आते हैं इसमें लहराते हुए बाल नजर आते हैं और ये शैम्पू लगाने से बाल चमकीले और वो कमाल कमाल के वर्ड्स का इस्तेमाल है जो हम यहाँ नहीं दोहराना
0: चाहेंगे। तभी तो उससे विज्ञापन का क्या है। विज्ञापन का काम ही है कि आप देख के थक हो जाओ।
1: हाँ कि ये रिचनेस आती है फलाना, अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जाती है कि ये विटामिन से भरपूर है और ये दादी नानी के नुस्खों से भरपूर है। क्या कोई शैम्पू सचमुच में बालों का भला करता है या बिना सोचे समझे शैम्पू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि उल्टा असर हो जाएगा?
0: मैं उल्टा नहीं बता सकूंगी कि उल्टा असर होगा। शैम्पू बहुत माइल्ड तरीके से स्लोली काम करता है, इट्स अ सपोर्टिव। जैसे कुछ शैम्पू जो है कि हमारे स्काल का इकोसिस्टम होता है, हमारे स्काल पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे स्काल को हेल्दी बनाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं। जब गंजापन आता है तो इसका जो ये है सपोर्टिवनेस या इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ शैम्पू ये है इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू में होते हैं ये बालों के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का काम करते हैं स्लोली। पर कुछ शैम्पू ऐसे, अब कोई हार्श शैम्पू आजकल तो नहीं लगाता है, अच्छे वाले शैम्पू ही लगाते हैं, लेकिन वो शैम्पू में ये इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है आपको नहीं पता चलेगा।
1: जी जी,
0: आपको डॉक्टर ही बता सकेगा कि ये शैम्पू में ये सिस्टम है, अब ये लगाइए। नॉर्मल लोगों को देखना है कि आपका हार्श शैम्पू नहीं लगा। हार्श आप कैसे समझोगे? तो जब झाग ज्यादा होता है, हमारी मेंटेलिटी क्या है,
1: झाग ज्यादा है तो अच्छा है,
0: अच्छा है, पर वो ज्यादा झाग वाला शैम्पू आपका स्किन का हेयर का मॉइस्चर निकाल लेता है पूरा।
1: ओहो, जो हर धारणा जो है लोकप्रिय धारणा उसमें आज आप भयानक तोड़फोड़ कर रही हैं। जी ये क्योंकि हमें तो लगा कि वाह वाह झाग वाला शैम्पू है।
0: एडवर्टाइज देखोगे तो झाग वाला शैम्पू से भरपूर ऐसे और लोगों को लगता है कि लेना चाहिए।
1: जी
0: तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा तुम्हारा मॉइस्चर
1: चला जाएगा। जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या हो और उसका सही तरीका क्या है,
0: उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल समझना जरूरी है। अगर आप रोज जिम जा रहे हो या पसीना आ रहा है तो आपको रोज करना चाहिए, पर करने के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो शैम्पू माइल्ड तरीके का हो।
1: ये ऐसा झाग वाला नहीं हो,
0: झाग वाला नहीं चाहिए। अदरवाइज महिलाओं में 2 से 3 बार, पुरुषों में डेली या 3 से 4 बार। अभी जिसको स्केलिंग है, डैंड्रफ है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, अलग टाइप का शैम्पू लेना होता है। और जब भी आप शैम्पू करें और आपके बाल ड्राई होते हैं तो पहले दिन या 1 घंटा पहले आपको ऑयल लगाना जरूरी है। कोकोनट ऑयल से क्या होता है, कोकोनट ऑयल का एक कैपेसिटी है जो हेयर के अंदर के सेल तक जाके रुकता है। तो इससे उसमें से का मॉइस्चर है ना वो शैम्पू के टाइम पर नहीं निकलता जल्दी से।
1: ओके
0: तो ड्राई नहीं होते
1: हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है।
0: और फिर भी आपको लगता है कि ड्राई हो रहे हैं तो कंडीशनर लगाना चाहिए। भले ही आप 2 मिनट के लगाओ, 5 मिनट के लगाओ, लेकिन कंडीशनर लगाइए। पहले वाला कंडीशनर मतलब तुम्हारा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, बाद में वाला कंडीशनर मतलब अभी मार्केट में अच्छे वाले कंडीशनर आते हैं। इसके बावजूद भी आपके बहुत ड्राई है, लस्टरलेस है, तो आपको देखना चाहिए, उसको बोलते हैं हेयर शार्प डिसऑर्डर, मतलब आपकी शार्प की क्वालिटी कुछ खराब हो रही है। वो भी जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है।
1: ओके
0: तो वो एक एनालिसिस करके लेना जरूरी होता है।
1: जी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो है वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी की सारी बातें हो गई कि किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ी सूझबूझ के साथ नारियल के तेल का जिक्र किया। आज के लड़के या कुछ हद तक लड़कियां भी बालों में तेल लगाने से परहेज करते हैं क्योंकि रोज बाहर जाना है वो गंदा दिखेगा, बाल चिपचिपे दिखेंगे। ये तेल लगाना कितना जरूरी है?
1: तो मैं कहूंगी तेल लगा के बाहर नहीं जाइए, रात को तेल लगाइए, सुबह आपको शैम्पू करना है तो जो दिन शैम्पू करना है उसके पहले रात को तेल लगा लीजिए।
0: जी,
1: तेल लगाने का और एक फायदा होता है, ये रिसर्च बोलती है। और ये जब मैं सोचती हूँ कि हमारे टाइम पर हम लोग तेल लगा के शैम्पू करते थे बचपन में,
0: बिल्कुल
1: एक क्या बोलते हैं, माहौल रहता था, रूल था कि मम्मी आती थी अच्छे से तेल चंपी करती थी और दूसरे दिन हम शैम्पू करते थे। रिसर्च ने बताया है कि कुछ तेल ऐसे हैं जिसकी इकोसिस्टम मेंटेन होती है, जो मैंने बोला है इकोसिस्टम,
0: हाँ जी,
1: वो तेल से मेंटेन रहती है।
0: तो देखिए कि ये हमारी पुरानी
1: परंपरा
0: कितनी साइंटिफिक है।
1: साइंटिफिक, तभी साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो अभी क्या हुआ कि पेरेंट्स वो टाइम के चले गए, अभी मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं तो उनको ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है।
0: जी,
1: मैं तो कहती हूँ तेल लगाना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है
1: इकोसिस्टम के हिसाब से। अगर आपको बालों के इकोसिस्टम मेंटेन करने, इस सिंपल एक एग्जांपल देते हो, आप बालों को मॉइस्चराइजर, हाथों को मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्यों लगाते हो?
0: रूखे हो जाते हैं।
1: स्काल्प को हम मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीबम रहता है अपने बालों में, एक सीबम जो बालों में बहुत ज्यादा रहता है, सीबेसिस ग्लैंड बहुत रहते हैं, तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए। लेकिन ओवर पीरियड जब हम धूप में जाते हैं, हमारी जब उम्र होती है तो इसका प्रमाण भी सीबम सिक्रीशन का कम हो जाता है। तो हम रोज नहीं लगा रहे ऑयल,

0: पर बॉडी में हम रोज लगाते हैं स्नान करने के बाद ड्राई होते हैं, तो कभी कभी सर के बालों को स्किन को तेल लगाना जरूरी है।
1: ये फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए।
0: हफ्ते में 2 से 3 बार। आप शैम्पू तो हफ्ते में 2 से 3 बार कर ही रहे हो। और बहुत चिप चिप नहीं, थोड़ा सा, जैसे आप मॉइस्चराइजर बॉडी को लगा रहे वैसा समझ के लगाइए तेल।
1: जो लोग नहीं लगाते हैं बालों में तेल, चाहे वो अपनी मान्यता की वजह से या फैशन की वजह से या लापरवाही की वजह से, उनके बालों पर क्या असर पड़ता है?
0: देखो, सिर्फ बालों से नहीं, ये बालों का जो इकोसिस्टम सपोर्टिव सिस्टम है, आपका मेन कॉज क्या है? अगर हेयर फॉल का मेन कॉज अलग है, अगर मैंने उसको नहीं ठीक किया तो सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं होने वाला।
1: जी, वो एक पूरा स्कैल्प और पूरा इकोसिस्टम,
0: ये होलिस्टिक अप्रोच करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: दूसरा मैं कह रही थी कि जो आपने देखेंगे ना, जो तेल लगाते हैं, रेगुलर तेल लगाते हैं, उनका शायद बाल झड़ने का प्रमाण जल्दी ठीक हो जाता है।
1: जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको फिर बोल दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आए।
0: जो बालों में तेल लगाते, बालों में मतलब स्किन पर, जब बालों में हम तेल लगाते हैं वो कंडीशनिंग करके होता है, सर के स्किन को तेल लगाते हैं वो इकोसिस्टम इंप्रूव करने का काम करता है,
1: उनके बाल सही सलामत रहते हैं,
0: रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर एक गाना आएगा और वो सावन की घटा फिल्म का गाना है, जुल्फों को हटा दे चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। सुनते हैं ये गाना।

0: पॉपुलर मान्यताओं में तोड़फोड़ कर दी जिनको हम मानते थे कि जैसे झाग वाला शैंपू तेल ना लगाना, ये तमाम बातों को लेकर बड़ी उपयोगी जानकारी आपने दी। और बालों को लेकर जो फैशन है, मतलब तरह तरह के कलर्स लगाना, आजकल तो लोग पर्पल और नीला और हरा क्या क्या रंग बालों के कर लेते हैं, वो कितना नुकसानदेह, अब इस पर आ जाते हैं पहले। हाँ
1: आपका बैंक बैलेंस है और आपको खर्चा करना है, कितना खर्चा करना चाहते हो ताकि आपका बैंक बैलेंस थोड़ा नेगेटिव में जाए, ये आपको डिसाइड करना
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है ये।
1: मतलब ये जो कलरिंग करते हैं बहुत, जो डार्क कलर्स अलग तरह का करते हैं,
0: पहले ये नहीं होता था लेकिन आजकल बहुत ही, वो जो बम्बैया शब्द है, अतरंगी कलर्स।
1: बट ये आपका फैशन है,
0: जी
1: पर ये फैशन आएगा आपको नुकसान के साथ आएगा,
0: राइट,
1: आपको चलने वाला है
0: नहीं
1: नहीं, आप बोल रहे नहीं, पर किसी को चलने वाला भी हो सकता है,
0: जी
1: आप सोचिए कि नुकसान के साथ आने वाला है तो ये बैगेज के साथ आएगा, आप तैयार है उसके लिए, गो अहेड।
0: बहुत सही बात है। मतलब ये जो लोग तरह तरह के बालों में कलर्स लगाते हैं, चाहे वो गोल्डन कलर्स हो, चाहे
1: हाँ,
0: वो
1: लेकिन क्या होता है, इन लोगों को बहुत ऐसे एक मन में इच्छा होती है, बहुत सारे यंगस्टर
0: ट्रेंड के
1: को
0: साथ चलना।
1: ट्रेंड के साथ चलना, तो मैं ट्रेंड के साथ नहीं चलूंगी तो कैसा लगेगा, मैं करके देखती हूँ, ठीक है एक बार करके देखो, दो बार करके देखो, अब डिसाइड करो कि आपको डैमेज कितना हो रहा है, देन यू टेक अ कॉल कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हम ऐसे जनरलाइज मैं स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि नहीं करो,
0: लेकिन
1: करना है नुकसान, आप वो नुकसान सहन करने को तैयार है, ठीक है फिर
0: तब
1: आगे
0: क्या
1: बढ़िए।
0: जी, और एक उम्र के बाद, आजकल तो एक उम्र के पहले भी बाल सफेद हो जाते हैं और लोगों को जरूरत पड़ती है बाल काले करने की, और उसमें केमिकल कलर्स का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, या आप जाके प्रोफेशनल से लगवाते हैं। और दूसरा तरीका है मेहंदी लगाने का। इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखिए।
1: हाँ, जो ग्रे होते हैं जिनके ग्रेइंग जो शुरू होती है 20 साल के पहले, उसको जेनेटिक बैकग्राउंड है,
0: जी, उसको
1: कुछ
0: रोक सकते हैं?
1: कम कर सकते हैं, कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ तरह के लोशंस है मार्केट में जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं, पर इसका 100% नहीं उपयोग होता है, 40-50% इम्प्रूवमेंट होता है लोगों में, और जो उम्र के हिसाब से ग्रे बाल होते हैं उसको रिवर्स करने का अभी साइंस ने कोई तोड़ नहीं डाला है उसमें, तो उसको आपको कलर करना होता है। अभी कलर कौन सा करें, कलर में बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंपनी का जिससे ड्राई नहीं होते हैं और जिसकी एलर्जी नहीं है, कुछ लोगों को डाई की एलर्जी भी होती है तो उनको वो कलर नहीं सूट होता है, फिर बगैर वो इनग्रे पीपीडी फ्री वाला कलर लेना पड़ता है।
0: आजकल वो एक सेंटेंस बहुत चलता है ना, अमोनिया वाला कलर और
1: हाँ, अमोनिया
0: अमोनिया
1: से
0: फ्री
1: थोड़ा
0: कलर।
1: डैमेज कम हो जाता है
0: जी
1: क्योंकि ये तो हेयर डाई है, अमोनिया रहेगा तो थोड़े ड्राई होते हैं बाल, डैमेज मतलब ड्राई होते हैं, तो अमोनिया फ्री से ड्राइनेस कम हो जाता है, जैसे ही आप वैसे ही जैसे आपका कलर डाई भी लाइट कलर का होगा, गोल्डन होगा, तो ड्राई बहुत ज्यादा ज्यादा होता है। मेहंदी लोग इसके लिए लगाते हैं कि वो ये कलर डाई से डरते हैं, पर अगर आप देखेंगे कलर डाई इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, साइड इफेक्ट्स वाले होने वाले प्रमाण बहुत कम है,
0: बिल्कुल।
1: पर मेहंदी लगाने से ड्राइनेस काफी ज्यादा आता है बालों में।
0: तो इसमें एक फैसला करना पड़ेगा कि
1: हाँ,
0: इन दोनों में से कौन सी चीज ठीक है।
1: अमोनिया फ्री अच्छे कंपनी का डाई,
0: जी
1: उसके साथ आपको कंडीशनर करिए तो आपके ड्राई नहीं होंगे बाल, तो ये जो डाई करना है कलर डाई, अगर आप ग्रे के लिए करना चाहते हैं तो नुकसान नहीं होता है, हम सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, पर आप बहुत अलग तरह के मतलब रेड वाले कलर करोगे तो आपके बाल ड्राई होते रहेंगे, फिर वो ड्राई बालों को ठीक करने के लिए आप दूसरी प्रोसेस करोगे, तीसरी प्रोसेस करेंगे, तो ये तो विशेष साइकिल चालू रहेगी,
0: बिल्कुल। तो इसलिए समझदारी से चीजों का
1: समझदारी से
0: इस्तेमाल
1: करना
0: करना जरूरी है।
1: जरूर।
0: यहां पर एक गाने की बारी है।

शाम महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ।

0: ये जो हेयर कलर्स हैं, क्या ये कोई बड़ा नुकसान अचानक कर सकते हैं कि बालों का एकदम बड़ा पैच अचानक गायब हो गया?
1: अगर आपका कलर लो क्वालिटी का है, उसमें इरिटेशन बहुत ज्यादा है, रिएक्शन हो गई आपको, यस, कुछ लोगों को रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये रिएक्शन वाली बात हुई तो डेफिनेटली यस
0: तो इसको लेकर सावधानी की जरूरत
1: यस
0: है। एक बहुत बड़ी और कॉमन समस्या हर उम्र के लोगों में है और वो डैंड्रफ की समस्या है, जिसको लेकर भी विज्ञापन इंडस्ट्री बहुत सक्रिय है। तो डैंड्रफ से जुड़ी भ्रांतियां दूर कीजिए।
1: डैंड्रफ के साथ बहुत लोगों को एक स्टिकी टाइप का डैंड्रफ होता है, किसी लोगों को फ्लेकी फ्लेकी
0: जो
1: टाइप का
0: जो नीचे
1: डैंड्रफ होता
0: गिरता
1: है,
0: रहता है।
1: गिरता रहता है। लोगों में धारणा ऐसी है कि डैंड्रफ हुआ तो मुहांसे हुए, ये गलत
0: अरे
1: है, ये गलत है। वो डैंड्रफ फेस पर आता है और फेस में, वो अलग है, मुहांसे का पैथोजेनेसिस बिल्कुल अलग है और डैंड्रफ का अलग है। डैंड्रफ के प्रकार जो होते हैं उसमें आपको समझना चाहिए माइल्ड मॉडरेट सीवियर है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होती है। यहां मैं सावधान करना चाहूंगी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब हम स्कोप के नीचे देखते हैं, बहुत सारे आधे लोगों को स्काल्प सोरेसिस होता है। ये स्काल्प सोरेसिस अलग बीमारी है, या जैसे हमारे बॉडी में सोरेसिस है वैसे एक स्काल्प सोरेसिस एक प्रकार है।
0: उसके बारे में भी बता
1: हाँ,
0: दीजिए।
1: तो ये स्काल्प सोरेसिस हमको वो टेस्ट करने मतलब ट्राइकोस्कोप से समझ में आती है कि स्काल्प सोरेसिस है या डैंड्रफ है। जो जो लोगों को डैंड्रफ करके डायग्नोस हुआ, 50% लोगों में स्काल्प सोरेसिस निकला, इसका हमने रिसर्च किया हुआ है। तो स्काल्प सोरेसिस की ट्रीटमेंट अलग है, हालांकि उसको क्योर नहीं है, बट हम बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं दवा से। दवा भी बहुत सिंपल है, बहुत हार्श दवा नहीं है, बट रिकरेंस इज वेरी कॉमन, तो लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो उसको कुछ चीजें ऐसी होती है कि रिकरेंट होती रहती है, कंट्रोल करना हमारे, जैसे हम डायबिटीज की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मुझे खाना नहीं है, कितने सालों तक मैं खाऊं,
0: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता
1: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए।
0: जी। कई शैम्पूज इस तरह के विज्ञापन के साथ आते हैं कि वो डेंड्रफ के दुश्मन है, क्या ऐसा होता है?
1: शैम्पू डैंड्रफ के दुश्मन है कि शैम्पू डैंड्रफ के लिए है?
0: बताइए, ये शैम्पू डेंड्रफ हटाते हैं या नहीं हटाते हैं?
1: नहीं, कुछ शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं, और बहुत बार कैसे होता है कि सेम तरीके का शैम्पू जब आप इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो शैम्पू काम करना बंद हो जाता है।
0: अच्छा, ऐसा
1: मतलब
0: भी
1: आपको
0: होता है।
1: लगता है कि अब ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट को कभी कभी ये मैलेजिया फरफर करके एक फंगा होता है, वो काम नहीं करते, तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ शैम्पू आप ले सकते हो। पर भी आपके नहीं जा रहे, तो आपको देखना है कि आपका स्काल्प सोरेसिस नहीं है ना, आपको नहीं पता चलेगा। दोनों स्काल्प सोरेसिस और डैंड्रफ बहुत दिखने में सेम दिखते हैं। इससे अच्छा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपने ट्राई किया है,
0: जी
1: आपको फर्क नहीं हो रहा है, तो आपको स्काल्प सोरेसिस है या नहीं है इसकी जान जान लीजिए।
0: ओके।

0: उसको आपको टेस्ट करवा लेना है जी, ये एक थंब रूल होगा।
1: थंब रूल मतलब लोग ऐसे बहुत सालों तक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, एक छोड़ा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और वह परेशान हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपको स्कल्प सोरेसिस है कि नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये मैसेज जाना चाहिए,
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं और उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करेंगे जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
1: बहुत बड़ा मुद्दा।
0: यहाँ पिया का घर फिल्म का गाना आ रहा है, ये जुल्फ कैसी है जंजीर जैसी है ना।

0: एक और बहुत ज्यादा चलन चारों तरफ है कि कोई एक व्यक्ति अपना ट्रांसप्लांट करवा के आता है और एकदम उसका रूप बदल जाता है और सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये क्या किया, तो पता चला कि उसने ट्रांसप्लांट करवाए और बाल मतलब लुक जो है वो पुराना वाला आ गया। ये तरीका क्या जनरलाइज्ड सब लोगों के लिए कारगर है या ये कुछ कुछ लोगों पर काम करता है?
1: सब लोगों पर कारगर के लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका अंडरलाइन कॉज क्या है।
0: जी,
1: अगर अंडरलाइन कॉज है एंड्रोजेंडिक एलोपेशिया या सिकेट्रिशियल एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। अगर हेयर फॉल का कारण अलग है और आप नहीं जानते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करने से मतलब नहीं है। अभी सेफ्टी के इश्यू में अगर बात करें तो बहुत बड़ी मतलब हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी हो रहा है आजकल कि बहुत सेंटर पर टेक्नीशियंस हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, टेक्नीशियंस एनेस्थीसिया देते हैं।
0: ओहो,
1: तो ये गलत बात हो जाती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो भी, ये एक प्रोसीजर है जो लोकल में होती है। जैसे आपके यहाँ हम सूचर करते हैं, समझो आप एक सर्जन से सूचर करवाए हैं या कंपाउंडर से सूचर करना पसंद करोगे?
0: सीधी सी बात है।
1: लोकल एनेस्थीसिया देते हो, डॉक्टर को सब मालूम है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, रिएक्शन हुआ, कैसे मैनेज करना है, कितने अमाउंट में लोकल एनेस्थीसिया देना जरूरी है, अंडरलाइन पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पेशेंट स्मोकर है या कोई कन्वर्शन की मेडिसिन ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये सब कौन कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है।
0: यस।
1: सो अगर इसमें उदाहरण मैं देना चाहूंगी तो अगर मैंने आपको एक चक्कू दिया जो आप मूर्तिकार है, और एक चक्कू मैंने छोटे बच्चे को दिया, चक्कू चक्कू ही है पर छोटा बच्चे के हाथ में बहुत डेंजरस है और आप मूर्तिकार हैं, आप एक अच्छी मूर्ति बना सकते हैं तो आपके हाथ में बहुत सेफ है।
0: Yes.
1: तो आपका सर आपके किसके हाथ में दे रहे हैं वो जानना जरूरी है,
0: बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
1: यस yes.
0: बिल्कुल। ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या है और ये कितना महंगा है?
1: ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है
0: जी,
1: क्योंकि ये वन टाइम एक ही दिन में होता है ट्रांसप्लांट। और प्रोसेस ये है कि आपके जो पीछे के बाल होते हैं, मतलब हमारे गर्दन के पीछे के साइड के ऊपर के जो बाल होते हैं, वो जल्दी नहीं जाते हैं, मतलब थिन नहीं जल्दी होते हैं, तो वहां से निकाल के रिपोजिशनिंग, बेसिकली वहां से बहुत घने होते हैं, वहां से कुछ प्रमाण से 2,000, 3,000, 4,000 हेयर फॉलिकल्स, मैं हेयर नहीं बोल रही हूँ, हेयर फॉलिकल्स, एक फॉलिकल में शायद दो भी हेयर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो हम जितना एरिया होगा वो हिसाब से गंजे एरिया पर डालते हैं। अभी डालने का तरीका और लगाने का तरीका बताती हूँ। लोकल एनेस्थेशिया में वो रूट्स निकालने पड़ते हैं, तो रूट्स के साथ हेयर होते हैं, साथ में छोटे हेयर होते हैं क्योंकि ट्रिम करना पड़ता है
0: जी।
1: तो रूट्स को हम जैसे हम झाड़ की सैंपलिंग करते हैं, वैसे रूट्स को निकाल के हम गंजेपन को जगह पर एक निक देते हैं, स्लिट देते हैं छोटी सी, और उसमें हम डिपॉजिट करते हैं ताकि बॉडी उसको रूट्स को लिए और हेयर उसमें से बाहर निकले। बट हेयर निकलने का टाइम रहता है 6 से 9 महीना
0: जी,
1: उसके बाद वहां से बाहर है। और आप उसको कॉम कर सकते हैं, शेप नॉर्मल, मतलब आपके ओरिजिनल
0: ओरिजिनल बालों की तरह हो जाते हैं,
1: बिल्कुल ओरिजिनल बालों के,
0: पौधे को यहां से हटा के
1: वहां लगा दिया
0: जी। जी, और आपने कहा कि एक महंगी प्रोसेस है,
1: ये थोड़ी महंगी प्रोसेस होती है,
0: क्या ये फेल्योर भी हो सकती है?
1: फेल्योर रेट बहुत कम है
0: जी,
1: अगर अच्छे सर्जन ने किया तो फेल्योर रेट बहुत कम है
0: जी। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं,

डॉक्टर, हमने ये इतनी सारी बातें की तो लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या तरीका है बालों की देखभाल का, लेकिन कई बार ये होता है कि बाल तो चले ही गए,

0: डॉक्टर, इतनी सारी बातें हमने की इसमें ना, महिलाओं की बातें हमने की, पुरुषों की बातें की, अलग अलग उम्र के लोगों की बातें की, बातें टीनेज से शुरू हुई, बच्चों में बालों की जो समस्याएं इन दिनों में आप देख रही हैं वो क्या हैं और क्या उनके निदान और सावधानियां हैं?
1: आप अभी सही पकड़े हो। बच्चों में बहुत कॉमन हो रहे हैं बालों की समस्या
0: जी।
1: उनके रीजन अलग है, जो बड़ों में है वो रीजन नहीं है बच्चों में। फंगल इन्फेक्शन है बच्चों में, बच्चों में एलोपेशिया एरियाटा कॉमन हो रहा है। ये दो चीजें बहुत सारे हमने कॉमन देखे, और जनरली पैंडेमिक के बाद एलोपेशिया एरियाटा बहुत कॉमन हो गया बच्चों में, जो अभी बड़ों में कम दिखाई देता है लेकिन बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। और इसमें छोटे छोटे ऐसे पैचेस, राउंड राउंड पैचेस, बहुत सारे राउंड राउंड पैचेस आते हैं। बच्चे स्कूल में जाना टालते हैं क्योंकि उनके स्कूलमेट्स उनको चिढ़ाते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो कैप लगाए हुए कोई बच्चा दिखेगा तो एक तो फंगल इन्फेक्शन होगा उसको, या तो एलोपेशिया एरियाटा होगा।
0: ओके,
1: फंगल इन्फेक्शन के लिए कैप जो पहनते हैं, कोई कैप पहनता है, वो कैप शेयर नहीं करना चाहिए, उनकी कोम शेयर नहीं करना चाहिए। और तुरंत ट्रीटमेंट इसके लिए जरूरी है कि कुछ फंगल इन्फेक्शन जो स्काल्प में होते हैं उससे परमानेंट हेयर डैमेज हो जाते हैं। परमानेंट मतलब वहां कभी बाल नहीं आएंगे।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, तो उसके लिए वो केरियन कहा जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। और इसकी ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कि एक दिन दस दिन, इसकी ट्रीटमेंट कभी कभी चार हफ्ते से छह हफ्ते तक भी चल सकती है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है बालों के नीचे के हिस्से तक जाके बैठता है, तो उसको निकालने के लिए टाइम लगता है। और ये छह हफ्तों तक मेडिसिन लेनी होती है, तो इनके टॉवल्स अलग, कोम अलग, सोप अलग।
0: अच्छा, इतना सब करना पड़ता है।
1: इतना सब करना पड़ता है
0: जी।
1: एलोपेशिया एरियाटा, अभी एलोपेशिया एरियाटा की जो बात करते हैं, सब लोग घर का सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर का सुनते हैं, कुछ अलग अलग अलग चीजें यूज करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक है। इसमें टाइम बहुत निकल जाता है, कभी कभी बहुत साल भी निकल जाते हैं, और जब तक हमारे पास आते हैं उनके पास छह साल हो जाते हैं। ये पांच छह साल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टाइम पर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी जो रीग्रोथ की पोटेंशियल है वो कम होती जाती है।
0: जी, जी, जी।
1: जितना आपने टाइम गंवाया उतना आपका हेयर ग्रोथ की

0: चांसेस कम होती जाती है। तो इस पर रिसर्च अभी लेटेस्ट जो डेवलप्ड हुए है उसमें बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो बालों की ये जो एलोपेशिया एरेटा पर इफेक्टिव रीग्रोथ 100% पॉसिबल होने के चांसेस है।
1: ओके, तो एक उम्मीद बंधी है।
0: यस, बट ट्रीटमेंट टाइम पर लेना, इट्स अ टाइम बाउंड डिसीज मैं कहूंगी।
1: हमारी पूरी बातचीत में ये बात बार बार आती है कि समय पर सावधान होकर इलाज की तरफ बढ़ना है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: इतनी लंबी बातचीत का जो आखिरी मकाम है, मुझे लगता है कि यहां ये बात करनी जरूरी है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल में बालों की सामान्य रूप से देखभाल का क्या पैटर्न होना चाहिए। इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं कि बदलते हुए मौसमों में भी किस तरह से हम अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में बालों की देखभाल करते रहें, क्या आइडियल तरीका है?
1: आपका लाइफस्टाइल के साथ आपका शैम्पू कैसे यूज करते हो? आप कितने कड़ी धूप में जाते? बहुत बार कड़ी धूप में हम प्रोटेक्ट नहीं करते बालों को, तो कड़ी धूप में से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं बहुत कड़ी धूप में। तो नॉर्मल शैम्पू, अच्छा वाला शैम्पू जो हार्श नहीं हो, बहुत झाग वाला नहीं हो, रूटीनली आपको 2-3 बार हफ्ते में करना चाहिए। साथ में अगर ऑयल लगा के करें 1 घंटा पहले या

0: रात को ऑयल लगा के करें तो बेहतर है। खाने में आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कीजिए, जो अभी आजकल आया है ऑटोफेजी, ऑटोफेजी और 16-16 घंटे खाते नहीं है, उसका असर बालों पर गिरता है। तीसरी बात जो है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो हमारे इसमें अमाइनो एसिड्स की थोड़ी कमतरता होती है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स में इतने अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो अमाइनो एसिड लेना जरूरी है। फिर आपका प्रोटीन इंटेक भी, बहुत बार वेजिटेरियन लोगों का प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। ये नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसके बाल नहीं झड़ रहे हैं
1: जी।
0: जब आपके बाल झड़ते हैं तो क्या कारण है, रीजन क्या है, वो एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होती है।
1: बिल्कुल।
0: और सोना,
1: नींद
0: मॉर्निंग से हो गया, अभी शाम का टाइम, शाम को हेवी खाना नहीं खाना है। आप कहेंगे मैं 11 बजे नॉनवेज खा के सोता हूँ, अच्छा आपके इंटेस्टाइन सोने के टाइम पर आप उसको इंटेस्टाइन को जगा रहे हो
1: जी जी,
0: तो वो नहीं ठीक है। ओकेशनली ठीक है, पर हर बार डेली डेली होते रहेगा तो नहीं चलेगा। बाहर का आप बहुत सारा चीजें खाते हैं जो प्लास्टिक में आती रहती है, और टेस्ट के लिए एक बार खा लिया ठीक है, पर आपने उसको आदत ही बना लिया तो फिर कैसे होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो ये सारी चीजें ये नॉर्मल हेयर को मेंटेन करने के लिए है, बाकी तो फिर बीमारी के लिए तो हम लोग हैं।
1: तो मतलब ये है कि एक तो नॉर्मल जो हमारी एक लाइफस्टाइल को हमको पालन करना है और सावधानियां जरूरी तौर पर रखनी है। डॉक्टर रचिता धुरत, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारियां आपने बड़े विस्तार से दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, हसीन जुल्फों पर, खूबसूरत बालों पर ना जाने कितने ही गीतकारों ने गीत भी लिखे हैं। जब हम सजते संवरते हैं तो अपनी हेयर स्टाइल को खास तरह से संवारते हैं। बालों के स्वास्थ्य की किस तरह से देखभाल की जाए कि इनकी सुंदरता बनी रहे, तो आज के सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। अगले सोमवार आज ही के दिन एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे हमारे विविध भारती के स्टूडियो में। आपके स्वास्थ्य को लेकर फिर होंगे एक नए विशेषज्ञ, तो सुनते रहिए सेहतनामा। कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: इसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? जुदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोरदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

ये कवाली आप सुन रहे थे हंसते जख्म फिल्म से, मोहम्मद रफी बिलबीर और साथियों की आवाजें थी। कैफे आजमी के बोल थे मदन मोहन का संगीत था।

पहली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, हेमलता और चंद्राणी मुखर्जी की आवाजें थी। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: राजेश रोशन की तर्ज इब्राहिम अश के बोल अनुराधा पौडवाल पंकज उदास और साथियों की आवाजें फिल्म थी बाहर आने तक।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: शहरयार की लिखी गमन फिल्म की ये गजल आपने सुनी सुरेश वाडकर की आवाज में, जयदेव का संगीत था।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

बजरंगी भाईजान, इस फिल्म की ये कवाली आपने सुनी अदनान सामी और साथियों की आवाजों में। कौसर मुनीर के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। रंग तरंग ये प्रोग्राम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया सहित विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। इससे पहले सम्मेलन स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने हाथ मिलाया और बातचीत की। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरी। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के विश्व के बड़े आयातकों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का आर्थिक प्रदर्शन विदेशी घटनाक्रमों के प्रति प्रतिक्रिया देने और अपनी विकास गति को बनाए रखने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में GDP वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: भारत ने सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक द्वारा गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के इस निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, न ही उसकी कार्रवाई में भाग लिया और न ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जलविद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और

विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में सहायता करेगा। केंद्रीय गोबरधन योजना आज से प्रभावी हो गई है। ये योजना 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की है। भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। घरेलू शेयर

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

0: की तर्ज थी इंदिवर की रचना आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म थी पुनर्मिलन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आप सुन रहे थे झुक गया आसमान, फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हाँ।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: चंदन बख्शी का लिखा गीत मिस्टर एक्सन बॉम्बे फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार।

0: बाबू हम हैं बनारस बाबू।
1: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी राजेंद्र कृष्ण की रचना, आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म थी बनारसी बाबू।

अब हम आपको सुनवाएंगे दोपहर बाद 3 बजे से। और अब आप कनेक्ट हो चुके हैं हम सबके हर मन प्यारे आकाशवाणी अयोध्या से 101.9 पर और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। साथ ही साथ आप इसे सुन रहे हैं वेब्स ओटीटी पर भी। आपका रेडियो मीत एजी अमरजीत आपके साथ है आज दिन के प्रोग्राम में। आपकी फरमाइशों को भी पूरा करेगा 1 बजे। उससे पहले लोक रंग का ये कार्यक्रम है जिसमें आपको अवधि

0: लोकगीत हम सुनवाने वाले हैं बस कुछ ही देर के बाद। उम्मीद करते हैं आप हंसते गाते मुस्कुराते होंगे, सेहतमंद होंगे। दुआओं में जब आपने मुझे याद कर लिया तो मैं पहुंच गया आपके पास। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों में।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
4: टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है,
5: बच्चे भी खरीद सकते हैं।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबसे पहला लोकगीत इस कार्यक्रम में आइए सुने अजय कुमार यादव और उनके साथियों की आवाज में।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबसे पहला लोकगीत इस कार्यक्रम में आइए सुने अजय कुमार यादव और उनके साथियों की आवाज में।

0: अल्पना मेहरोत्रा की आवाज में।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: और अब आइए सुने इस कार्यक्रम में अवधराज मौर्य की आवाज में ये लोकगीत कहरवा के रूप में। इसके बाद 1 बजे से आपकी फरमाइशों का प्रोग्राम होगा कुछ तुमने कहा।
3: हम चिरैया तोहरी, हम चिरैया तोहरी,

0: आपकी बात कार्यक्रम में
1: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
0: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
1: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
2: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
1: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
2: 830-321-9911 पर भेज दें।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: यही सुनते हैं आपकी फरमाइशों का प्रोग्राम, जिसके लिए फरमाइशें हमें मिल चुकी हैं दिन 11 बजे तक आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज पर। जी हाँ, करीब करीब 150 से भी ज्यादा कमेंट्स जो है मिले हैं, और पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को आज इस प्रोग्राम में हम शामिल कर सके और उनकी पसंद के गाने सुनवा सके।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना रेडियो माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे सुनने वालों, दोपहरिया कैसी बीत रही है? बढ़िया बीत रही है ना? और अब तो हम आ गए आपके पास आपकी पसंद के गाने लेकर, आपकी बातों को लेकर, कुछ तुमने कहा प्रोग्राम में। और सब सभी हंसते गाते मुस्कुराते होंगे, सेहतमंद होंगे, और दुआओं में जब आपने मुझे याद कर लिया तो मैं पहुंच गया आपके पास हवाओं की तरंगों पर सवार होकर आकाशवाणी अयोध्या FM से। अब तो बहुत दूर दूर तक लोग इसे मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं, देश और विदेश में। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास आबू धाबी से भी कॉल आई हेलो अयोध्या प्रोग्राम में, और कल तो कॉल, जी हाँ, वो भी बहुत दूर से आई थी, उसके बारे में बताएंगे आपको। पहले बता दें कि आज का गाना पहला किसने पसंद किया है। जी हाँ, बेटा फिल्म से गाना हम आपको सुनवाएंगे अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज़ में, पसंद किया आप सब ने। जिला खरगोन सनावत से अर्चना वर्मा, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, और ये हमारे पास कमेंट पहुंचा गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्किन की ओर से। आप हमारे श्रोता ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदू लाल पटवा, दिल्ली बिहारी कॉलोनी शहदरा से अनमोल, गुरमीत सिंह मीदा साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से भेज रहे हैं। आप हैं बुलंदशहर से उमेश गौर, और न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से सुरेंद्र खुराना है। भाई दिल्ली में भी बहुत ही प्रोग्राम सुना जा रहा है, जो हमारी कैपिटल है, राजधानी है, वैसे नई दिल्ली में अगर देखा जाए तो हमारी राजधानी है, दिल्ली और नई दिल्ली तो पास पास में ही है। और ये देखिए अगला जो कमेंट हमें दिख रहा है, नंद कुमार ठाकुर का मिला है बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से, बेटा फिल्म का ही गाना पसंद कर रहे हैं ये हमारे श्रोता। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोडानी, धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश के अशोक सिंह और सुनीता सिंह, इनकी कॉल भी सुबह रिसीव हुई हेलो अयोध्या प्रोग्राम, इनसे बातें भी हुई, शुक्रिया जी आप इस प्रोग्राम में भी शामिल हो गए। गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से ओम बागड़िया, और हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम से ये कमेंट पहुंचा मेरे पास फेसबुक पेज पर, जगदीश धाकड़ नामा की ओर से, और सहारनपुर में ये गाना सुनेंगे राधा नामदेव। तो लीजिए सुनिए आप सब भी अपनी पसंद का ये गाना बेटा फिल्म से।

और हमारी एक बहुत ही पुरानी श्रोता हैं जूही द्विवेदी सुहावल अयोध्या से, इन्होंने कमेंट किया है और इस वक्त भी ये प्रोग्राम सुनी रही होंगी। और इन्होंने लिखा है, कुछ पंक्तियां लिखी हैं, गाने की फरमाइश तो नहीं लिखी है, लेकिन कह रही किसी भी गाने में हमारा नाम शामिल कीजिएगा तो आपका स्वागत है। लिख रही हैं कि तू चांद है जिसको मैं पाना नहीं चाहती, पर तुझे देखने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। तुझे दूर से चाहना मंजूर है मुझे, मेरी इस इबादत पे गुरूर है मुझे। तुझे अपने लफ्जों में छुपा के रखूं, तुझे अपने लफ्जों में छुपा के रखूं, अपनी शायरी में बसा के रखूं। चांद सा है तू, तेरी चांदनी नहीं मैं, चांद सा है तू, तेरी चांदनी नहीं हूं मैं, खुद को जमी बना के रखूं। बहुत ही बढ़िया आपने लाइनें लिखी हैं और शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। आप परिवार के साथ जूही द्विवेदी जी ये प्रोग्राम सुन रही होंगी। तो आज के प्रोग्राम का दूसरे गाने में भी हम कुछ और श्रोताओं के भी नाम शामिल कर लें और वो गाना आप सुनेंगे जीत फिल्म से, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी। ये गाना है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। पसंद करने वाले हैं इसे तीव्रता डबरी पारा कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मारकाम, रानीगंज बंगाल से ये कमेंट मिला है रवि की ओर से, दिल्ली से ध्वनि ने भी इस गाने को पसंद किया है, और गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर हैं। अगले श्रोता हैं गांधीनगर गुजरात से ही मंजुला राठौर, तंगौरी मोहाली पंजाब जो चंडीगढ़ के पास है ये मोहाली, वहां से गुरप्रीत तंगौरी ने भी गाने को पसंद किया है। और आप हैं हमारे श्रोता टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से रीमा डोंगर दीवे, भागलपुर से ये फरमाइश मिल रही है उस्तु की ओर से, कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, ये भी आकाशवाणी के बहुत ही पुराने श्रोता हैं, बहुत से केंद्र ये सुनते हैं, और जब मनभावन प्रोग्राम होता था तब इनकी चिट्ठियां भी यहाँ आया करती थी और बहुत से श्रोताओं की चिट्ठियां यहाँ आया करती थी जो आज भी मेरे पास यादगार के तौर पर संभाल कर रखी हुई हैं। और शुक्रिया जी सुखविंदर सिंह जोड़ा जी। और ये हैं वरवट बगाल बुलढाणा से नारायण हागे, कोपर गांव से सुरेश मालोदे, इसी गाने के लिए आप हैं हमारे श्रोता आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगहेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से

अमित जंघेल। समस्तीपुर बिहार से भी हमारे पास श्रोता पहुंचे हैं मीरा सिंह, और जेवरा हिसार से सुरेंद्र भयाण, बिलराम गेट कासगंज से ए असलम सैफी। तो आप सबको हम सुनवा रहे हैं आज के प्रोग्राम का ये दूसरा गाना, जीत फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। और इसी गाने को हमारे ये श्रोता भी सुन रहे हैं, पाटेश्वरी विहार कॉलोनी नियामा से गजेंद्र मौर्य और इनके परिवार के सभी दोस्त, और ग्राम गुदलूपुर बस्ती से अजिता रावत और इनके परिवार के सभी लोग। और ये पत्र हमारे पास, पत्र नहीं बल्कि कमेंट पहुंचा है सुहावल से,

0: बस एक ब्रेक आ रहा है, ब्रेक के बाद फिर से आपकी फरमाइशों का सिलसिला हम शुरू कर देंगे कुछ तुमने कहा प्रोग्राम में।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें। कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें। आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या FM की स्टूडियो वॉच में 1:19:22 हो रहे हैं। प्रोग्राम कुछ तुमने कहा में कुछ और दोस्तों को शामिल किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ये प्रोग्राम सुनते हैं डेली, और शनिवार और इतवार के दिन केवल आधे घंटे का ये प्रोग्राम होता है, क्योंकि आधे घंटे के लिए हेलो अयोध्या प्रोग्राम आ जाता है, और बाकी दिनों में ये प्रोग्राम पूरे एक घंटे का आप सुनते हैं। और अब आरजू फिल्म से गाना आपके पास आने वाला है, हमारे इन सभी दोस्तों की पसंद पर, फूलों की रानी। यही गाना है मोहम्मद रफी की आवाज में। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, और सालार पहलगाम कश्मीर से देखिए शामिल हो रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन। आप हमारे श्रोता निम्नाबाद जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, नई बस्ती गंज डुंडवारा के श्रोता हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, ये हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, और खुर्जा से ही प्रकाश अरोड़ा। आप मैसेज थोड़ा छोटे रखेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में कमेंट में केवल एक नाम ही हम लोग बोलते हैं, फिर भी आप लोग 10-10, 12-12 नाम लिखते हैं, तो फिर प्रोग्राम में थोड़ा व्यवधान आता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बाकी सभी दोस्तों को मौका मिलेगा इस प्रोग्राम में, है कि नहीं। और ये अगले श्रोता हैं पद्मा टॉकीज नेपाल नगर से, भी बहुत दिन से सभी आकाशवाणी केंद्रों को सुन रहे हैं, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह। देखिए जब आप लोग नाम को ज़्यादा लिखते हैं ना दिल से, नाम कभी कभी दूसरा निकल भी जाता है, क्योंकि हमारे सभी श्रोता बहुत ही प्यारे हैं। और ये छत्तीसगढ़ से लवाई से प्रोग्राम सुन रहे हैं गुलाब दास मानिकपुरी जी, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, शमसुल कमर राही भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं गंज डुंडवारा से, आप हैं उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत। और इसी गाने को पसंद कर रहे हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग से बल करण वर्मा, आप हमारे श्रोता चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत से कृष्णपाल सिंह चौहान, ककरही बाजार अयोध्या से इंद्र कुमार चौरसिया, खुर्द महल अयोध्या से अजहर हुसैन। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद का भी गाना मोहम्मद रफी की आवाज़ में है।

और अब आ रहा है प्रोग्राम का एक और गाना आपके पास, पत्थर के सनम फिल्म से, और इसे गाया है मुकेश के साथ लता मंगेशकर ने, और पसंद किया है आप सबने। आप सबकी पसंद की बात ही क्या करें, एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे गाने लिखते हैं कि दिल झूम उठता है और पुरानी यादें हम सब की भी ताज़ा हो जाती हैं। जी हाँ, और पत्थर के सनम फिल्म का गाना पसंद किया है हमारे पास, ये कमेंट हमें मिला है संदीप मक्कड़ और इनके परिवार के सभी लोगों की ओर से, जो रहते हैं पिंगावाला चौक गोराया जालंधर पंजाब में, और गोराया के पास ही बहुत बड़ा टावर भी लगा हुआ है आकाशवाणी जालंधर का, तो उसको मैंने देखा भी हुआ है जब उधर से गुजरते हैं तो। और ताज मोहम्मद अंसारी ने भी इस गाने को पसंद किया, आज़ाद नगर लक्सर से, हरिद्वार से। और ये हैं हमारे पास रतलाम से कुंवर कृपाल सिंह, खरसावां झारखंड के श्रोता हैं सुकरा नायक, प्यार भरी नमस्ते के साथ। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी भी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बीड शहर महाराष्ट्र में इस गाने को सुनेंगे नंद किशोर घटे, और ये हमारे श्रोता हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा। जब आप लोग लिखते हैं ना कोई जगह का नाम, तो अपने जिले का नाम भी लिखेंगे तो पता लगेगा कि ये कुरावली कहां पर है, ठीक है ना, अगली बार ध्यान रखिएगा। और बांदा से फहीम मंसूरी भी प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। कुछ तुमने कहा प्रोग्राम

में हमारे अगले श्रोता है ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से पूनम वर्मा, और ये हमारे पास कमेंट अब पहुंचा हुआ है आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा की ओर से। इनके परिवार के बहुत से लोग भी हैं और परभणी महाराष्ट्र में इस गाने को सुनेंगे रुपेश संघई, जिला दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल, और ये कमेंट हमारे नजर में आ रहा है नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा की ओर से। तो लीजिए सुनिए आप सब अपनी पसंद का गाना, ये महबूब मेरे पत्थर के सनम फिल्म से गाना।

बीत चला है, 1:33 हो गए हैं और अब किसकी पसंद का गाना यहाँ आने वाला है, वो गाना है आशिकी फिल्म से तू मेरी जिंदगी है। और ये गाना पसंद किया है हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, ये भी बहुत दिन से रेडियो सुन रहे हैं और इनकी बहुत सी चिट्ठियाँ भी मेरे पास रखी हुई जो आकाशवाणी फैजाबाद पर ही पहले भेजते थे। ये हैं, आपको बताएं उससे पहले इन्होंने लिखा क्या है उसका जिक्र हो जाए। आपके केंद्र की पहचान आप सभी की मधुर आवाज़ है और यही आवाज़ हम सभी के दिल में राज करती है। आपको हमारा प्यार भरा अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। और ये हैं शिवाजी चौक कटनी के हमारे श्रोता बहुत ही पुराने अनिल ताम्रकार जी, क्या हाल चाल है, बढ़िया है ना आप? तो आपने बहुत से नाम लिखे हैं, किसी और प्रोग्राम में आएंगे तो आपके सारे नामों को पढ़ देंगे हम, आपके संदेश आपके गीत प्रोग्राम में भी, लेकिन इस प्रोग्राम में अगर हम सबके नाम पढ़ेंगे तो बहुत से श्रोता जो हैं वो रह जाएंगे, तो मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। तो अनिल ताम्रकार जी, आपका गाना जो है बस आने ही वाला है आशिकी फिल्म से, आप बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। और अनिल ताम्रकार के बाद कुछ और श्रोता भी इस गाने को पसंद कर रहे हैं। चंदौसी रोड चमनपुरा से मुकेश गौतम, ये हमारे श्रोता हैं। जबलपुर से माधव नामदेव, आप हैं अजीत कसाना मुरादाबाद से। और ये पहुंचे हैं कस्बा उघैती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता जी। और ये हैं इस प्रोग्राम कुछ तुमने कहा में बनारस से आजन कुमार सिंह। और अगला कमेंट हमें मिल रहा है हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल की ओर से, शुक्रिया जी आपका भी बहुत बहुत। यवतमाल विदर्भ से विनोद खट से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, और कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज। ये हैं सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ जी, गांधीनगर गुजरात से ज्योत्सना परमार। और ये हमारे पास कमेंट मिला है कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा की ओर से। तो आप सबकी भी पसंद का गाना आपके पास।

आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com यह है अयोध्या 101.9 रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगा। आपकी चॉइस, एजे अमरजीत आपके पास।

बस इसी तरह से सुनते रहें 101.9 पर और पूरी दुनिया में मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी अयोध्या को। और अब कुछ तुमने कहा प्रोग्राम में किसकी फरमाइश पूरे होने जा रही है और उसमें दोस्त भी और भी शामिल होंगे क्योंकि एनी सॉन्ग भी कभी कभी आप लिखते हैं ना, तो फिर नाम तो सभी सुनना चाहते हैं, गाने सारे ही अच्छे होते हैं, तो इसलिए एक एक नाम से सभी श्रोताओं को इस प्रोग्राम में मौका मिल सके ऐसा इसमें किया गया है। ताजमहल फिल्म का गाना पसंद किया है बठिंडा रोड मंडी डबवाली पंजाब से राजेंद्र नारंग और इनके परिवार के लोगों ने। और ताजमहल फिल्म के लिए एक और फरमाइश हमें मिली है गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर की ओर से। और कुछ अब एनी सॉन्ग के श्रोता शामिल हो रहे हैं। ये हैं हमारे पास ज़िला नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा और इनके परिवार के लोग। ये हमारे पास रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, आप हैं बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से ही नरेंद्र नेताम। भोजपुर तगा सहारनपुर से फरमाइश मिल रही है मोहम्मद इंतजार की ओर से, इनका भी इंतजार खत्म हुआ। और गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से सुबह

आशिक गोदारा, जमानिया गाजीपुर के श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, राजेंद्र सिंह हमारे पास पहुंचे हैं ऊपर कोट मोहल्ला चौकंठी बुलंदशहर से, बुलंदशहर से ही मोहम्मद सईद अब्बासी भी हैं, ग्राम लसूड़िया पाटा नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ से गोविंद वैष्णव उनके परिवार के लोग हैं, सतीश अनेजा जी पहुंचे हैं चंडीगढ़ से, ये भी आकाशवाणी के प्रोग्राम्स बहुत सुनते हैं हर केंद्र के, वैसे इनसे अभी मेरी बात कभी हुई नहीं है हेलो अयोध्या प्रोग्राम में, तो इनसे कहेंगे कि आप भी कभी हमारे प्रोग्राम में आइए हेलो अयोध्या में, वैसे कॉल करते होंगे आपसे भी बातें जरूर होंगी। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू उनके दोस्त, और ये हैं हमारे पास छिंदवाड़ा के श्रोता नाना जी लाम से, तो लीजिए सुनिए आप सब भी अपनी पसंद का गाना फिल्म ताजमहल से।

और अब कुछ और दोस्त भी इंतजार कर रहे हैं अपने गाने का भी, और आपको सुनवाएंगे सूर्या फिल्म से गाना, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में। वैसे मोहम्मद अजीज ने गाने बहुत ही कम गाए हैं बॉलीवुड में, लेकिन जितने भी गाने गाए हैं सब एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने उन्होंने गाए हैं, और उनको भला हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत से गाने मोहम्मद अजीज के हमारे लाइब्रेरी में हैं, तो उनमें से एक गाना आज हम प्ले करने जा रहे हैं अपने दोस्तों की पसंद पर। मजनू कटिला दिल्ली से कमल बालूजा हैं, इसी गाने को पसंद कर रहे हैं। सीताराम कांगड़ा एकता कॉलोनी रोहतक से, आप हमारे श्रोता सरता मालवीय, आपने कहाँ से लिखा? जी हाँ, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से इन्होंने कमेंट किया है।

बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़ और ये कमेंट हमें मिल रहा है गुल बालोद आलोट जिला रतलाम से आकाश महेश्वरी की ओर से उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह और इनके परिवार के लोग हैं मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा जलालाबाद वेस्ट पंजाब से सुरेश गगनेजा कालका से शुभ चंद्र बजाज गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा रघुनाथपुरा गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा इन्हीं बड़े बड़े पोस्टर बना के पहले भेजा करते थे रंग बिरंगे आपके संदेश आपके गीत प्रोग्राम में भी शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम हैं और ये हैं कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय और इनके परिवार के लोग वजीरगंज गोंडा ग्राम झिलाही से अलका शुक्ला और उनके परिवार के लोग और इसी गाने को इन्होंने भी सुनना चाहा है वजीरगंज अयोध्या कैंट से सपना सिंह ने तो आइए इन सब की पसंद पर सुने जी हाँ ये गाना है

और अब आज के प्रोग्राम का आखिरी गाने का टाइम भी आ गया, 1:54 होने जा रहे हैं, और वो गाना है प्रेम ग्रंथ फिल्म से विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में, और ये गाना पर्दे पर फिल्माया गया ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित पर, और पसंद किया हमारे इन सभी श्रोताओं ने। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, ये हैं मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग हैं, इनसे भी हेलो अयोध्या प्रोग्राम में उससे बातें हो चुकी हैं, और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी हैं, पाकुड़ झारखंड के श्रोता उत्तम कुमार भगत, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, बोधराज खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से फरमाइश कर रहे हैं। ये कमेंट हमें दिख रहा है बेरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमाकर, और आप हैं मेरे पास, देखिए कहाँ से, जनकपुरी नई दिल्ली से ये पहुँचे हैं प्रथम सलूजा, कहते हैं सत श्री अकाल, तुसी छा गए, किसी भी गीत में शामिल कर लें। जी हाँ, हम नहीं छा गए, आप सब भी छा गए आज इस प्रोग्राम में इतने बढ़िया बढ़िया गाने भेजकर, शुक्रिया जी आप सबका बहुत बहुत। और मंसूरी क्लब ग्राम एचौरा रामपुर से ये फरमाइश मिल रही है सकावत हुसैन मंसूरी की ओर से, और ये हमारे श्रोता हैं। जी हाँ, गाना भी शुरू कर दें। गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, चंदौसी रोड से अमन गौतम, और खंडवा से बुधनगर से राजू जी घड़ी वाले, तो घड़ी हमको भी दिख रही है, बस आखिरी गाना आपके लिए चला रहे हैं, शुक्रिया जी आप सबका। और शायद मेरे ख्याल से जो ये मंथ है आखिरी आकाशवाणी अयोध्या के लिए, दिन में इसके बाद शायद आपसे हम ना मिले, ये दिन की ड्यूटी का आखिरी प्रोग्राम है, और सुबह और शाम तो आपसे भी मिलते रहेंगे। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अपने साथ अपने घर का, पड़ोसियों का, दोस्तों का, सबका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा का, सबका, ठीक है ना। इस प्रोग्राम से लेते हैं इजाज़त, और थोड़ी देर में सुनिएगा 2 बजे से गीतांजलि प्रोग्राम, सुनिए गाना।

0: ये था बॉलीवुड फरमाइशी, फिल्मी गानों का प्रोग्राम कुछ तुमने कहा, जिसके लिए फरमाइशें हमें मिल जाती हैं आपकी। आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज पर दिन 11 बजे तक। और अब यहां से शुरू होने जा रहा है गीतांजलि प्रोग्राम, जिसमें कुछ एल्बम सॉन्ग हम आपको सुनवाएंगे जो गैर फिल्मी हैं। बस एक ब्रेक के बाद।
1: माँ, ये मोटा चश्मा कब उतरेगा?
2: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
3: मुझे तो मोतिया बिंद हो गया है।
4: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतिया बिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी। शुगर से खराब हुए आँखों के पर्दे का इलाज नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनैन आई हॉस्पिटल, निकट वीवार्ड, नियावा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: इस प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं सौम्या राव की आवाज के साथ।

आप भी सोच रहे होंगे कि सितंबर की आज पहली तारीख है और एजे अमरजीत के साथ दोपहरिया बस अंतिम है, ये क्या हो गया? देखिए जिंदगी यह सब कुछ चलता रहता है कि नहीं, है ना? अगर आवाज यहाँ से खामोश होगी तो कहीं ना कहीं से फिर से गूंजेगी आवाज, और ये रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं आरजे अमरजीत का जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है उस पर भी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या की, हम भी सुनेंगे आप भी सुनेंगे, और आपकी तमाम चिट्ठियां ग्रीटिंग्स अभी तक मेरे पास घर में संभाल के रखी हुई हैं, वो भी यादगार के तौर पर हमेशा रहेंगी। जावेद अली की आवाज में आइए सुने अगला ये एल्बम सॉन्ग।

0: जावेद अली के साथ एक आवाज आपने और भी सुनी, क्योंकि कंप्यूटर में उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको। बहरहाल एक प्रोमो आ रहा है, प्रोमो के बाद आखिरी एल्बम सॉन्ग आपको सुनवाएंगे।
1: मेरा वक्त गुजर जाता है।
0: आपके दिल की आवाज आकाशवाणी अयोध्या 101.9 मेगाहर्ट्ज़ दुनिया में अब कहीं भी सुन सकते हैं। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी अयोध्या को
2: तेरा साथ है इतना प्यारा।
0: प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब जहां हैं आप वहां है आपका अपना प्यारा रेडियो चैनल आकाशवाणी अयोध्या 101.9 मेगाहर्ट्ज़।
3: मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: जी हाँ, एक सूक्ति हम बोलेंगे क्योंकि सूक्तियाँ यहाँ बहुत से रखी हुई हैं, मेरा ही कलेक्शन है और सारी सूक्तियाँ मैंने यहाँ पे लिख कर रख दी हैं कि आने वाले समय में वो आप सबको भी मिलती रहें। वो ये सूक्ति है, हृदय में शुद्धता, सुविचार और दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा तथा उनसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने वाला व्यक्ति पूजा पाठ न करने पर भी ईश्वर को प्रिय होता है। सच बात है ना। चलिए सुनवाते हैं आपको आज के प्रोग्राम का ये आखिरी एल्बम सॉन्ग तानिया सिंह की आवाज में। धड़कन एल्बम से ये सॉन्ग है।

जी हाँ, रोवो ना रुलावो, हंसो और हंसावो, है ना बढ़िया लाइन ये। और जब एजे अमरजीत है आपके पास तो फिकर की क्या है बात। बस इसी तरह से सुनते रहें आकाशवाणी अयोध्या एफएम 101.9 पर और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। इसी गाने के साथ छोड़े जा रहे हैं गीतांजलि प्रोग्राम में आपको।

गीतांजलि प्रोग्राम में अभी आप कुछ पॉप एल्बम सॉन्ग सुन रहे थे। ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह है आकाशवाणी का अयोध्या FM। हम सब का हर मन प्यारा आकाशवाणी अयोध्या।

0: नदियां हमारे देश की धरोहर हैं, इन्हें दूषित न करें। स्वच्छ जल के लिए कृपया नदियों को प्रदूषण से बचाएं। खाने पीने की चीजों को हमेशा ढक कर रखें और स्वच्छ पानी पिएं। आकाशवाणी अयोध्या एफएम की स्टूडियो वॉच में दिन के 2:15 होने वाले हैं। बस कुछ ही देर में दोपहर समाचार दिल्ली से आप सुनेंगे, कुछ पल इंतजार कर लीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक

0: में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
2: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा,

0: गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसबी के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50 हजार करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
2: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ एआई समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये एआईआर एफएम गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। एफएम गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के

0: बड़े वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले दो दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बडयुदा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 44 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सवालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सवालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: यह है आकाशवाणी का अयोध्या FM 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर, और आप हमारे कार्यक्रम वेब्स OTT पर भी सुन रहे हैं। दिन के 2:30 हो चुके हैं। अब आइए सुने महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। आज की प्रेजेंटर हैं ऊष्मा वर्मा और प्रस्तुति कार्यक्रम अधिशासी सरस्वती पाठक की।

0: दान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: श्रोतमेनो नमस्कार, आज मैं हूं आपके साथ आपकी सहेली उषमा वर्मा। मैनो बारिश का मौसम है और आज है 1 सितंबर। आज से एक सप्ताह या

कहें कि तब तक आपसे हमारी चर्चा परिचर्चा इस बात पर होती रहेगी जब तक आप अपने खाने को सिर्फ और सिर्फ खाना या सिर्फ पेट भरने का साधन ना समझें। हाँ बहनों, आपने ठीक सुना है कि हमारा खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसलिए होता है कि वो हमारे शरीर को वो सभी पोषक तत्व दे सके जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में वो सब मिल सके जो हमारी सेहत के लिए, हमारी ताकत के लिए बहुत जरूरी है। बहनों, आजकल हर आयु वर्ग के लोग खाने में स्वाद यानी जायके की तलाश कर रहे हैं, लेकिन भाग दौड़ की जिंदगी में जो घर का बना खाना है वो कहीं ना कहीं चलते चलते भाग दौड़ में इग्नोर होता जा रहा है, बिना इस पर ध्यान दिए कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है या नुकसानदेह। एक बात और बहनों, हमारा ये मानना भी गलत होगा कि हम जो घर में बना खा रहे हैं, बाहर का कुछ नहीं खाते, इसलिए हम बहुत ठीक हैं या बहुत अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये कहेंगे कि ये कुछ भी सोचने से पहले ये सोचना जरूरी है कि हम जो खा रहे हैं उसमें हम कितनी मात्रा में या क्या क्या ले रहे हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं, विटामिन वगैरह हैं या नहीं है। हम अपने खाने में अलग अलग तरह के फल सब्जियां, सबूत अनाज और स्वस्थ वसा जो है वो सब ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहनों 1 सितंबर की हम बात कर रहे हैं और 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं, और ऐसे में ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आपको याद दिलाएं कि हम कितना खा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है, बल्कि ये मायने रखता है कि हम क्या खा रहे हैं। आजकल एक चीज हम सब ये भी देख रहे हैं कि बाजार में मल्टीग्रेन, लो फैट, शुगर फ्री, इन सब तरह की लेबल लगी हुई चीजें हमें बहुत आकर्षित करती हैं। हम इसको लेते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम पूरी तरह से सब कुछ ले रहे हैं, पर बहनों ये महंगे सुपर फूड्स जो होते हैं, ये डिटॉक्स प्लान जो होता है वो आम आदमी के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो आम आदमी तक पहुंच ही नहीं पाता। जो हमारे गाँव में जो हमारी बहनें रहती हैं वो इन सबको ना तो खरीद पाती हैं ना इनके बारे में इतना अवेयर ही हो पाती हैं। इसलिए बहनों हमें वो खाना है जो हमारी थाली को बोझिल ना बनाए, हम सोचते ही रह जाएं कि अरे ये नहीं है, अरे ये नहीं है, बल्कि हमारे पास जो चीजें हैं हम ये सोचें कि हमारे पास जो चीजें उपलब्ध हैं उसमें दाल हो, राजमा हो, चना हो, मूंगफली हो, दूध दही हो, पनीर हो, सोयाबीन हो, या हमारे खेतों में, हमारी क्यारियों में जो चीजें हम लगाए रहते हैं, हरी सब्जियां हो, ताजे फल हो, थोड़ा सलाद हो, अंडे, मछलियां जो हम खाते हो, ये सब जिसको प्रिय हो वो सब चीजें खानी चाहिए। थोड़ा कम चीनी, थोड़ा कम नमक बस, और तेल जो है उसका भी प्रयोग हमें जान समझ कर करना है। तो बहनों इन सब चीजों को एक उम्र के बाद हम कहेंगे खास तौर पर अगर थोड़ा थोड़ा हम ध्यान देते रहें तो निश्चित है हम स्वस्थ रहेंगे। बहनों सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा खाएं पर अलग अलग तरह की चीजें खाएं, और ये समझ कर ना खाएं कि नहीं इसको इकट्ठा करूं, इसको इकट्ठा, फिर तो वो बोझिल हो जाएगा और हम उसका प्रयोग हमेशा नहीं कर पाएंगे, उतने जागरूक हम हर दिन नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या का इसे हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं बल्कि हर दिन संतुलित और पौष्टिक चीजें खाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और तब हमारे साथ एंजॉय करें ये गीत।

0: मेनो, अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है और हमारा कार्यक्रम अभी चल ही रहा है, लेकिन मिलते हैं अभी छोटे से अंतराल के बाद।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
6: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
6: और व्हाट्सएप

0: नंबर 830-321 9911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
1: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
3: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
4: किसी भी चीज को सुनते सुनते ही हम करने का प्रयास करते हैं और करते करते ही चीजें हमारे अभ्यास और आदत में शामिल हो जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ उसी पोषक तत्व की जिसकी बातें अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैं कर रही थी। बनो, बहुत लोगों का मानना यह भी है कि जो नॉन वेज खाते हैं उनको बड़ी ताकत मिल जाती है या जो ब्रांडेड फूड खाते हैं उनको बहुत ताकत मिलती है, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि शाकाहारी जो आहार होता है उसकी अपनी एक अलग ताकत होती है। आज हम सुनते हैं इसी पर एक वार्ता, शाकाहारी आहार की शक्ति। वार्ताकार हैं मीना श्रीवास्तव जी।
5: सखियों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी थाली से शुरू होकर हमारे विचारों, हमारी जीवन शैली और हमारे मूल्यों तक जाता है, और वह है शाकाहार। अक्सर हम भोजन को केवल स्वाद और आदत के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा भोजन हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच का प्रतिबिंब होता है। शाकाहार का अर्थ केवल इतना नहीं कि हम मांस, मछली और अंडा नहीं खाते, बल्कि इसका गहरा अर्थ है प्रकृति के साथ संतुलन, जीवों के प्रति करुणा और अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी। यह एक ऐसा जीवन दृष्टिकोण है जो हमें सजग बनाता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और उसका प्रभाव हमारे शरीर, समाज और पर्यावरण पर क्या पड़ रहा है। आज के समय में जब हमारी जीवन शैली तेजी से बदल रही है और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं, शाकाहार एक संतुलित और स्वस्थ विकल्प के रूप में उभर कर सामने आता है। हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं मोटापा जैसी समस्याएं आज आम होती जा रही हैं। इनका एक कारण असंतुलित और अत्यधिक तैलीय भोजन है। इसके विपरीत शाकाहारी भोजन में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। जब हम ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और दालों का सेवन करते हैं तो हमारा शरीर हल्का, ऊर्जावान और संतुलित महसूस करता है। धीरे धीरे ये आदत न केवल बीमारियों से बचाव करती है बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। शाकाहार का एक महत्वपूर्ण पहलू है संवेदनशीलता और नैतिकता। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां मानवता, करुणा और सह अस्तित्व की बातें की जाती हैं, लेकिन क्या हम अपने भोजन के माध्यम से इन मूल्यों को अपनाते हैं? जब हम शाकाहार चुनते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी राष्ट्र की महानता इस बात से आंकी जा सकती है कि वह अपने बेजुबान जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यह कथन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी जीवन शैली में करुणा और दया का स्थान है। शाकाहार अपनाना केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि उन मूक प्राणियों के लिए भी एक संवेदनशील निर्णय है जो अपने जीवन के लिए हम पर निर्भर नहीं है, फिर भी हमारी पसंद का शिकार बनते हैं।

0: यह हमें एक अधिक मानवीय और जागरूक इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करता है। यदि हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो शाकाहार का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही है। मांस उत्पादन के लिए भारी मात्रा में पानी, भूमि और चारे की आवश्यकता होती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इसके अलावा पशुपालन से गैसें पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। इसके विपरीत शाकाहारी भोजन अपेक्षाकृत कम संसाधनों में तैयार होता है और पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल होता है। जब हम शाकाहार अपनाते हैं तो हम न केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं बल्कि पृथ्वी के संरक्षण में भी अपना योगदान देते हैं। यह एक ऐसा छोटा कदम है जिसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। भारतीय संस्कृति में शाकाहार का विशेष महत्व रहा है। यहाँ भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि एक पवित्र कर्म माना जाता है। हमारे धर्म और दर्शन हमेशा से सादगी, संतुलन और अहिंसा पर आधारित रहे हैं। जैनिज्म में तो शाकाहार को अत्यंत कठोरता से अपनाया जाता है, जहां जीवों को हानि पहुंचाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। हिंदुत्व में भी सात्विक आहार को शुद्ध और श्रेष्ठ माना गया है, जो मन और शरीर दोनों को शांत एवं संतुलित रखता है। हमारे व्रतों और परंपराओं में भी शाकाहार का विशेष स्थान है, जो यह दर्शाता है कि यह केवल आहार नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और जीवन मूल्यों का हिस्सा है। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या शाकाहार से हमें सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकते हैं? यदि हम संतुलित और विविध शाकाहारी आहार लेते हैं तो हमें सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकते हैं। दालें, राजमा, चना, सोयाबीन जैसे खाद्य पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवे और दूध से हमें विटामिन, खनिज एवं कैल्शियम प्राप्त होता है। इसलिए सही जानकारी और संतुलित भोजन के साथ शाकाहार पूरी तरह से स्वास्थ्यवर्धक होता है। आजकल के युवाओं के लिए यह विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आधुनिक जीवन शैली में फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड का चलन बढ़ गया है, जो तुरंत स्वाद तो देता है लेकिन लंबे समय में हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में यदि युवा वर्ग शाकाहार अपनाता है और घर में बने स्वादिष्ट भोजन को प्राथमिकता देता है तो वह अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी भी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ एवं संतुलित भविष्य का निर्माण कर सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि शाकाहार कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक जागरूक और सकारात्मक चुनाव है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यह हमें प्रकृति के करीब लाता है, जीवों के प्रति करुणा सिखाता है और हमें स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो आइए हम सभी मिलकर इस दिशा में एक कदम बढ़ाएं और अधिक से अधिक शाकाहारी भोजन का प्रयोग करें।
1: श्रोता मैनो, शाकाहारी आहार की जो ताकत होती है, अगर आपने ध्यान से ये वार्ता सुनी होगी तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकती हैं कि जो हमारा आहार है वो संतुलित तो होता ही है, साथ ही साथ वो सकारात्मक ऊर्जा भी हमको प्रदान करता है। और वार्ताकार थी मीना श्रीवास्तव जी। पेनो, मौसम है बरसात का और यही वो समय है जब हमारे किचन गार्डन या हमारी बालकनी या हमारे आसपास लगे जो पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल भी बेहद ज़रूरी है। गर्मी में हम बहुत सारी बातें करते हैं कि उनको पानी देना है और उनकी देखभाल करनी है, लेकिन ये मौसम भी ऐसा होता है पेनो कि अगर ज़रा सा भी आपने लापरवाही की तो हमारे जो घर के छोटे छोटे पौधे हैं वो निश्चित तौर पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो अधिक पानी को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं और गल जाते हैं। तो ऐसे समय में इसलिए ज़रूरी है कि हम उन पौधों को छांव में रखें जो अधिक पानी नहीं

अधिक पानी को अपने आप में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं या बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उन पौधों, और यही वो मौसम है बहनों कि अगर हमारे आसपास जो बड़े पेड़ हैं ना, उन पेड़ों की कटाई छटाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में जब हम उनकी कटाई करते हैं तो वो जहां से हम काटते हैं ना, उसके बाद से वो पेड़ पौधे जो है वो थोड़ा सूख जाते हैं काफी दूर तक, तो नई पत्तियां नई कोपले निकलने में बहुत समय लग सकता है। लेकिन ये समय ऐसा है कि जब उनकी तरलता बनी रहती है और उनकी नमी बनी रहती है तो बहुत जल्दी वो पौधे जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने पौधों को गलन से, गलने से बचाएं, और दूसरी चीज कि उनको इस समय कटाई छटाई भी करनी हो तो उसको भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक चीज और कि मौसम बरसात का है तो इस समय बहनों फंगस बहुत लग जाते हैं, क्योंकि नमी उसमें लगातार बनी रहती है। तो ऐसे में जब भी धूप निकले तो आप उसकी थोड़ी सी गुड़ाई करें, और जैसे ही उसका पानी आपको लगे कि हल्का सा पानी मर गया है, थोड़ा सा सूखा ऊपर से महसूस होने लगे, उस फंगस को हटाने के लिए आप सिर्फ इतना करें कि एक गिलास पानी में, ये जैसा आपका पौधा हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके हिसाब से उसमें जो है हल्दी मिला लें, और उस हल्दी के पानी को जो है थोड़ा थोड़ा डाल दें किनारे से, वो फंगस से आपके पौधे को बचाएगी। इसके साथ साथ जो नीम का तेल आता है बहनों, इसको भी हम पानी में मिला करके और पौधों को अपने फंगस से बचा सकते हैं, अगर उसका भी छिड़काव हम कर दें तो। साथ ही साथ बहनों, ये नीम का जो, अगर आपकी पत्तियां भी कहीं उनमें भी ऐसा होता है कि नमी ले लेती हैं, उस पर भी हल्के हल्के सफेद सफेद फफूंद जैसा आपको दिखाई पड़े, तो आप पानी में नीम का तेल जो है डाल करके और उसका स्प्रे करें, यह भी बहुत अच्छा काम करता है। श्रोता बहनों, जब हम बात पौधों की करते हैं तो और उनके कटिंग की करते हैं, तो कटिंग में एक चीज और ध्यान रखना है बहनों कि हमेशा आप ऐसा कोई भी पौधा ना काटें कि जिसकी सारी पत्तियां कट जाएं, क्योंकि पत्तियां ही हम सभी लोग जानते हैं कि वो अपना भोजन तैयार करती हैं। लेकिन अगर वो पत्तियां बिल्कुल से कट जाएंगी तो उसके बाद वो पौधे जो है वो भोजन नहीं बना पाएंगे और उनको पनपने में बहुत बहुत बहुत समय लग जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, और बरसात के मौसम में जैसे हम पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं ना, वैसे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा सौंदर्य या हमारी त्वचा कैसे अपने सौंदर्य को, अपने निखार को बरकरार रखे। बहनों, आज हम कुछ टिप्स बताएंगे आपको जो चावल के आटे से, आपने देखा होगा ना बहुत सारे व्यंजन आप बनाती हैं अपने किचन में, फरा बनाती हैं, पूड़ी बनाती हैं, और किसी भी रेसिपी को जब आपको कुरकुरा करना होता है तब भी आप चावल के आटे उसमें मिलाती हैं। लेकिन आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि वो चीज़ें हमारे खाने में तो प्रयोग होती ही हैं, साथ साथ हमारी सुंदरता को, हमारी त्वचा को के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हम जब चावल के आटे की बात करते हैं बहनों, तो ये हमारे चेहरे की जो टैनिंग होती है उसको भी मिटाती है, रंगत तो बढ़ाती है, और ख़ास करके जो हमारी कुछ ज़्यादा उम्र की बहनें हैं ना, उनकी जो स्किन है उनकी झुर्रियों को कम करने में बहुत मदद करती हैं। अगर आपके चेहरे पर टैनिंग है बहनों, तो आप ये सोचिए, एक चुटकी हल्दी लीजिए, एक चम्मच दही लीजिए और एक बड़ा चम्मच चावल का आटा लीजिए। देखिए, हर चीज़ का अलग अलग है, तो अगर आपको अपनी टैनिंग मिटानी है तो इसमें हल्दी ज़रूरी है, दही जरूरी है और चावल का आटा जरूरी है। बस इसका एक पेस्ट बनाएं और इसको अपने चेहरे पर लगा लें। इसको बहुत स्क्रब करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा जो है दरदरा होता है, तो ये ज्यादा आपको इसको स्क्रब नहीं करना है। आप लगा लीजिए और थोड़ी देर बाद इसको धुल दीजिए। अगर आपको ग्लो लाना है तो एक चम्मच चावल का आटा लें, एलोवेरा जेल लें और गुलाब जल लें, और तब इसको अपने चेहरे पर पेस्ट बना करके और इसको लगाएं, फिर देखें ये आपके चेहरे का निखार बढ़ा देगा। और अगर आपके चेहरे का निखार बढ़ता है तो भाई आपके चेहरे पर कोई भी ये गीत गा सकता है।

श्रोता मैनो, अगर आपको हमारे कार्यक्रम में कुछ भी अच्छा लगता है या आपको कुछ बुरा भी लगता है तो आप हमें इस नंबर पर अपना सुझाव, अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। आप कैपिटल लेटर में लिखें AKB और बिना स्पेस दिए लिखें 8303-21-9911 8303-21-9911। और बेनो, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। फिर इसी कार्यक्रम में इसी समय आपसे मुलाकात जरूर होगी। इस वादे के साथ ऊष्मा वर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी के अयोध्या एफएम से अभी आपने महिलाओं का कार्यक्रम सुना नारी जगत प्रेजेंटर ऊष्मा वर्मा के साथ, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं कार्यक्रम अधिशासी सरस्वती पाठक। कुछ ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस

0: बात कीजिए आप अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आए आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
0: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर
1: ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
1: यह है हम सबका हर मन प्यारा आकाशवाणी अयोध्या FM 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। दोपहर बाद के 3 बज चुके हैं। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं NCERT और CIET द्वारा स्कूली बच्चों का कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज एनसीईआरटी के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूं। नमस्कार
0: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने। लिखा है,
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
0: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गाँव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं,
2: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है। सादर धन्यवाद।
0: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
2: जी जी जी श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकानाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं, जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
0: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
2: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकानाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
0: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें कई लोग मारे गए।
2: जी,
0: वहां की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
2: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
0: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
2: जी,
0: वह प्रजामंडल का सदस्य था। उसे प्रजामंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
2: जी,
0: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
2: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
0: हे लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
2: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
0: तुमने मेरे गांव

0: वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
1: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया, तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
0: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
1: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीनें उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए। लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली, उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।

0: बैठ गया। खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
1: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीने उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राव शहीद हो गए, लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली। उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
0: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
1: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
0: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओ, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माई नेम।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb.
4: Dear tree, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
4: Dear cow, do you know my name?
6: No.
4: I don't know. You may ask the grass I eat.
2: The fly went to the grass and asked,
4: Dear grass, do you know my name?
3: I don't know. You may ask the leaves falling on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass.
3: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.

0: what do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माई नेम।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखता, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की परतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
5: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
6: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
5: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
6: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
7: Stephen, happy birthday to you!
8: Happy birthday to you, Stephen!
7: Thank you. How are you?
9: Happy birthday, Stephen! Thank you, Thomas.
7: Congratulations!
9: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
7: Oh, fine!
9: Thanks for coming in. Please come in.
8: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
7: Come!
8: Yeah. Come!
7: Come!

जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरे रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय

0: से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
1: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। पचासी में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
4: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
3: ग्रेट। धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around.

0: round independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
2: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
2: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
3: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
2: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
4: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
5: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
6: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन

0: हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा स्कूली बच्चों का ये उमंग कार्यक्रम आपने आकाशवाणी अयोध्या FM से सुना। विविध भारती से कनेक्ट करने से पहले आपको शाम के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बता दें। शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम होगा। लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:30 से। शाम सुहानी में बॉलीवुड के फिल्मी गाने होंगे 6:10 से। गूंजे स्वरगांव के कार्यक्रम में भी आप लोकगीत सुनेंगे शाम 6:30 से। प्रायोजित किसानवाणी कार्यक्रम हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे 6:50 से। 6:45 पर आपको कार्यक्रम रूपरेखा दी जाएगी आज और कल के कार्यक्रमों की। गीत गुंजन कार्यक्रम होगा 8:15 से। विविध भारती से कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:30 से लेकर 8:15 तक और रात 10:30 से लेकर 11 बजे तक। महफिल गजल प्रोग्राम पेश किया जाएगा 9:15 से। हेलो अयोध्या प्रोग्राम आज होगा आधे घंटे के लिए, क्योंकि मंगलवार है और मंगलवार के दिन राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत खेल दर्पण कार्यक्रम आप सुनते हैं लखनऊ केंद्र से। तो ये 10 बजे कार्यक्रम होगा खेल दर्पण और 11 बजे समाचार दिल्ली से होंगे और 11:10 पर आज की सभा संपन्न हो जाएगी। आप हैं आकाशवाणी अयोध्या FM के साथ 101.9 और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर, और इसके साथ ही साथ आप कार्यक्रम सुन रहे हैं वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी। 3:30 हो चुके हैं, अब से लेकर 5 बजे तक हम आपको सुनवा रहे हैं मुंबई से प्रसारित विविध भारती केंद्रीकृत कार्यक्रम।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी कैसेट लेने।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
0: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई आरती, अब हम लोग किस विषय की ओर आगे बढ़ने वाले हैं?
3: अब हम आगे बढ़ने वाले हैं मुफ्त की ओर।
2: अच्छा, सबसे प्यारा विषय लगता है तुम्हारा।
3: हाँ, मुफ्त की ओर। तो कई बार होता है ना कि हम लोग कभी कभी लालच में भी जाते हैं। अच्छा, सेल लगी है, अच्छा मुफ्त मिल रहा है सामान, चलो चलो ले लेते हैं, कुछ चीजें अच्छी मिल जाएंगी। तो ये जो लालच होता है ना हमारा, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
2: ओवर बजट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और हम लेते चले जाते हैं सामान, ये नहीं सोचते कि हमारे घर में स्टोर जमा हो जाएगा, अलमारी भर जाएगी, है ना।
3: इससे बस घर भी तो घर में भी सब सामान इतना ज्यादा जमा हो जाता है ना, जिसको इसका प्रयोग नहीं, हमारे पास जब उसका हमें उपयोग नहीं करना है तो हम जबरदस्ती में उसको भरते ही तो हैं। और दूसरी चीज है, कभी कभी खाने में जब हम ये काम करते हैं ना कि इसके साथ में ये मुफ्त है या ये इतना खा सकते हैं, ये थाली मुफ्त है या बड़ी थाली लेंगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे।
2: और कई बार क्या होता है कि हम उसके चक्कर में ज्यादा ऑर्डर दे देते हैं, फिर अंत में होता है कि भाई इसको पैक कर दीजिए, हम घर ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें भी होती है। तो मुफ्त का लालच जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही होता है ना कि मुफ्त मिले तो बुरा क्या है, यही सोचकर कई बार हम ऐसी चीजों के पीछे दौड़ने लग जाते हैं जिनकी वास्तव में हमें आवश्यकता भी नहीं होती है। और मुफ्त शब्द सुनते ही मन में बड़ा उत्साह से जाग उठता है और हम बिना सोचे समझे उस वस्तु या अवसर को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही मुफ्त का लालच कई बार नुकसान का कारण बन जाता है।
3: बिल्कुल, बाजार में जो आकर्षक ऑफर रहते हैं, फ्री गिफ्ट्स रहते हैं, एक के साथ एक मुफ्त जैसी योजनाएं रहती हैं, वो बहुत ज्यादा लुभावनी लगती हैं और कई बार हम जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं, और क्योंकि कुछ मुफ्त मिल रहा होता है साथ में हमें, और बाद में पता चलता है कि जिस चीज को पाने के लिए इतना खर्च किया उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी। और आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में भी मुफ्त के लालच से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि इस समय नकली इनाम, आकर्षक ऑफर और संदिग्ध संदेश लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी मुफ्त चीज के पीछे भागने से पहले उसकी सच्चाई और अपनी आवश्यकता को समझना चाहिए।
2: बिल्कुल। और कई बार हम कहीं दुकान पर लेने जाते हैं आरती, तो वहां पर एक दिखाएंगे कि आप स्क्रैच कार्ड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए, स्क्रैच कर दीजिए तो आपको ये चीजें मिलेंगी। तो भाई वो चीज कभी ना करें, लालच में ना पड़े। और कहा भी गया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती।
3: बिल्कुल।
2: और हर मुफ्त मिलने वाली वस्तु वास्तव में लाभदायक नहीं होती। समझदारी इसी में है कि हम लालच के बजाय विवेक से निर्णय लें, क्योंकि कई बार मुफ्त का लालच हमें इतना महंगा पड़ जाता है आरती कि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। और जो चीज बिना सोचे समझे मुफ्त में मिल रही हो उसके पीछे छिपी कीमत को पहचानना भी बहुत जरूरी है, है ना। और हमारे साथी क्या लिखते हैं?
3: हाँ, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुफ्त का लालच इंसानी फितरत का एक ऐसा हिस्सा है जो अक्सर हमें हल्की फुल्की मुश्किलों में डाल देता है, कभी कभी भारी मुश्किल में भी डाल देता है। विज्ञापन दाता और दुकानदार हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और मुफ्त की हर चीज की एक छिपी हुई कीमत होती है, चाहे वो आपका कीमती समय हो, फोन का डेटा हो या घर में बढ़ने वाला कबाड़। इसलिए अगली बार जब भी फ्री का बोर्ड देखें तो खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? बहुत सही बात कही।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और मुफ्त का लालच इस विषय की सबसे बड़ी खूबी इसका आम जीवन से जुड़ा होना है। हमारे साथी लिखते हैं कि लोग 100 रुपए की मुफ्त चीज पाने के लिए 500 का ऐसा सामान खरीद लाते हैं जिसकी उन्हें कभी जरूरत ही नहीं होती। घर की अलमारियों में बंद पड़ी बेकार वस्तुएं इस मुफ्त के लालच का जीता जागता सबूत है। और ये हमारे खोखले प्रदर्शन और दिखावे की संस्कृति पर करारा प्रहार भी है। मनोवैज्ञानिक पहलू लेखन में इस बात का गहरा अर्थ मिलता है कि मुफ्त केवल एक ऑफर नहीं बल्कि एक मानसिक जाल है, क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि मुफ्त का लालच देकर किसी भी फालतू चीज को बेचा जा सकता है। ग्राहक को लगता है कि उसने पैसे बचा लिए हैं, जबकि असल में वो अपनी जेब को वो ढीला कर चुका होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि घर में बहुत सारे मान लो तवे रखे हैं, लेकिन फिर भी हम गए नहीं, हमें तो कुछ दूसरी ब्रांड का चाहिए, वो ले आए, तो बेचारे दो तवे जो ऑलरेडी आपके उसमें रैक में रखे थे वो अफसोस मना रहे हैं कि कब मुझे चढ़ाओगे, कब मुझे गर्म करोगे।
3: उनका तो मौका ही नहीं पड़ता।
2: इसलिए कहा जाता है कि घर में जितनी चीजें हैं अगर एक है तो

0: उसकी बड़ी कद्र होगी. बहुत ज्यादा चीजें होती तो किसी ना किसी की तो बेकदरी हो ही जाती है.
1: बिल्कुल,
0: है ना.
1: और हमारे एक साथी हैं जो कहते हैं कि मुफ्त का लालच इंसानी फितरत का एक ऐसा कमजोर पहलू है जिस पर दुनिया का पूरा बाजार टिका हुआ है. ये विषय आज के उपभोक्तावादी समाज का कड़वा सच दिखाता है जिसे बेहद हल्के फुल्के और हास्यास्पद शैली में आप कह सकते हैं कि जैसे कि एक के साथ एक मुफ्त या मुफ्त डिलीवरी जैसे शब्द इंसानी दिमाग पर किसी जादू की तरह काम करते हैं. और इसीलिए कहा गया कि मुफ्त का शब्द सुनते ही इंसान की तार्किक बुद्धि काम करना बंद कर देती है क्योंकि जहां हमने सुना मुफ्त है बस फिर सोचते नहीं है उसके आगे.
0: हम जो महिलाएं ना माफ कीजिएगा हमने अपने को भी शामिल किया, हम लोग मुफ्त के चक्कर में चले जाते हैं कि भाई वो साड़ी वहां पे एक के साथ एक मिल रही है ले लेते हैं या कुछ भी कान की चीज हुई झुमका शुमका चूड़ी कंगन ऐसी चीजें पे हम लोग बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं यानी चमक दमक में बस
1: खो जाते हैं.
0: फिलहाल तो हम खोते नहीं है, हम सुनते हैं
1: गीत.

0: तो भाई आरती देखो, मुंह में पानी आना, अब सोचो अगर हमने कोई नाम ले लिए तो तुम्हारे मुंह में क्या पानी आएगा क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो तुरंत आ जाते हैं जहाँ समोसे की बात चलती है।
0: समोसा तो छोड़ो, इमली, कैथा, बेर, कमरक,
1: बस करो।

0: पानी के बताशे तो तुम्हारे तो पानी आ गया, मुझे तो सामने दिख रहा है, लेकिन हमारे जो साथी हैं सखियां हैं तो वो बताएं कि ये सब चीज जो मैंने नाम लिए है सबने आसपास देखी भी है तो खाई भी है, है ना, अपने स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे, तो किसके किसके मुंह में पानी आया ये बताएं, है ना। और हमारे साथी लिखते मुंह में पानी आना हिंदी साहित्य में मुहावरों का एक विशेष स्थान है, ये हमारी भाषा को सुंदर सजीव और असरदार बनाते हैं। ऐसा ही एक बेहद लोकप्रिय और मजेदार मुहावरा है मुंह में पानी आना, और इस मुहावरे का सीधा संबंध हमारी जीभ स्वाद और मन की इच्छा से है। और किसी भी पार्टी समारोह में शादी ब्याह में जाते हैं या फिर वो जमाना याद आता है पत्तल पे जो खाना परोसा जाता था, पंगत में हम बैठते थे तो वहां पर सब चीजें देख के तो मुंह में पानी आता था, रायता आ गया या रसगुल्ला आ गया तो फिर पूछो मत, है ना। तो चलो आगे हमारे साथी क्या लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ है किसी स्वादिष्ट चीज को देखकर या उसके बारे में सोचकर मन ललचा जाना। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम अपनी मनपसंद खाने की चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग को संदेश मिलता है और मुंह में लार बनने लगती है। इसी स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया को भाषा में एक खूबसूरत मुहावरे का रूप दिया गया है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस मुहावरे का प्रयोग अक्सर करते हैं।
0: बिल्कुल, देखते
1: हैं आपके समाज चीज को देखिए, इतना अच्छा आपने रेसिपी बनाई है कि एकदम मुंह में पानी आ गया, नहीं
0: या बगल वाला कुछ बना रहा हो उसकी महक दूसरे के उसमें घुस जाए घर में, उसकी नाक में वो सुगंध लेके भाभी जी आपने बहुत अच्छा बनाया था, मुझे तो लग रहा था कि बस खाने को मिल जाए, मेरे तो मुंह में पानी आ गया था, ऐसी बातें भी होती है। और हमारे साथी लिखते मुंह में पानी आना मुहावरा हमारी सहज मानवीय प्रवृत्तियों को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो अच्छी चीजों को देखकर उसका मन मचल ही जाता है, और ये मुहावरा हमारी आम बोलचाल को सरल रोचक और जीवंत भी बनाता है।
1: बिल्कुल। और एक और साथी है जो लिखते हैं कि ये हिंदी भाषा का बहुत ही अच्छा मुहावरा है और इसका संबंध हमारे खाने पीने की इच्छाओं से है, और साथ ही इसके अभी इन्होंने पूरी लिखा हुआ चीजें लिखी हुई है कि किसी भी चीज के बारे में हम देखते हैं या सोचते हैं जैसे कि गोलगप्पे हो गए, मिठाई या अचार, इनको देख के हमारा जो दिमाग है वो प्रतिक्रिया करता है और तुरंत हमारे मुंह में पानी आ जाता है।
0: भाई देखो ये चाट पकौड़े ये सब जब जाते हैं ना मेले ठेले में जिसे कहते हैं बाजार में, तो ये सब चीजें देख के तो बिल्कुल पानी आना स्वाभाविक ही होता है। और मुंह में पानी आना ये मुहावरा लालच या इच्छा जैसी अमूर्त भावनाओं को एक शारीरिक क्रिया के माध्यम से बेहद सरलता से व्यक्त करता है। इसका प्रयोग केवल भोजन तक सीमित नहीं है कि किसी भी आकर्षक वस्तु धन या अवसर को देकर पैदा होने वाले लालच के लिए इसका खुलकर प्रयोग होता है। सरल शब्दों के कारण ये आम बोलचाल से लेकर साहित्यिक रचनाओं तक में समान रूप से बिल्कुल फिट बैठता है, और हम सोचते हैं यहाँ पर हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे घर में बस हमारे बड़े भाई हैं जिनके मुंह में गोल गप्पे देखकर पानी आ जाता है. गोल गप्पे देखकर फिर वो नहीं रखेंगे, मतलब नहीं रखेंगे, अब 80 साल के हो गए हैं फिर भी नहीं मानते, मतलब रुकते नहीं हाँ. उनको ऐसा लगता है ना.
1: एक और साथी जो कहते हैं कि मुंह में पानी आना इस मुहावरे का अर्थ है जीभ ललचाना या किसी चीज को खाने की तीव्र इच्छा होना. अक्सर हम सबके मुंह में कुछ न कुछ देखकर तो पानी आ ही जाता है. और मेरे लिए वो क्या है वो मैं बताती हूँ. मेरे लिए वो है घर का चावल दाल और चोखा, जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाता है. बहुत सिंपल खाना है पर मुझे बहुत पसंद है. कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग होता है जब हम अपने किसी मनपसंद खाने की चीज को देखते हैं और हमारे मुंह में पानी आ जाता है. वाक्य प्रयोग मतलब अगर जब भी हम बारिश का मौसम हो तो क्या होता है चाय और पकौड़े की एकदम से लगता है ना याद आ जाती है. तो पकौड़ों की जब याद आती है या खुशबू आ रही होते हैं हमारे एकदम तो एकदम मुंह में पानी आ जाता है ना.
0: हाँ बिल्कुल. और एक साथी लिखते हैं कि भाई मुझे तो खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है पर मिठाई देखकर मुंह में पानी जरूर आ जाता है. अच्छा कह भी रहे हैं खाने पीने में इंटरेस्ट है लेकिन मिठाई देख के हो जाता है पानी. ये तो भाई आपने कमाल की बात करी. और इसी तरह लिखते हैं कि बचपन में मैं कच्ची इमली और कच्ची बेरी जब भी देखता था मेरे मुंह में पानी आ जाता था, खूब चटकारे कर खाता था. मैं अभी सखी सहेली प्रोग्राम में ये कमेंट लिख रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया. और कच्ची इमली और कच्ची कैरी खाना कम हो गया, नहीं तो ज्यादा खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं. क्या बात है.
1: और एक हमारे और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरे पापा जब भी अपने हाथों से घेवर बनाते थे तो मेरे मुंह में पानी आ जाता था.
0: तो चलो भाई इसी के साथ साथ हम लोग एक गीत की ओर बढ़ चलते हैं.

0: तो आरती देखो बातें करते करते प्रोग्राम का समय कैसे बीत चला पता ही नहीं चला, तो लेते हैं सबसे विदा सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने अभिनेता जमील खान। इनकी वेब सीरीज गुल्लक तो आपने देखी होगी, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। आइए सुनते हैं अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे कलाकार को जिन्होंने रंगमंच की सादगी से अपना सफर शुरू किया, सिनेमा और स्क्रीन पर अपने किरदारों से जाने गए और एक बहुत ही खूबसूरत शो

0: गुल्लक के जरिए लाखों दिलों का हिस्सा बने हैं। हम बात कर रहे हैं गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान जी की। जमील खान जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, मुझे आमंत्रित करने का। ये मेरे लिए बाइसे फख्र चीज है कि मैं विविध भारती के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ और दिल खोल के बातें करूँगा।
0: बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, दिल खोल के बातें कीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए। तो शुरुआत हम चाहेंगे, जैसे हम विविध भारती के परिसर में आए, बहुत सारी चीजें आपने देखी, कुछ रेडियो
1: मेरी यादें हैं उसकी बात है। तो देखिए, मैं बोर्डिंग स्कूल निकल गया था तीसरी क्लास से ही,
0: जी
1: तो उतना ज्यादा रेडियो से नाता नहीं रहा, लेकिन जब मैं छुट्टियों में आता था तो मुझे याद है हमारे घर में, मैं सबसे छोटा हूँ भाइयों में, लेकिन जो म्यूजिक बजता था वो रेडियो पर बजता था आमतौर पे, या कैसेट प्लेयर्स होते थे उस जमाने में, तो वो भाई बहन वो चलाते थे। और रेडियो मुझे याद आता है कि अम्मी हमारी जो है ना वो गुनगुनाती थी हल्के हल्के,
0: कुछ भी काम करते हुए वो यादें हमेशा बरकरार रहती
1: है। तो वो एक बड़ी मीठी याद है कि अम्मी काम कर रही हैं और कुछ गुनगुना रही हैं, पीछे कहीं रेडियो बज रहा है और साथ साथ वो भी गुनगुना रही हैं। तो वो अम्मी से बहुत ज्यादा रिश्ता जुड़ा है रेडियो और गानों का, तो वो मेरी बहुत मीठी याद है बचपन की। और अब जो है वो गाड़ी में खास तौर से मैं रेडियो बहुत सुनता हूँ, और उसके अलावा घर पे कभी कदार चलता है। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जिस पर आप गाने सुनते हैं
0: जी।
1: लेकिन जो एक
0: सफर का साथी,
1: हाँ सफर का साथी जो है, और एक क्लासिकल जो गाने जो हैं जिनसे कि बहुत गहरा मरासिम है, वो विविध भारती जैसे चैनलों पर मिलता है। और पुराने गाने हों चाहे नए गाने हों, खासतौर से पुराने गाने जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं, वो ऐसे चैनलों पर ही सुनने को मिलता है, और मैं सदा शुक्रगुजार रहूंगा।
0: नॉस्टैल्जिया की बात की तो आपके बचपन से शुरुआत करते हैं, आपने कहा ही बहुत कम उम्र में आप हॉस्टल चले गए थे, घर का परिवेश कैसा था? और स्कूल के दौरान या उस वक्त हॉस्टल की यादें तो खैर खूबसूरत रहती है, हमेशा याद रहती है, बट एक्टिंग का क्या तभी से आपने सोच लिया था अभिनय में जाना है, या तब तक किस तरह से आपका झुकाव इस तरफ हुआ, या घर से कैसा योगदान मिला?
1: मेरे पूरे खानदान में किसी का किसी भी आर्ट फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं रहा।
0: अच्छा,
1: दूर दूर तक बिजनेस व्यवसाय जो है वो रहा है। हालांकि मेरे नाना और दादा दोनों इंडियन पुलिस सर्विस में रहे हैं, और अगर सर्विस क्लास जो रहे हैं वो पुलिस सर्विस से ताल्लुक रहा है। मेरे दादा का इंतकाल हो गया काफी जल्दी, वो जब स्कूल में थे तो उन्होंने पढ़ाई भी कर रहे थे और नौकरी शुरू कर दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने ये कालीनों का बिजनेस शुरू किया, पहले ट्रेडिंग से शुरू की
0: जी,
1: और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करने लगे। और एक्सपोर्ट करते करते ऊपर वाले का बड़ा करम रहा कि भदोही के टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स में उनका शुमार होने लगा।
0: क्या बात है।
1: अब मैं सुनता हूँ, ये सब मेरे बचपन की बात है, जो ये किस्से कहानियां फिर बाद में सुनता हूँ कि क्या जलवे थे मेरे फादर के
0: जी।
1: कि मुझे एक मेरे फादर भी 2009 में गुजरे, लेकिन उनकी मैयत में कब्रिस्तान हमारा अपना है, तो घर से कब्रिस्तान तक जो मैयत है ऐसे ही कांधे कांधे ही गई, चल नहीं पाई।
0: ये वो इज्जत है जो कमाई जाती है, वो प्यार है जो कमाया जाता है।
1: तो वहां से शुरुआत स्कूल से हुई मेरी, ड्रामे वगैरह करता था स्कूल में, और इस तरफ जाने का कोई इरादा ऐसा सच नहीं था, प्रोफेशन बनाने का इरादा तो बिल्कुल ही नहीं था। ये था कि भाई शौकिया तौर पे कभी थिएटर वेटर कर लिया करेंगे, और ऐसे ही मेरे घर वाले भी समझते थे कि भाई चलो शौक है, कर रहा है, अच्छी बात है, किसी ने कभी रोका टोका नहीं, खासतौर से मेरे घर वालों ने तो कभी कोई तंज भी नहीं कसा
0: जी।
1: तो वहां से शुरुआत हुई, और वहां से करते करते कॉलेज में आए, कॉलेज में भी किया, और मुंबई यूनिवर्सिटी में जब आया तो यहां भी किया। तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि इस लाइन में आने का बिल्कुल इरादा नहीं था। वो जब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो जेईई का होता है, उसमें जब नहीं हुआ मेरा, तब मैंने पलटी मारी। मैंने कहा अब हो गई पढ़ाई साइंसेस वगैरह की, अब जो मजा आता है जिसमें वो करते हैं, तब इस तरफ झुकाव हुआ। और इसी मकसद से ही मैं बॉम्बे आया, बीए कंप्लीट करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया, शेरवुड कॉलेज नैनीताल से मैंने स्कूलिंग की 3 से 12 तक
0: जी,
1: और फिर यह एएमयू से ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया मैंने
0: जी।
1: तो बॉम्बे आने का मकसद थिएटर करना था,
0: थिएटर था। और थिएटर जैसे कहते हैं ना कि जिस

0: इसको शिद्दत से चाहो वो जरूर मिलती है। तो मुझे लगता है आपने जैसे जिक्र किया कि आप नसीरुद्दीन शाह जो है उनके बारे में पढ़ते थे, उनसे कभी मिलने की तमन्ना थी, और यहाँ पर शायद वही ख्वाब खींच कर लेकर आया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उनका साथ मिला मुझे, और शुरुआती दौर में ही मिल गया मुझे, वरना उन तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल काम होता
0: जी।
1: तो मैंने भी शुरुआत उनके साथ वहीं से की कि छोटे मोटे रोल क्राउड व्राउड में ऐसे वैसे करते करते फिर उसके बाद बड़े रोल मिलना शुरू हुए
0: जी।
1: और मेरा सबसे अहम काम जो उनके साथ रहा है वो दो प्रोडक्शन जो मुझे खास तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं वो है मंटो इस्मत हाजिर हैं, और उसके बाद एक था कथा कोलाज।
0: कथा कोलाज के बारे में काफी सुना है
1: जी।

0: एक था कथा कोलाज।
1: कथा कोलाज के बारे में काफी सुना है
0: जी। तो नसीर भाई तो एक लिहाज से मेरे उस्ताद रहे हैं और काफी कुछ सीखा है उनसे और अभी भी सीख रहे हैं। ज्यादा उसके अंदर न जाते हुए मैं कहूँगा कि इंसान के तौर पे और नजरिए के तौर पे उनके साथ अभी थिएटर तो नहीं करता मैं, 2009 के बाद छोड़ दिया था मैंने, लेकिन काफी कुछ मुतासर करने वाली शख्सियत है वो।
1: बिल्कुल। यहाँ पर हम अपने सुनने वालों को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं, तो आप बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवाएं।
0: अगर बहुत पुराने दौर में जाएं तो मेरे ख्याल में मुगले आजम का वो गीत प्यार किया तो डरना
1: क्या, प्यार किया तो डरना क्या, आइकॉनिक गीत
0: जी।
1: बिल्कुल सुनवाते हैं वो गीत।

0: अंग्रेजी फिल्में या जो फॉरेन लैंग्वेज फिल्में हों या अदर लैंग्वेजेस टू हिंदी
1: जी।
0: और मेरी पकड़ हिंदी उर्दू अंग्रेजी तीनों पर खासी पकड़ है, तो वो आसानी मुझे हो गई डबिंग करने में और डबिंग के साथ साथ एड्स में भी वॉइस देने की
1: जी।
0: वॉइस ओवर्स जो होते हैं, तो वो शुरू किया मैंने कमाई के नजरिए से और वो यही आता था तो मैंने कहा कि इसी में ही जुड़े हुई चीजें जो हैं उसमें से ही कुछ आमदनी का जरिया देखा जाए। और उसके अलावा फिर थिएटर करता था मैं और लोगों से काम मांगना आता नहीं था, वो शायद अपब्रिंगिंग कह लीजिए, तरबियत जो है अपनी, या आई डोंट नो, मैं ईगो तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एक हिचक आज तक है मुझे,
1: आज भी नहीं है,
0: आज भी वो हिचक है मेरे अंदर की
1: अच्छा।
0: लोगों से काम मांगने का
1: जी।
0: इशारतन बोल देता हूँ लोगों से कि भाई आपके साथ काम जरूर करना चाहूंगा मैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं कि आपको काम पसंद करता हूँ और आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा मैं। बुला लिया लोगों ने तो अच्छी बात है, भूल गए तो भूल गए। खैर, तो थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो, तो वो सब थिएटर में शोज करते वक्त लोगों ने मुझे वहां देखा, समझा, बुलाया और काम से काम मिलने लगा। तो मैं कहूंगा कि थिएटर ही वो बुनियादी चीज है जिससे मेरे लिए और रास्ते खुले।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं तकरीबन पूरा जो श्रेय है वो थिएटर को दूंगा अपने करियर।
1: वो एक नींव है
0: जी,
1: जहां से सब चीजें शुरुआत होती है और मजबूत पकड़ लिए हुए हैं
0: जी। तो हाँ, वही एक शुरुआत और बहुत सारे ब्रांच आउट जो हुए, जो आमदनी के जरिए बने, वो सब थिएटर के जरिए बने। लोगों ने खुद ही मुझसे, इनफैक्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एड्स में वॉइसेस दे पाऊंगा, तो लोगों ने कहा कि भाई आप करिए, आपकी जबान अच्छी है, आप उच्चारण जो है आपका अच्छा है, क्लियर डायलॉग्स हैं आपके
1: जी,
0: तो करना चाहिए थिएटर में। उन्होंने देखा सुना मुझे, तो एज एन एक्टर बुलाया, एज अ वॉइस बुलाया, तो वैसे ही शुरू, और फिल्मों में भी उसी से ही रास्ते खुले।
1: हाँ। अभी आपकी पसंद का दूसरा गाना जो आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को,
0: इजाजत नाम की एक फिल्म है जिसमें मेरे ख्याल में सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो मेरा सबसे पसंदीदा है वो है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।
1: क्या बात है, क्या पसंद है, सुनवाते हैं गीत
0: जी।

0: बात करते लेट 90s की, जब आप मुंबई में आ चुके थे, तो उसी दौरान आप हम दिल दे चुके सनम, वो आपकी पहली फिल्म थी मेरे ख्याल से, और एड की दुनिया, ये दोनों कैसे चली, पहले क्या शुरुआत हुई और फिल्म में कैसे जाना हुआ?
1: देखिए, जब थिएटर कर रहा था तो इस बात का एहसास हो गया कि सिर्फ थिएटर से गुजारा तो नहीं हो पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: और ये रियलिटी चेक मुझे यहाँ आने के बाद हुआ कि भाई ये गुजारा नहीं हो पाएगा, इससे तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा। तो जो भी चीजें इससे जुड़ी हुई थी उसकी तरफ नजर किया मैंने, जैसे कि मैं डबिंग्स करता था,

0: अभी हम बात करते हैं फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है
1: जी,
0: बेबी, टाइगर जिंदा है और चलते चलते, इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात तो होनी जरूरी है
1: जी।
0: तो ये जो एक लंबी फहरिस्त है, अब हर एक फिल्म का तो हम अभी बात नहीं कर पाएंगे
1: जी।
0: लेकिन दो अलग अलग छोर लेती हूँ मैं
1: जी।
0: एक तो जहाँ से शुरुआत हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म से
1: जी।
0: हम दिल दे चुके सनम, रामलीला भी उनके साथ हुई, और दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर, बिल्कुल अलग किरदार। और एक कलाकार के लिए अलग अलग किरदार करना आसान है और वो एक अच्छी बात है, वो तो है ही, लेकिन दो अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स, दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग, तो क्या डिफरेंस है और कुछ दिलचस्प किस्से दोनों के सेट से, कुछ ऐसा जो याद रह जाए, कुछ ऐसा आप साझा करना चाहेंगे?
1: देखिए, संजय भंसाली जो है वो बहुत ही बारीकी में घुसने वाले डायरेक्टर है और उनका विजन बहुत बड़ा और बहुत रिच होता है, बहुत ग्लॉसी, बहुत ही ग्लैमरस। गुर्बत भी जो है ना, गरीबी जो है वो भी उनके फिल्मों में बड़ी स्टाइलिश दिखेगी,
0: बिल्कुल जी, तो लार्जर देन लाइफ,
1: लार्जर देन लाइफ
0: जी।
1: तो वो आदमी पिक्चर फ्रेम्स बनाता है, खूबसूरती तो भर भर के होती है उनकी फिल्मों में
0: जी।
1: और उनका तरीका जो है वो वही उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जिस तरीका का कैनवस वो पेंट करते हैं, वो हर चीज में उनका दखल होता है। उनके साथ काम किया हुआ आदमी उनके साथ जब काम करता है तो वो अलग दिखता है, और किसी और के साथ काम करता है तो वो अलग दिखता है। उसकी वजह यह है कि वो डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन उनका हर चीज में होता है, और उनका दखल इस हद तक होता है कि भाई वो कोई चीज बिगड़ने देना नहीं चाहते। वो म्यूजिक कंपोज भी करते हैं अब तो,
0: बिल्कुल,
1: और बाकी तमाम चीजें तो हैं ही। तो उनका जो अंदाज है वो काफी नपातुला है, और उनको जो चाहिए वो ढूंढते हैं और वो पा लेते हैं। उसको पाने में चाहे वो दो टेक लगे चाहे 200 टेक लगे,
0: अच्छा,
1: जब तक वो पाते नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ते
0: जी।
1: और इसलिए वो अच्छे एक्टर भी ढूंढते हैं
0: जी।
1: कि जो उनको वो चीज दे सके, और जो वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं उसको वो एक्टर उसी तरीके से दे सके। और अपने एक्टरों से बेनतहा मोहब्बत करते हैं वो बात अलग है कि अगर आप एक्टर अच्छे नहीं है तो जाहिर है फिर डांट भी पड़ेगी आपको, जायज भी है,
0: बिल्कुल।
1: और अनुराग का जहां तक ताल्लुक है, अनुराग बहुत ही फ्री फ्लोइंग डायरेक्टर है। अनुराग कोई चीज डिसाइड नहीं करता है, वो एक्टर को खुली छूट देता है और वो रियलिज्म में ज्यादा घुसता है। तो अनुराग उस लिहाज से अच्छा है कि वहां पर भी आपको अच्छे एक्टर की जरूरत पड़ेगी,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक्टर अगर इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहा है तो फिर अनुराग के लिए वो बेमानी है।
0: स्पॉन्टेनियस,
1: हाँ,
0: स्पॉन्टेनियस
1: बिल्कुल, और किरदार बगैर छोड़े हुए या बगैर उलझे हुए। कुछ अच्छी अच्छी मैजिकल चीजें भी मिल जाती हैं उसमें। कभी कभी अच्छी चीजें नहीं भी होती तो अगला टेक कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तो फर्क बेसिक यही है कि वो बहुत ही रियल रस्टिक अनुराग का फील होता है, और बहुत ही इम्प्रोवाइजेशनल तरीका है उसका काम करने का।
0: कोई चैलेंजिंग रोल ऐसा जिसके लिए तैयारी तो खैर हर रोल हर कैरेक्टर के लिए चाहिए, पर कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल कैरेक्टर जिसके बारे में आप बात करना चाहें जिसको बहुत तैयारी की जरूरत पड़ी और इस तरह का कुछ अनुभव?
1: फिल्मों में मुझे इतनी दुश्वारी पेश नहीं आई कभी भी।
0: श्रीकांत में आपने काम किया?
1: श्रीकांत में कह सकता हूँ कि थोड़ा सा टफ था
0: जी,
1: क्योंकि एक तो उम्र ज्यादा, और क्या कहते हैं, ऐसी शख्सियत जो बहुत ही अजीम, बहुत ही महान शख्सियत, और अब भी सबने देखा है,
0: हाँ, हाँ,
1: सुना है, देखा है,
0: बिल्कुल।
1: तो उसको उतारना थोड़ा चैलेंजिंग था और मुश्किल आई पेश। लेकिन उसमें जो डायरेक्टर थे तुषार, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए उस बात की।
0: अच्छा,
1: उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर, मैंने कहा यार भाई ये बड़ा मुश्किल काम है,
0: हाँ, हाँ।
1: एक तो साउथ इंडियन, और अच्छी बात ये हुई कि वो मुझे उसमें अंग्रेजी भी

0: क्योंकि वो हिंदी इतनी अच्छी तरह जानते नहीं थे,
1: बिल्कुल,
0: तो अंग्रेजी का इस्तेमाल भी था, तो उस तरीके से थोड़ा सा बच गया। और बहुत ज्यादा लंबा रोल नहीं था, मैंने कहा कि भाई ठीक है चलो ये मैनेज हो जाएगा
1: जी।
0: लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो थोड़ा चैलेंजिंग था, थोड़ा मुझे डराया भी उसने।
1: अच्छा, ज्यादा तैयारी के साथ उतरे आप। आपकी पसंद का कौन सा गाना अब हम सुनवाना चाहेंगे?
0: चिंगारी कोई भड़के।
1: क्या बात है, आपकी पसंद। बिल्कुल सुनवाते हैं गाना।

0: आज अब बातचीत के दौरान जब बात गुल्लक की ना हो तो भाई इनकम्प्लीट है, बिल्कुल अधूरी है. गुल्लक जिससे बहुत ज्यादा प्यार मिला, संतोष मिश्रा का किरदार. अब मैं पूछना चाहूंगी कि कितना संतोष मिला आपको वो किरदार करके या वो सीरीज करके, कैसा लगता है, कैसा अनुभव है?
1: बहुत ज्यादा संतोष मिलता है मुझे संतोष मिश्रा का किरदार अदा करके.
0: कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना उसके नजदीक हैं, तैयारी कैसी है, सेट का माहौल कैसा, क्योंकि हमने तो बहुत मजे से देखी है और आगे भी जो आएंगे उसके लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं उसके जो एपिसोड्स आएंगे.
1: जी, दो चीजें देखिए उसमें. शुरू में मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ी, अब तो वो हिस्सा हो गया है किरदार का,
0: घर घर का हिस्सा हो गया,
1: घर घर का हिस्सा हो गया. और मेरे लिए भी एज ए कैरेक्टर अब वो आसान हो गया क्योंकि 5 सीजन कर लिए हम लोगों ने.

0: लेकिन शुरुआती दौर पे जो दुश्वारी पेश आई या जो चैलेंजिंग लगा मुझे उसमें, वो एक तो थी उसकी जबान। ये मेरी नॉर्मल जबान है,
1: बिल्कुल
0: है ना, बातचीत की जबान, लेकिन उसमें मुझे अपना उच्चारण बिगाड़ना पड़ा। स श ज ज, और मेरे नुक्ते सटीक लगते हैं, मेरी जाती जिंदगी में बिल्कुल सटीक नुक्ते लगते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होती, लेकिन इसमें वो नुक्ते हटाने थे तो वो दुश्वारी आती थी हमेशा शुरू शुरू में। और उसके अलावा मिडिल क्लास की जिंदगी देखी है मैंने अपने इर्द गिर्द, लेकिन उसको महसूस नहीं किया था। एक लिहाज से कहूँ कि काफी समृद्ध परिवार से हूँ और किसी तरीके की कोई पैसे की कमी कभी मेरे माँ बाप ने नहीं रखी
1: जी।
0: लेकिन तरबियत जो थी ना वो ऐसी थी कि पैसे की अहमियत को समझना, वो उसका एहसास कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ गया था वो। तो वो एहसास जब आदमी ऊपर होता है ना, जब बहुत कुछ होता है और फिर उसके बाद जब नीचे आता है, तब समझ में आता है कि भाई एक्चुअल जिंदगी क्या है,
1: क्या है, बिल्कुल
0: क्या
1: चुनौतियां हैं,
0: क्या चुनौतियां हैं। तो उतार में वो उसका एहसास हुआ, खास तौर पे जब मैं खुद अपने पैरों पर आया, जब घर से पैसे लेने बंद किए, तब एक एक पाई की अहमियत समझ में आई।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए जो शुरुआती दौर मेरा बॉम्बे का रहा है, जो मुश्किल दिन रहे हैं, वो एहसास वो इमोशन वहां से आता है। और किरदार के अंदर कैसे क्या डाला गया, वो बहुत सारे मुख्तलिफ रिश्तेदार हों या दोस्तों के माँ बाप हों या मेरे अपने माँ बाप हों, वहां से उठाई हुई चीजें हैं। और एहसास तो जो है वो, जब आप एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि अगर आप हसास नहीं हैं तो अच्छे एक्टर मेरे ख्याल में नहीं हो पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बहुत ही जरूरी बेसिक चीज है।
0: जी जी, और आंख कान खुले रखना ताकि जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसको देखते रहें आप और उसको जज्ब करते रहें, अपने अंदर बिठाते रहें, वो जखीरा बनता है आपका, कब क्या चीज की जरूरत पड़ जाएगी आप वहां से निकाल के अपने किरदार में डालते हैं।
1: और यहाँ पर मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने पिता का किरदार निभाया है, तो आपके पिता के साथ आपका कुछ ऐसे अनुभव या कुछ ऐसा साझा कर, एक अलग तरह का रिश्ता, कुछ ऐसी इमोशनल बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, उनसे क्या सीख मिली है? क्योंकि ये जो कहानी है, धारावाहिक है गुल्लक, ये भी एक सीख देता है। तो ऐसी कोई सीख जो आप देना चाहते हैं या फिर जो आपको अपने पिता से मिली है?
0: बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि मेरे फादर से मेरा बहुत गहरा लगाव है। और एक बात जब मैं कहना चाहूंगा कि इंसान को कभी अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात है, मैं घर गया हुआ था, बॉम्बे आने की तैयारी में था, सामान वामान पैक कर रहा था, तो ट्रेन का टाइम हो गया था, तो अब्बू आए कहने कि अरे जल्दी करो जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। और मेरे, क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में था, अम्मी भी थी, पैक करवा रही थी, ये वो ये रख लो वो रख लो अम्मी, तो कुछ मुंह से मेरे ऐसे निकल गया कि अब्बू पगलवाई मत, मैं कुछ भूल जाऊंगा। तो पगलवाई मत, वो जो शब्द था ना,
1: बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए बात करते वक्त, वो कहीं ना कहीं सिखाता है।
0: तो मैं यही कहूंगा कि इज्जत से पेश आना चाहिए माँ बाप से हमेशा।
1: बिल्कुल।
0: और जितनी मोहब्बत आपको आपके माँ बाप दे सकते हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो यही सीख है। और मैं यही कहूंगा कि माँ बाप आपकी तरबियत, आपकी करियर, आपके किरदार को बनाते हैं। और अच्छे माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों की जरूरत, उनकी एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं हर लिहाज से।
1: बिल्कुल। एक और आपने फिल्मों की बातें की, फिल्म एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आपने किया, बीनीथ अ सी ऑफ लाइट्स,
0: राइट,
1: उसके बारे में कुछ बताइए, वहां का माहौल अलग है, किस तरह से अलग था?
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए वहां पर ये बड़ा इंडिपेंडेंट फिल्म थी एक तरीके से, और जो तरीका है उनका शूट करने का वो बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही प्रिसाइज, जिसमें वेस्टेज ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल में बमुश्किल 25-30 लोगों का यूनिट रहा होगा। और बहुत शांति से, बहुत सुकून से काम हुआ, हर आदमी अब काम से काम रखता था और वक्त पर पहुंचता था।

0: बच्चन साहब की बात निकली है तो एक वाक्य मुझे याद आता है कि आप एक ही स्कूल से हैं बच्चन साहब, जहां से पढ़े हैं, उस बारे में कुछ बताइए। उसके बाद आपकी मुलाकात भी हुई है आपकी मुंबई में, तो वो एक इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है।
1: जी, बच्चन साहब शेवर्ड कॉलेज नैनीताल से वो भी पढ़े हुए हैं और मैं भी
0: जी।
1: उनसे मुलाकात मेरी चीनी कम नाम की एक फिल्म थी जो मैंने की थी, उसमें हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और कमाल की बात है कि वो भूलते नहीं
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद एक ऐड भी किया हमने साथ में और उन्होंने पहचान लिया, जबकि अलग गेटअप में था मैं। और फिर उसके बाद हमने एक फिल्म की थी गणपत, अभी जो आई थी कुछ साल पहले
0: जी,
1: उसमें वो भी थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं भूल पाल गए होंगे, लेकिन उन्होंने, उनका बड़प्पन कि डायरेक्टर से बात हो रही होगी, वो गणपत के सेट पर भी, तो तपाक से गले लगाया उन्होंने मुझे कि यू डूइंग वंडरफुल वर्क, सो प्राउड ऑफ यू। तो जाहिर है बच्चन साहब है, तो बच्चन साहब से जाहिर है एक, क्योंकि स्कूली नाता भी है और उनको आइडियलाइज भी किया है, उनकी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं
0: जी।
1: तो एक तरीके से बहुत बड़े आइडल है हमारे, उनकी तमाम फिल्में देखी हैं मैंने। और बच्चन साहब से मिलके हमेशा अच्छा लगता है। बच्चन साहब, जैसा कि मैंने कहा कि वो ऐसी शख्सियत हैं कि वो रूम में दाखिल होते हैं तो हर आदमी न चाह के भी खड़ा हो जाता है
0: बिल्कुल।
1: और लेजेंड है वो, तो बच्चन साहब बहुत कमाल के इंसान भी हैं, तो उनसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है।
0: उसके अलावा शूटिंग के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हुए होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी एक सीन है जहां पर आप जख्मी भी हो गए थे, एक किस्सा ऐसा कुछ था
1: जी,
0: वो बताना चाहेंगे। तो शूटिंग के दौरान ये जो चुनौतियां आती है
1: जी,
0: कभी कभी मजेदार भी होती है
1: जी, जी।
0: उस बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, वो चोट मुझे आई थी, दरअसल एक सीन था जिसमें एक ठेला सा खड़ा हुआ है, वो तीन पहिए के रिक्शे वो होते ना सामान रखने वाले,

0: तो वो एक रखा हुआ था, तो कुछ बात हुई कि भाई इन दोनों रिक्शों के बीच में से निकल के जाना है, तो एक टेक हो गया। फिर उसके बाद वो रिक्शा वहां पर प्रबंध, मैंने कहा यार मैं रिक्शे के ऊपर जाके और वहां से छलांग मार के निकलता हूँ। तो अनुराग ने कहा कि सर देख लीजिए मतलब, तो मैंने कहा हाँ यार करते हैं मजा आएगा। तो एक टेक किया मैंने, तो कहता सर बढ़िया लग रहा है एक और करते हैं। वो लालची डायरेक्टर है ना, उसको चीज अच्छी लगती है तो फिर वो आगे बढ़ता है
1: एक और।
0: हाँ सर एक और करते हैं
1: जी,
0: मतलब मुझे ऐसा मजा आ रहा है, कुछ एक और करते हैं। तो अगले वाले टेक में वो इधर उधर लोग पीछे पड़े हुए मेरा पीछा करने मारने के लिए, अब क्यों मुझे भी हौसला मिल गया तो मैंने छलांग और ऊंची लगा दी। और जब मैं लैंड किया, मैं चप्पल पहने हुआ था, जब लैंड किया तो वो पसीने से पांव थोड़ा सा स्लिप हुआ और
1: फिसल गया
0: और मेरे एंकल जो है उसमें मोच आई तगड़ी। लेकिन मैंने वो शॉट कंप्लीट किया, ऐसा नहीं कि वहां मोच आई तो मैं वहीं बैठ गया, वो शॉट कंप्लीट किया और एक चढ़ान था ऊपर टीला सतह, उस पर चढ़ के दूसरी तरफ कूदना था और वहां शॉट खत्म था। तो उस टीले पर चढ़ के मैं नीचे छलांग भी मार दी। फिर जब मैं वापस आ रहा था वहां से, तो उसने तो देख लिया था शॉट मॉनिटर में, आके मैं जब पूछा उसने कि भाई आई ओके, मैंने कहा उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं बैठा नीचे, बैठते बैठते मैं बेहोश हो गया। कुछ मेरे ख्याल एक मिनट के लिए बेहोश रहा हूँ मैं, फिर होश आया तो करें सर उसने मुझे, फिर उसके बाद लिटाया वटाया तो पानी वानी जो कुछ भी है, फिर वो शॉट दिखाया उसने कि सर देखिए ऐसे हुआ था ये, वो जो आपका पाँव है ऐसे स्लिप हुआ चप्पल से। तो उसके बाद के सीन्स हमारे कुछ एक, क्योंकि चोट लग गई थी लोगों को शायद पता ना चले, लेकिन एक हल्का सा एक लिम्प है।
1: अच्छा।
0: हाँ कुछ एक सीन में,
1: अब हम देखेंगे फिर से गौर से उसे।
0: और कुछ एक सीन में फिर नहीं रखा था मुझे, क्योंकि भाई चोट लगी हुई थी।
1: जी जी जी।
0: तो वो मनोज भाई के साथ जो मोटरसाइकिल पे पीछे बम फेंक रहे हैं वो सब मुझे होना था, लेकिन चोट की वजह से वो नहीं कर पाया था। और उसके अलावा एक और किस्सा था जिसमें कि जीप में हम लोग पहलवान का पीछा कर रहे हैं मारने के लिए।
1: हाँ।
0: और वो ऐसे क्या कहते हैं सरिये निकले हैं और बांस वास निकला हुआ है दुकानों का घरों का, और जीप जा रही है और मैं बाहर निकल के ऊपर जगह चीख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ उसको पहलवान को, और मुझे दिख रहा है कि ऐसे बांस और ये सब सरिये वगैरह निकले हुए। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये मुझे लगेगा मेरा सर फटेगा या कुछ होगा, तो सामने दिख रहा है मुझे जैसे जीप जाती गई, वो इंस्टेंट जो दिमाग में आता है कि मैं फौरन जीप के अंदर घुसा वापस, और जब वो गुजर गया फिर वापस आया। तो वो
1: एक रिफ्लेक्स,
0: हाँ रिफ्लेक्स एक्शन जो है उससे जान बची। लेकिन ये है कि वही है कि यू गॉट टू बी अवेयर एंड अलाइव टू द सिचुएशन, कि आप एकदम टू बी इन द मोमेंट, कि आपको जैसा जो आ रहा है उससे डील करिए रियल टाइम में।
1: बिल्कुल।
0: और एकदम रियल तरीके से, कि अगर एक्चुअली अगर होता तो यही करते ना आप।
1: बिल्कुल।
0: अब उसकी शॉट रोक नहीं दिया कि अरे ये वहां से रोको यार भाई, नहीं जी, आ रहा है तो ठीक है डील करो ना उससे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वही है सही तरीके की एक्टिंग मुझे लगता है।
1: बिल्कुल। कोई एक तरह का मेथड आप फॉलो नहीं करते जिस तरह से जो आ रहा है उस तरीके से?
0: बेसिकली देखिए मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द है ना, जो स्क्रिप्ट है वो बहुत कुछ बोलती है, और डायलॉग्स बहुत कुछ देते हैं मुझे।
1: जी।
0: अब एक अच्छा एक्टर जो होता है डायलॉग्स के बीच में जो होता है ना, कि बगैर बोले बहुत सारी चीजें कन्वे करता है, तो न बोल के भी कन्वे करना, और एज एन एक्टर मुझे शब्द जो हैं, जो अल्फाज हैं, वो बहुत कुछ देते हैं अपने किरदार के बारे में और अपने रिस्पॉन्स के बारे में। तो मैं बहुत कुछ उनसे लेता हूँ। और जहां तक ताल्लुक है कि अलग अलग तरीके यूज करने का, तो वो जिस सीन में जो सही बैठता है उसको इस्तेमाल करता हूँ, और कोई एक मेथड नहीं है कि ये तरीके से ही मैं चलता हूँ। कुछ एक तरीके होते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंटरनल काम करना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो मैं दुनिया को नहीं पता है, डायरेक्टर को नहीं पता है कि मेरी तैयारी क्या है, और उसको पता करने की जरूरत भी नहीं है।
1: जी।
0: और कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नली आप काम करते हैं, कि आप अपनी जबान पर या आप अपने बॉडी लैंग्वेज में या आप जो पहनावा है आपका उससे आपकी चाल बदल जाती है।
1: आजकल वर्कशॉप्स भी होते हैं फिल्मों से पहले या सीरीज से पहले।
0: जी, जी,
1: तो गुल्लक की तैयारी के लिए भी ऐसा कुछ वर्कशॉप हुआ?
0: जी, हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशंस होते हैं, और पहले सीजन के पहले कुछ एक चीजें, कुछ एक होता ना कि केमिस्ट्री बनाने के लिए
1: जी।
0: कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी किए हमने, क्योंकि नए थे सारे। और चलिए गीतांजलि और मैं तो पुराने एक्टर्स हैं, किया हुआ

0: हुआ है काम, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं अमन और अनु, इनके साथ कैसे केमिस्ट्री बिठानी है, उस लिहाज से तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अपने आप एक दूसरे को समझना
1: जी,
0: क्योंकि एक परिवार है तो अच्छे से समझना और अच्छे से वो केमिस्ट्री बनाना, वो उस चीज की वर्कशॉप जो पहले सीजन के पहले हुई थी
1: जी।
0: वो वहीं से वो सुर बैठ गया और फिर शूट करते टाइम तो और ज्यादा बैठ गया, फिर उसके बाद तो फिर दौड़ने लगा।
1: बिल्कुल दौड़ने लगा और हम देख ही रहे हैं कैसे दौड़ रहा है। यहाँ पर एक गीत आपकी पसंद का।

0: गुल्लक में कितना स्क्रिप्ट का योगदान है, कितना इम्प्रोवाइजेशन है?
1: गुल्लक में स्क्रिप्ट, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा योगदान स्क्रिप्ट का ही है। अगर वो बुनियाद हमें नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो स्क्रिप्ट का तो बहुत ज्यादा योगदान है। और जहां तक पर्सनल टचेस की बात है तो कुछ एक चीजें हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं
0: जी,
1: कुछ एक डायलॉग्स भी इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ एक मोमेंट्स भी हम क्रिएट करते हैं, तो वो एक मिली जुली एफर्ट है। लेकिन हाँ, बुनियादी तौर पे स्क्रिप्ट निहायत ही अच्छी होती है गुल्लक की। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ही भी, मैं ये तो नहीं कहूँ इसी वजह से ही, लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो स्क्रिप्ट को जाता है गुल्लक के कामयाबी में।
0: और गुल्लक ने घर घर में जो आपको पहचान बनाई है आपकी, उसके बाद ऐसा कुछ फैन मोमेंट जो आपको याद आता है, संतोष मिश्रा के नाम पर आपको पहचाना गया कहीं, इस तरह का कुछ फैन मोमेंट?
1: हाँ, देखिए बहुत सारा काम रहा है मेरा थिएटर में।

0: जो पहली पहचान थिएटर से मिली, लेकिन वो आपको मास पहचान नहीं मिलती है बॉम्बे के बाहर या थिएटर सर्किट के बाहर. कुछ एक फिल्में आई उसके बाद जो बहुत मकबूल हुई, लोग उससे याद करते थे, इज्जत भी करते थे और काम के लिहाज से कि भाई ये एक मजबूत एक्टर है, वो एक इमेज बन गई थी. लेकिन गुल्लक से मुझे जो फर्क जो महसूस होता है वो है पॉपुलैरिटी के अलावा एक जो मोहब्बत मिलती है ना, और जो इज्जत मिलती है, और जो अपनाइयत मिलती है, और दिल से बनावटी नहीं, वो गुल्लक ने जरूर दिया है मुझे. और इसको लेके जो भी मिलता है बड़ी मोहब्बत से मिलता है, और वो ऐसा मिलता है जैसे संतोष मिश्रा उनके अपने हो.
1: बिल्कुल.
0: चाहे वो भाई के तौर पे मिले, चाहे बेटे के तौर पे मिले, चाहे बाप के तौर पे मिले. बहुत सारे बुजुर्गवार हैं जो देख के मिलते हैं या कभी ऐसा तो कहते हैं यार किरदार हो तो ऐसा हो.
1: एक एयरपोर्ट का किस्सा आपने साझा किया था, इस बारे में कुछ बताएं.
0: हाँ, वो भी देखिए ये बेइंतहाई मोहब्बत की बात है कि एयरपोर्ट पे मैं था और एक शख्स सामने से आए वो और मेरे पांव छूने लगे, तो मैंने उनको उठाया. मैंने कहा नहीं भाई ऐसा मत करिए आप. तो वो गले लग गए और गले लगे रहे काफी देर तक, और फिर उसके बाद जैसे ही अलग हुए वो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि थैंक यू सर, और उनकी आंखें नम थी और बस थैंक यू कह के चले गए.
1: मुझे लगता है ये अवार्ड से भी कहीं गुना ज्यादा ये नवाजा जाता है इस प्यार.
0: जी जी जी. और कमाल की चीज है वो कभी ऐसा एहसास मुझे नहीं हुआ कि यार ये तो एक एकदम स्ट्रेंजर, एक अजनबी शख्स आपके गले लग जाए और फिर उसके बाद इतना इमोशनल हो जाए और कुछ बोले नहीं, सिर्फ अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह के चला गया वो.
1: बिल्कुल. और एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि संतोष मिश्रा स्क्रीन पर और आप में कितनी कितना मिलता जुलता है, आप घर पे कैसे हैं?
0: देखिए मैं मस्तीखोर तो हूँ. अब मुझे ऐसा लगता है कि ये राइटर्स भी जो हैं मुझे देख के काफी कुछ लिखते हैं कि किरदार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है
1: जी.
0: लेकिन संतोष मिश्रा और जमील खान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. जो बर्ताव है संतोष मिश्रा का
1: जी.
0: बहुत ही सेंसिटिव आदमी हूं मैं, तो मैं हर इंसान को लेके कोशिश करता हूं कि उसको समझूं, जटिल न रहूं इस बात का कि मैं सोच रहा हूं या समझ रहा हूं वही सही है. दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का नजरिया, और दूसरे की जगह खड़े होके या दूसरे की जगह अपने आप को डाल के रख के इस बात को समझना कि
1: हाँ,
0: कि ये जो सोच रहा है या कह रहा है या कह रही है इसको भी समझना बहुत जरूरी है.
1: बिल्कुल.
0: और मस्तीखोरी तो भरी है मेरे अंदर, मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ और मैं सीरियस कम रहता हूँ लाइफ में, और जिंदगी को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली स्ट्रेस नहीं लेता मैं, और स्ट्रेस देता भी नहीं. मैं बहुत सादगी से और बहुत ईमानदारी से और इस तरीके से काम भी करता हूँ कि किसी को मेरी वजह से कोई दुश्वारी पेश ना आए.
1: बिल्कुल.
0: प्रॉब्लम न क्रिएट हो या कोई एयर्स नहीं रहते मेरे कि कोई होता है ना कि भाई एक एरोगेंस हो या कोई ऐसा, भाई कम में भी काम हो जाता है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. स्टार पना नहीं दिखाता मैं कभी भी, सादगी से.
1: चलते चलते हमारे श्रोताओं को प्यार भरा संदेश जो आप देना चाहते
0: हैं? यही कहूंगा कि भाई दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जितना अमन से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो दुनिया हो, इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है. और एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सहारा बन के, कभी छोटा भाई बन के तो कभी बड़ा भाई बन के, एक दूसरे को हौसला देते हुए आगे बढ़े
1: जी.
0: इसी में हम सबकी भलाई है.
1: बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
0: बहुत बहुत धन्यवाद.
2: सेलुलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत. चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान.

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या के इंद्र से बोल रहे हैं। 101.9 FM बैंड, न्यूज ऑन AIR ऐप, वेव्स OTT पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: की बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बात। सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन
2: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है पर जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
6: दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी खूब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी के साथ है आपका दोस्त कृष्णमणि पांडे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। भारतीय इतिहास से सेगमेंट में जानेंगे नील विद्रोह के बारे में। साप्ताहिक सेगमेंट

चक्रव्यूह में जानेंगे पिछले चक्रव्यूह में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और उत्तर देने वाले श्रोताओं के नाम और इस चक्रव्यूह के नए प्रश्नों को भी, साथ ही सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत संगीत भी। साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। एक ऐसा अवसर जो हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन की नींव केवल अच्छे भोजन से नहीं बल्कि संतुलित और पौष्टिक आहार से होती है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना और कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सही खान पान और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। दोस्तों, हमारे शरीर को ऊर्जा वृद्धि और रोगों से लड़ने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पर्याप्त पानी प्रमुख हैं। इसलिए भोजन की थाली में विविधता होना बहुत जरूरी है। अनाज के साथ दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दूध या उसके विकल्प, मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी हमारे भोजन को संतुलित बनाते हैं। पोषण का महत्व बच्चों के लिए और भी अधिक है। बचपन में मिलने वाला पर्याप्त और संतुलित पोषण शारीरिक एवं मानसिक विकास की मजबूत नींव रखता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी पौष्टिक आहार अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार किशोरियों और बुजुर्गों को भी उनकी उम्र और आवश्यकता के अनुसार संतुलित आहार लेना चाहिए। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यह संदेश देता है कि पोषण केवल भरपेट भोजन करना नहीं बल्कि सही मात्रा में सही पोषक तत्व लेना है। अत्यधिक नमक, चीनी और तले भुने खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। पैकेट बंद और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बजाय स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को भी प्राथमिकता देना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। भारत सरकार ने कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चलाए हैं। पोषण अभियान तथा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसी पहले बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के पोषण तथा स्वास्थ्य में सुधार पर विशेष ध्यान देती हैं। इन प्रयासों की सफलता तभी संभव है जब सरकार के साथ साथ परिवार और समाज भी अपनी भूमिका निभाए। तो दोस्तों, इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर आइए हम संकल्प लें कि अपने भोजन में विविधता लाएंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, बच्चों को पौष्टिक आहार देंगे और पोषण से जुड़ी सही जानकारी परिवार तथा समाज तक पहुंचाएंगे। याद रखिए, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज की शुरुआत एक संतुलित थाली से होती है। दोस्तों, यह थी चर्चा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों आइए चलते हैं अपने साप्ताहिक सेगमेंट भारतीय इतिहास की तरफ, जिसमें आज हम भारतीय इतिहास के उस महत्वपूर्ण किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे जिसने अंग्रेजी शासन की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध किसानों की आवाज को बुलंद किया। यह आंदोलन था नील विद्रोह, जिसे अंग्रेजी में इंडिगो रिवोल्ट कहा जाता है। वर्ष 1859-60 में बंगाल में हुआ यह विद्रोह भारतीय किसान आंदोलनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दोस्तों, नील एक ऐसा पौधा है जिससे नीले रंग की प्राकृतिक रंगाई के लिए उपयोग होने वाला पदार्थ प्राप्त किया जाता था। यूरोप में कपड़ा उद्योग के विकास के साथ नील की मांग बहुत बढ़ गई थी। अंग्रेज व्यापारी भारत में नील की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने लगे। विशेष रूप से बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेज नीलहे साहबों ने किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। उस समय किसानों की स्थिति पहले से ही कठिन थी। उन्हें अपनी जमीन पर मुख्य रूप से खाद्यान्न और अन्य उपयोगी फसलें उगाने की आवश्यकता थी, लेकिन नील की खेती ने उन्हें अपेक्षाकृत कम लाभ मिलता था। नील की खेती जमीन की उर्वरता को भी प्रभावित करती थी और किसान अपनी पसंद की फसल उगाने से वंचित हो जाते थे। नील की खेती कराने के लिए अंग्रेज बागान मालिकों किसानों के साथ एक प्रकार का समझौता करते थे। किसानों को अग्रिम धन दिया जाता था और बदले में उन्हें अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील उगाना पड़ता। इसे सामान्यतः ददनी या अग्रिम व्यवस्था से जोड़ा जाता था। समस्या यह थी कि किसानों को नील की उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था। कई बार उन्हें जबरन ऐसे अनुबंधों में बांध दिया जाता था जिनसे निकलना उनके लिए लगभग असंभव होता था। किसानों की कठिनाइयां यहीं समाप्त नहीं होती थी। नीलहे साहबों के करिंदे और स्थानीय कर्मचारी किसानों पर दबाव डालते और कई बार हिंसा का सहारा लेते थे। किसानों को अपनी जमीन पर खाद्यान्न की जगह नील बोने के लिए विवश किया जाता था। इस शोषण के कारण ग्रामीण समाज में असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया। आखिरकार 1859 में बंगाल के नदिया जिले के किसानों ने संगठित रूप से नील की खेती करने से इनकार करना शुरू किया। किसानों का संदेश अस्पष्ट था, वे अपनी जमीन पर नील नहीं उगाएंगे। यही विरोध धीरे धीरे बंगाल के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। दोस्तों, इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें किसानों ने बड़े

पैमाने पर सामूहिक असहयोग का रास्ता अपनाया। वे नील की खेती के लिए किए जाने वाले समझौतों पर हस्ताक्षर करने से मना करने लगे। कई स्थानों पर किसानों ने नीलहे साहबों के करिंदों का सामाजिक बहिष्कार किया और उनके दबाव का सामूहिक रूप से सामना किया। साथियों, नील विद्रोह केवल किसानों का आर्थिक संघर्ष नहीं था, इसमें ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग भी दिखाई दिया। स्थानीय जमींदारों के कुछ वर्ग, बुद्धिजीवी और समाज सुधारक भी किसानों के पक्ष में आए। हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा संपादित समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट ने किसानों की समस्याओं को सार्वजनिक रूप से उठाया। इससे नील की खेती से जुड़े शोषण की खबरें व्यापक समाज तक पहुंची। नील विद्रोह के इतिहास में दीनबंधु मित्र का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के माध्यम से नील किसानों की पीड़ा और नीलहे साहबों के अत्याचारों को सामने रखा। इस नाटक ने शिक्षित भारतीय समाज में व्यापक चर्चा पैदा की और नील किसानों की स्थिति के प्रति सहानुभूति बढ़ाई। ब्रिटिश सरकार भी इस बढ़ते असंतोष को नजरअंदाज नहीं कर सकी। वर्ष 1808 में नील आयोग का गठन किया गया। आयोग ने किसानों की शिकायतों की जांच की। आयोग के सामने किसानों ने बताया कि उन्हें जबरन नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें उचित मूल्य भी नहीं मिलता। नील आयोग की रिपोर्ट किसानों के पक्ष में महत्वपूर्ण साबित हुई। आयोग ने माना कि किसानों को उनकी इच्छा के विरुद्ध नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद बंगाल में नील की जबरन खेती की व्यवस्था को बड़ा झटका लगा और धीरे धीरे नील उत्पादन का पुराना ढांचा कमजोर पड़ने लगा। हालांकि नील विद्रोह तत्काल पूरे औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने वाला आंदोलन नहीं था, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। इस आंदोलन ने यह दिखाया कि संगठित किसान अपनी सामूहिक शक्ति के माध्यम से शक्तिशाली यूरोपीय बागान मालिकों के विरुद्ध भी आवाज उठा सकते हैं। नील विद्रोह को भारतीय किसान आंदोलन की आगे की परंपरा से भी जोड़कर देखा जाता है। बाद के वर्षों में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों ने लगान, जबरन खेती, साहूकारी शोषण और औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध आंदोलन किए। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और बारडोली सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में भी किसानों के आर्थिक अधिकार और अन्याय के विरोध का स्वर दिखाई देता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है कि नील विद्रोह को केवल नील की खेती के विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता, अपनी जमीन का अधिकार और सम्मानजनक जीवन की मांग थी। किसान यह तय करना चाहते थे कि उनकी जमीन पर कौन सी फसल उगाई जाए और उनकी मेहनत का उचित मूल्य उन्हें मिले। दोस्तों, नील विद्रोह ने औपनिवेशिक शासन की उस आर्थिक व्यवस्था को उजागर किया जिसमें भारतीय कृषि को स्थानीय आवश्यकताओं की बजाय साम्राज्यवादी व्यापारिक हितों के अनुसार ढाला जा रहा था। किसानों की जमीन, श्रम और उत्पादन का उपयोग मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए किया जा रहा था। साथियों, नील विद्रोह की सबसे बड़ी सीख यही है कि अन्याय के विरुद्ध संगठित आवाज परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। बंगाल में किसानों ने हथियारों की बड़ी शक्ति के बिना मुख्य रूप से सामाजिक असहयोग और प्रतिरोध के माध्यम से अपने शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी आवाज को पत्रकारों, साहित्यकारों और समाज के अन्य वर्गों ने भी मजबूती दी। इस प्रकार 1859-60 का नील विद्रोह भारतीय इतिहास में किसान चेतना के विकास की एक महत्वपूर्ण घटना था। इसने ब्रिटिश शासन की शोषणकारी कृषि व्यवस्था को चुनौती दी और यह सिद्ध किया कि ग्रामीण भारत के किसान भी अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष कर सकते हैं। तो दोस्तों, नील के खेती से उठी यह आवाज केवल बंगाल के किसानों की आवाज नहीं थी, बल्कि यह उस भारत की आवाज थी जो अपने श्रम, अपनी जमीन और अपने अधिकारों पर नियंत्रण चाहता था। यही कारण है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में नील विद्रोह को आज भी किसान प्रतिरोध और औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, यह थी जानकारी नील विद्रोह के बारे में। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं।

0: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
0: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
1: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाए वहाँ से सामान?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
1: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
4: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9599242404 और 7800037222।
5: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
6: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
7: दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। साथियों, अब वक्त हो चुका है हमारे अगले साप्ताहिक सेगमेंट चक्रव्यूह का। पिछले चक्रव्यूह संख्या 619 में प्रश्न हमने पूछा था, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और ये किस उपलब्धि के याद में मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर है 23 अगस्त, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में। अगला प्रश्न था, भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर बना है और यह किन दो राज्यों को जोड़ता है, जिसका सही उत्तर है लोहित नदी पर, असम और अरुणाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न था, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा किया जाता है, जिसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन द्वारा। अगला प्रश्न था, वर्ष 1930 में हुए चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था और उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था, जिसका सही जवाब है सूर्य सेन ने, उपनाम था मास्टर दा। अगला प्रश्न था, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, जिसका सही जवाब है आर्टिकल 370। अगला प्रश्न था, कौन सा देश पुरुष और महिला दोनों वर्गों के फीफा विश्व कप खिताब को एक साथ अपने नाम करने वाला दुनिया का पहला देश बना, जिसका सही जवाब है स्पेन। अगला प्रश्न था, ग्लासगो 2026 के बाद अगला कॉमनवेल्थ गेम 2030 में कहां आयोजित किया जाएगा, जिसका सही जवाब है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। सही प्रश्नों के जवाब देने वाले हमारे युवा दोस्तों के नाम हैं, दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन नेले नवदीप पेले, और छत्तीसगढ़ कोयलारी से कैलाश चंद्राकर और साथियों ने, गांव परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया और साथियों ने, और सही जवाब हमें भेजे हैं भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और साथियों ने, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे और साथियों ने, छत्तीसगढ़ पथरिया से चंदूलाल सिंह रावल और साथियों ने, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और साथियों ने, और हमारे सही जवाब भेजने वाले श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणेश वर्मा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और साथियों ने, बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू और साथियों ने, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा और साथियों ने, इसी क्रम में नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा और साथियों

भाइयों ने भेजा है हमें सही जवाब। ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और साथियों ने, ग्राम पीपर लोड सर गांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और साथियों ने भी भेजा है हमें। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान और साथियों ने भेजा है। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा और साथियों ने, और सही जवाब भेजने वाले हैं हमें हमारे ईमेल पर। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा और साथियों ने, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया और साथियों ने। दोस्तों अब वक्त हो चुका है हमारे आज के चक्रव्यूह संख्या 620 में पूछे जाने वाले प्रश्नों का। अब आप सब पेन और पेपर लेकर हो जाइए तैयार आज के प्रश्नों को नोट करने के लिए। आप सब इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव द्वारा उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार दिया गया, उस पुरस्कार का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर सुनिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव द्वारा उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार दिया गया, उस पुरस्कार का क्या नाम है। अगला प्रश्न है, एससीओ का पूरा नाम क्या है। प्रश्न एक बार फिर सुने, एससीओ का पूरा नाम क्या है। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किनके बीच हुआ था। दोस्तों प्रश्न एक बार फिर सुनिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किनके बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। दोस्तों प्रश्न एक बार फिर सुनिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। प्रश्न एक बार फिर सुनिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन में है। प्रश्न एक बार फिर सुनिए, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन में है। अगला प्रश्न है, 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा और उसका अंतिम मुकाबला किस टीम से हुआ। दोस्तों एक बार फिर सुनिए, 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा और उसका अंतिम मुकाबला किस टीम से हुआ। दोस्तों आप हमें इन प्रश्नों के सही उत्तर हमारे ईमेल पते पर 7 दिनों के भीतर यानी 7 सितंबर 2026 तक अवश्य भेज दें। हमारा ईमेल पता है yuvaniayodhya@gmail.com yuvaniayodhya@gmail.com। दोस्तों आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, देखते देखते समय अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आइए जानते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में। कल के कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा विश्व नारियल दिवस। व्यक्ति विशेष में बात होगी दादा भाई नवरोजी के बारे में और साप्ताहिक सेगमेंट होगा खेल संसार, जिसमें हम जानेंगे सप्ताह भर की खेल खबरों को, साथ ही सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत संगीत भी। दोस्तों, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं फिर आपके अपने इसी पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने इस दोस्त कृष्ण मणि पांडे को। नमस्कार।

0: अभी युवा साथियों ने सुना अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड, न्यूज ऑन AIR ऐप, वेव्स OTT पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मार। आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: लोक संगीत कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं मालिनी अवस्थी को।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
2: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपने संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान, महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
2: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
3: मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं शारदा सिन्हा को।

अभी आपने सुना लोक संगीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या के इंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड, न्यूज ऑन AIR ऐप, वेब्स OTT पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
2: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित

0: देशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं सरकार ने कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, or SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization, following the summit in Kyrgyzstan today. Mr. Modi expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. He said wars and conflicts are not a solution to any problem and all disputes should be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. Our correspondent reports, India's priorities have found prominent place in the SCO Bishkek Declaration. More from our correspondent.
3: The declaration reaffirmed the idea of one earth, one family, one future for developing dialogue. The declaration also stressed greater scientific, technical and innovative cooperation through active participation of young people, including the SCO Young Scientist Forum, an Indian initiative. Leaders welcomed the SCO Civilization Dialogue Forum to be held in India this year and noted India's initiative of the SCO Young Authors Conclave. Vikalp Shukla, Akashvani News, Bishkek.
2: Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful visit to Kyrgyzstan. The Supreme Court today ordered the closure of FIRs registered across the country over student protests related to the NEET paper leak issue held from 20th to 25th of July. The court directed that the cases should not be pursued or investigated and must be treated as closed for all purposes. The top court also quashed the FIRs related to student protest mentioned in applications filed by the Centre, Delhi Police, Bihar, West Bengal, Maharashtra and Assam. It extended the order across the country. The Apex Court has, however, allowed the Delhi Police to pursue one FIR against 2,873 individuals who were present at Jantar Mantar protest as they had serious criminal antecedents. The bench recorded the statement of Solicitor General Tushar Mehta, who represent

0: harsh action would be taken against them in the future. The government has said that the country has adequate availability of onion and it has begun a calibrated and targeted release of buffer stocks through Kandha Express and road transport to ensure moderation of seasonal price pressures. The Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that retail intervention efforts have expanded significantly across 19 cities, supported by the dispatch of over 30 trucks to ensure widespread availability. The ministry has informed that 2 Kandha Express consignments have been dispatched from Nashik as part of this initiative. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals, effective from the 15th of this month till the 30th of November this year. The new stock limit is aimed at curbing hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability. And the Indian Institute of Mass Communication, IIMC, today conferred its first ever postgraduate degrees on IIS officer trainees, marking a historic milestone as a deemed university. The officer trainees were awarded MA in Public Communication and Governance. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आपने सुना समाचार पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में जिसे हमने अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर लीजिए सुनिए कार्यक्रम शाम सुहानी
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
2: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम
1: शाम सुहानी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर स्वच्छता रहेगी आपके आसपास और आप साफ सफाई रखेंगे तो बीमारियां आपसे दूर रहेंगी

चल रहा हो कार्यक्रम शाम सुहानी, तो ऐसे में आपको आनंद आएगा ही। म्यूजिकल ट्रैक्स का आनंद लेते रहिए और ये जो टिप टिप बारिश की बूंदें हो रही हैं उसका भी आनंद लेते रहिए।

0: संस्कृत सजीव प्रसारण सेवायाम अथ च ऑल इंडिया रेडियो लाइव इति चलदूरभाष अनुप्रयोगे उपलभ्यते येन भारतस्य विश्वस्य च श्रोतारः यत्र कुत्रापि यस्मिन् कस्मिन्नपि समये कार्यक्रमाणां रसास्वादनं कर्तुं शक्नुवन्ति भारत ऋतु विभागेन छत्तीसगढ़ राज्ये प्रतिदिनं अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्ण परा पूर्व संचेतना प्रदत्ता अस्ति हिमाचल प्रदेशे बिहारे मध्य प्रदेशे उत्तर प्रदेशे झारखंडे ओडिशा प्रदेशे उत्तराखंडे पूर्वोत्तर भारतस्य केषुचित् भागेषु च श्वः यावत् प्रचंड वृष्टिः भवितुमर्हति संपूर्णे झारखंड राज्ये प्रचंड वृष्टिः प्रचलति येन राज्यस्य अनेकेषु भागेषु जलाप्लावनस्य आशंका वर्तते ऋतु विभागेन अनेकेषां मण्डलानां कृते नारंग वर्णीया पीतवर्णीया च संचेतना प्रसारिता अग्रिमासु चतुर्विंशति होरासु संभाव्यस्य आकस्मिक जलाप्लावनस्य च सूचना प्रदत्ता अस्ति रांची नगर स्थितस्य ऋतु विभागस्य अनुसारम् अद्य झारखंड राज्यस्य अधिकांश भागेषु मध्यमतः प्रचंड वृष्ट्या सह मेघगर्जनस्य च संभावना अस्ति इति वार्ताः
1: अभी आपने सुना संस्कृत में समाचार जिसे हमने अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 एफएम एंड न्यूज ऑन एआईआर ऐप वेब्स ओटीटी पर स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुंजेश्वर गांव के
2: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामगढ़ चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है कॉल करें 9599242404 और 7800372222
1: गुंजेश्वर गांव के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं ये नशा उन्मूलन गीत

0: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
1: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध न करें।
0: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
1: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
0: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
1: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
0: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मालिनी अवस्थी को।

0: बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
0: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन EIR ऐप पर। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन। 9:15 पर होगा कार्यक्रम महफिल गजल। 9:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। 7:30 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। 8:15 पर होगा कार्यक्रम सुर संगम। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें कल आज की बात का विषय होगा अयोध्या की धरोहरें, समसामयिक आकाशवाणी कैलेंडर के अनुसार होगा। फिल्म संगीत और समाचार पत्रों से आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 9:00। 9:30 पर होगा सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग और 1:00 होगा फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। गीतांजलि आप सुनेंगे कल 2:00 और 2:30 पर होगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगना, जिसमें कल चर्चा होगी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और लल षष्ठी पर। फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोक सुरमाला। 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी, जिसमें कल चर्चा होगी विश्व नारियल दिवस पर और व्यक्ति विशेष में दादा भाई नौरोजी पर बात होगी। खेल संसार आप सुनेंगे और साथ साथ होगा गीत। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। 6:10 पर होगा कार्यक्रम शाम सुहानी। 6:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की। 6:45 पर होगा कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें कल चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। भेंट वार्ता होगी कृषक महिलाओं के लिए मत्स्य पालन में स्वरोजगार के अवसर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर आर्या सिंह, सहायक प्राध्यापक आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। भेंटकर्ता होंगी मंजू मौर्य और होगा लोकगीत बाजार भाव व मौसम। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन। महफिल गजल कार्यक्रम होगा कल 9:15 पर। सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो

साथिया आप सुनेंगे कल रात्रि 9:30 से। ये थी हमारे आज की शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा राष्ट्रीय और नैतिक कर्तव्य है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पढ़िए लिखिए बोलिए और इसे अपनाइए। लाल बहादुर शास्त्री। हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM एंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: पंचो जय हिंद।
1: ओम भैया।
2: हाँ रत्ना बहनी,
1: देखो ये बरखा बूंदी मैया जो है अपने पशुओं का बहुत ध्यान रखा जरूरी रहते हैं।
2: बिल्कुल ध्यान रखे के देखो, जब बरखा मौसम होते तो अच्छा तो बहुत लागत है, लेकिन अपने साथ साथ बहुत बीमारी लेके आते हैं।
1: सही बात कहा, तो वो खास करके जो संक्रमण वाली बीमारी होती है ये बरखा मैया बहुत फैलती है, और कुछ अस बीमारी होती जिनका इलाज नहीं है।
2: देखो इनते बचे खातिर अपने जो हरहा गोरु है उनका नियमित जो है टीकाकरण वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगर नियमित हम पंचे अपने हरहा गोरुन का टीकाकरण कराए रहा तो आवे वाले समय में या जो बीमारी है या जो इस समय जो समय चल रहा है उनमें बीमारी नहीं हो पाती है।
1: उनमें कुछ बीमारी ऐसी है कि अगर वही हुई जाए तो अपने पशु का, जिसे हम पंच मनई में कुछ बीमारी होती है कि उनका इलाज नहीं है, यू ना हो पाओ इसके खातिर हम पंच टीकाकरण कराए के उनका सुरक्षित कर सके थे।
2: हाँ बहनी, और यह चीज यह है देखो, जैसे एक बुखार चलत है लंगड़िया बुखार, वो इतना घातक हो जाते हैं कबो कबो, अगर हम समय तेरे वही क्या बचाव ना करी टीकाकरण के माध्यम से तो बहुत परेशानी हो जाते। तो अगर टीकाकरण करा दो तो भैया ये सब चीजें तेरे अपने हरहा गुरुन का बचाव जा सकते है।
1: सही बात कहा, तो बहुत सारी बीमारी ऐसी है, लंगड़िया है, खुरपका मुँह पखा है, ये सब बीमारी जो है अगर लग जाती है तो नुकसान बहुत होता है। दूसर जो है आपो कहीं कहूँ न कहूँ नुकसान उठाए पड़त है।
2: हाँ, और नुकसान तबह उठाए पड़त है जब हम पंचन कहीं खबरें नहीं पता चल पाती है।
1: सही बात कहा, तो खबरें जरूरी है।
2: आओ जान लीजिए आज की खबरें।
3: उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए योगी सरकार कृषि वानिकी नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभागों को नीति को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। कृषि वानिकी का मतलब है खेतों में फसलों के साथ उपयोगी पेड़ पौधों को भी उगाना। इससे किसानों को फसल के अलावा लकड़ी, फल और दूसरे उत्पादों से अतिरिक्त आमदनी का मौका मिलेगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ प्रदेश में हरित क्षेत्र का विस्तार करना है और लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस नीति के तहत किसानों को बेहतर पौधरोपण तकनीक, बाजार और उचित मूल्य से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा, यानी खेत में फसल के साथ पेड़ भी और पेड़ों से किसान की अतिरिक्त कमाई भी। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश के कृषि वानिकी को बढ़ावा देने की तैयारी है।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: उतना बोल रहे?
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब?
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से।

0: कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग।
1: ये पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: रत्ना बहनी।
5: हाँ ओम भैया।
4: देखो ये बेहरा अपन धान की फसल खेत में खड़ी है, लहलहा रही है।
5: सही बात कहा तो, लेकिन उनके साथ साथ कीट जो है वह बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनका प्रबंधन बहुत जरूरी है।
4: तो रत्ना बहनी, आज की बातें जान लीन जाए डॉक्टर नरेंद्र प्रताप भैया तेरे।
6: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, धान की फसल आपके खेत में खड़ी है तो उसमें कीट रोग प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एलपी मल्ल साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि धान की फसल में कौन कौन से कीट हैं, कौन कौन से रोग हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन।
7: धान की फसल में कीट मुख्य रूप से जो प्रदेश में हमारे लगते हैं उसमें दीमक, पत्ती लपेटक कीट है, फुदका है, तना बेधक है, गंधी बग है।
6: और बीमारियों में?
7: उसके अलावा जो प्रमुख बीमारियां उसमें पत्ती धब्बा रोग है, सीथ ब्लाइट है, झोंका रोग है, उसके बाद बैक्टीरियल ब्लाइट और बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक और फाल्स स्मट।
6: जी,
7: यही मुख्य रूप से बीमारियां हैं जो हमारे प्रदेश में इस समय फसलों में लग रही हैं।
6: तो दीमक से शुरू करें तो दीमक की पहचान हर किसान भाई कर लेते हैं, तो इनसे नुकसान क्या होता है और इनका प्रबंधन कैसे हो?
7: असल में दीमक विशेष करके वहाँ पर इसका प्रकोप होता है जहाँ पर पानी का उथला होता है, जहाँ पर पानी, एक तरह से कहिए कि जहाँ पानी का भराव नहीं होता है या पानी जल्दी उतर जाता है वहाँ पर दीमक का प्रकोप होता है। दीमक ये सफेद रंग का होता है, पंखहीन होता है, असिंचित परिस्थितियों में इस कीट के श्रमिक जड़ों एवं तनों को खाकर पौधों को सुखा देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि खेत में कच्चे गोबर का प्रयोग न करें और अवशेष जो है उसको अच्छी तरह से सड़ा दें, क्योंकि कच्चा जो कहिए सेलुलोज होता है उसी को ये खाता है। और इसके नियंत्रण के लिए ब्यूवेरिया बेसियाना विशेष करके बायोपेस्टिसाइड है, इसका 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम असड़े गोबर में मिलाकर लगभग 10 दिन बाद कई स्थानों पर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर रखने पर उसमें वो आकर्षित होता है और वहीं पर उसको मतलब प्रभावित कर देता है। इसके अलावा अगर हम दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो क्लोरपाइरीफास 20% 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करना चाहिए सिंचाई के पानी के साथ, तो इससे कीट का प्रबंधन हो जाता है।
6: डॉक्टर साहब, हानिकारक कीटों में पत्ती लपेटक भी लगता है?
7: जी जी, इस समय पत्ती लपेटक विशेष करके 15 सितंबर तक बहुत ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। इसमें इसकी सुड़ियां पीले रंग की होती हैं तथा पत्तियों के दोनों किनारों को जोड़कर अंदर रहते हुए पत्ती हरे भाग को खुरच खुरच कर खाती है, जिससे पत्तियों में सफेद रंग की पारदर्शी धारियां बन जाती हैं। अगर इस कीट का प्रकोप हो रहा हो तो खेत में जो प्राकृतिक शत्रु हैं जैसे मकड़ी है, मिरिड बग है, ग्राउंड बीटल है आदि का संरक्षण करना चाहिए। और अगर प्रकोप ज्यादा हो गया तो झरबेरी का जो बेर होता है उससे अगर उस पत्तियों को उस पर घुमा दें तो उसकी पत्तियां खुल जाती हैं और सारे कीड़े जो हैं वो नीचे गिर जाएंगे और इनके प्राकृतिक शत्रु उनको खा जाएंगे। उसके अलावा हम नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल विशेष करके 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम छिड़काव कर दें तो इस कीट का मतलब एक तरह से रिपेलेंट एंटीफिडेंट के कारण उसमें उसका प्रकोप कम होगा। यदि हम दवा का प्रयोग करना चाहते हैं, अगर सारे उपाय हमारे फेल हो गए हैं, तो क्विनाल फास 1.25 लीटर अथवा क्लोरपाइरीफास 1.5 लीटर, ट्राइजोफास 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है।
6: डॉक्टर साहब, धान की फसल की बात चल रही है
7: जी जी,
6: तो फुदकों से काफी नुकसान होता है।
7: विशेष करके भूरा फुदका, हरा फुदका और सफेद पीठ वाला फुदका तीन प्रमुख फुदके हैं, लेकिन इसमें भूरा फुदका सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, विशेष करके वहां पर इसका प्रकोप होता है जहां पानी का भराव होता है वहीं पर। इसके शिश और प्रौढ़ जो भूरे रंग के होते हैं, पंख वाले भी होते हैं, बिना पंख वाले भी होते हैं, और वानस्पतिक अवस्था में गोलाई में इसके प्रकोप से पौधे गोलाई में सूखते हैं जिसे हापर बर्न करते हैं
6: जी।
7: और ये मधुस्राव भी छोड़ता है जिससे पूरी फसल काली हो जाती है और बीज से गोलाई में सूखती है
6: जी।
7: इसके अलावा सफेद पीठ वाला भी फुदका होता है।
6: हाँ।
7: ये भी मतलब उसके शिश और प्रौढ़ उसके रस चूसते हैं और इससे पौधा पीला पड़ के सूख जाता है।
6: और इसी तरह से हरा
7: फुदका भी होता है, ये हरे रंग का होता है और विशेषकर पौड़ के पंखों पर जो होता है इसके काले रंग के लास्ट में एक धब्बा होता है।

0: और ये भी विशेष करके इसका शीश और प्रौढ़ रस चूसते हैं जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और नोक से सूखने लगती है।
1: डॉक्टर साहब, चाहे भूरा फुदका हो, सफेद पीठ वाला फुदका हो या हरा फुदका, इनका प्रबंधन हो कैसे?
0: सबसे पहले इसके अल्टरनेट होस्ट जो होते हैं, मतलब जो उसका मुख्य फसल के अलावा जो खरपतवार होते हैं, खरपतवारों से मुक्त रखना है, उसी पर पलते हैं। पहले भूरे फुदके प्रकोप दशा में समय हो तो खेत का पानी निकाल देना चाहिए, और प्रकोप अगर हो रहा है तो उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और नीम ऑयल 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि 8 से 10 फुदके प्रति झुंड दिखाई दे तो इमिडाक्लोपिड 150 मिलीलीटर अथवा थायोमेथेक्सेम 100 ग्राम अथवा एस्टामिप्रिड 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है।
1: यानी 2.5 एकड़ में,
0: 2.5 एकड़ में यानी प्रति हेक्टेयर। उसके अलावा दानेदार अगर कीटनाशी का हमें प्रयोग करना है तो 2 से 3 इंच पानी में कांटा हाइड्रोक्लोराइड 18 से 20 किलोग्राम और कार्बोफ्यूरान 20 किलोग्राम में से किसी एक रसायन को हम 2 से 3 इंच पानी में अगर हम उसको बुरकाव करें तो इस कीट का भी नियंत्रण कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रहा जो धान में लगने वाले हानिकारक कीट है।
0: जी जी,
1: बीमारियां कौन कौन सी हैं जो धान की फसल की पैदावार प्रभावित कर सकती हैं?
0: इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भूरा काफी देखने को मिलता है। इसमें पत्तियों पर गहरे कत्थई रंग के गोल आकार के अंडाकार धब्बे बनते हैं।
1: डॉक्टर साहब, अगर भूरा धब्बा की शिकायत है धान की फसल में तो उसका प्रबंधन हो कैसे?
0: इस रोग के नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 75% 2 किलोग्राम अथवा थायोफिनेट मिथाइल 70% घुलनशील चूर्ण 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
1: कहीं कहीं शीत ब्लाइट की भी शिकायत आती है।
0: शीत ब्लाइट की शिकायत वहाँ पर आती है जहाँ पर थोड़ा सा पानी का भराव होता है। इसमें देखेंगे तो इसका पत्र कुंचल एन शीत अनियमित आकार के उस पर धब्बे बन जाते हैं जिसका किनारा गहरा भूरा और बीच का भाग हल्का भूरा होता है, और इस रोग का प्रकोप भरे पानी वाले खेतों में अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए यदि संभव हो तो खेत का पानी निकाल देना चाहिए, और रोग के प्रकोप की दशा में कार्बेंडाजिम 50% अथवा थायोफिनेट 70% घुलनशील 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा प्रोपिकोनाजोल 25% इसी 500 मिलीलीटर की दर से छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, धान की फसल में झोंका रोग की भी शिकायत होती है?
0: हाँ, झोंका रोग की भी शिकायत होती है। इस रोग में पत्तियों पर आंख के आकृति यानी धब्बे बन जाते हैं जिसके बीच में राख के रंग के किनारे कत्थई रंग के होते हैं। इसके अतिरिक्त ये डंठलों, बालियों तथा गांठों पर भी इसके काले भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण अथवा थायोफिनेट मिथाइल 70% घुलनशील चूर्ण 1 किलोग्राम अथवा हेक्साकोनाजोल 5% इसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, धान की फसल में मिथ्या कंडुआ यानी फाल्स स्मट की समस्या आ रही है?
0: जी जी, विशेष करके ये देखने मिला है कि जो हाइब्रिड धान है उसमें ज्यादा ये समस्या देखने को मिल रही है। इस रोग में बाली निकलने के बाद कुछ दानों के स्थान पर पीले रंग का पाउडर भर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में यदि संभव हो तो प्रभावित बालियां को तोड़कर उसको इकट्ठा करके बाहर नष्ट कर देना चाहिए, और खड़ी फसल में कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण 500 ग्राम अथवा कापर हाइड्रोक्साइड 77% WP 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8004376051 800-43-76-051 800-43-76-051। किसान भाई अपने खेत की निगरानी करते रहें और इसमें मित्र कीटों का भी ध्यान रखें। उसमें यदि 2 भाग शत्रु है और 1 भाग मित्र कीट है तो हमें दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवा का प्रयोग करना है उसको आखिरी विकल्प के रूप में करना चाहिए, पहले जैविक कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए।
1: डॉक्टर NP मल्ल साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया, कार्यक्रम में यहाँ अति सब जानकारी तो मिली। हाँ। लेकिन गौनई कोई नहीं सुनक मिली।
3: अरे रत्ना बहनी, देखो अपने तखत पर यहाँ बाजा धरा हो और मूंगफली खात हो, चबैना चबात हो, ख्यात के काम करके लौटो और गौनई सुनक मिल जाते तो जू एकदम प्रसन्न हो जाते।
2: सही बात कहा था, तो काहे ना पंच भाई बहन इनका एक गौनई सुनवा दें जाए।
3: हाँ, तो चंद्रभूषण तिवारी भैया के स्वर में यह है विकास गीत, और सुना जाए। पंचो भाई सुने, आनंद ले।

0: हम भैया।
1: हाँ रत्नावेणी।
0: देखो बहुत जने बढ़िया खेती करते हैं, लगते हैं कि जैसे उनका देख के हम अपन कुछ सीखी और वैसे अपन काम निक निक करी, तो एक खातिर जो है आज के किसान भैया आए हैं, वो भी बता रहे हैं अपने बारे में।
1: हाँ तो उनकी कहानी जान लीजिए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं गोंडा जनपद के रुपईडीह ब्लॉक के पूरे चैन कुंवर गांव के अनिल चंद्र पांडे भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप सफसली खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: डॉक्टर साहब मेरी पढ़ाई लिखाई आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया, उसके बाद में फिर हम गांव गए तो देखा खेती पाती हमारी बहुत अव्यवस्थित थी, तो हमने सोचा कि नौकरी ढूंढने के बजाय क्यों ना हम खेती पाती पर अपने ध्यान दें, तो खेती पाती अपने पास पर्याप्त मात्रा में थी तो इसी से अपने गांव का भी देख रेख करते रहे, गांव वालों के साथ में रहेंगे, माता पिता का देख रेख करते रहेंगे।
2: तो ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: पहले जब हम खेती करना शुरू किए थे तो हमारे पास 7 एकड़ थी, 4 एकड़ जमीन हमने खरीदी है, अब इस वक्त हमारे पास 11 एकड़ है और लीज पर हमने लगभग 25 एकड़ जमीन ले रखी है।
2: तो कौन कौन सा फसल चक्र अपनाते हैं?
3: फसल चक्र में हम पहले गर्मी में धान लगाते हैं, धान के बाद फिर इधर आलू और गन्ना और आलू और चना, आलू और सरसों, आलू और मसूर सब लगाते हैं, साथ में सह फसली खेती करते हैं सारी।
2: और मिठास का भी उत्पादन करते हैं?
3: हाँ गन्ने का उत्पादन करते हैं, गन्ने के साथ सह फसली करते हैं और ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिसमें एक फसल दूसरे फसल को नुकसान ना करे, नुकसान के बजाय

0: ज्यादातर फायदा करे।
1: तो शरतकालीन गन्ने की बुआई का समय आ रहा है, क्या तैयारी है आप?
0: शरतकालीन में गन्ना बोने के लिए हमने अपने खेत में जो अगेती वैरायटी की धान और थोड़ा समय से पहले नर्सरी डाल दी थी, कुछ खेतों में सीधी बुआई भी की थी हमने। खेत तैयार करने के बाद उसमें हम गन्ना और आलू, गन्ना और चना, गन्ना और मसूर, गन्ना और सरसों ये सब लगाएंगे।
1: यानी मुख्य फसल गन्ने की होगी, उसके साथ साथ फसली खेती में आलू होगा, चना होगा, मसूर होगी, सरसों होगी।
0: डॉक्टर साहब मुख्य फसल दोनों ही हैं, उसमें अपने जो क्षमता है उन फसलों की उससे वो कम उत्पादन नहीं देती हैं। जैसे आलू हमने लगाया था, कई साल पहले से लगा रहे हैं, तो आलू में 175 कुंटल एकड़ तक उत्पादन हमने लिया है, जो आलू की उत्पादन क्षमता इतनी ही होती है, तो पूरा आलू भी उत्पादन लिया है।
1: और मिठास की फसल
0: और गन्ना।

0: मुख्य फसल गन्ने की होगी, उसके साथ साथ फसली खेती में आलू होगा, चना होगा, मसूर होगी, सरसों होगी।
1: डॉक्टर साहब, मुख्य फसल दोनों ही हैं, उसमें अपने जो क्षमता है उन फसलों की उससे वो कम उत्पादन नहीं देती हैं। जैसे आलू हमने लगाया था, कई साल पहले से लगा रहे हैं, तो आलू में 175 कुंटल एकड़ तक उत्पादन हमने लिया है, जो आलू की उत्पादन क्षमता इतनी ही होती है, तो पूरा आलू भी उत्पादन लिया है।
0: और मिठास की फसल
1: और गन्ना में हमने 600 कुंटल प्रति एकड़ तक निकाला है, तो दोनों फसलें बराबर अपने क्षमता के अनुसार पैदा हो जा रही हैं, तो उसमें मुख्य फसल कोई नहीं, दोनों फसलें मुख्य होती हैं, दोनों उत्पादन बराबर दे जाती हैं।
0: तो जहां गन्ने के साथ आलू की सफसली खेती की तैयारी है, तो बुआई और बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और आलू की खुदाई और फिर गन्ने की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
1: धान कटने के बाद उस खेत की हम गहरी जुताई करते हैं। गहरी जुताई करने के बाद उसमें ट्राइकोडर्मा और बबेरिया बेसियाना दोनों डालते हैं।
0: गोबर की सड़ी खाद
1: के साथ ट्राइकोडर्मा और बबेरिया बेसियाना डालते हैं, जिससे हमें कीटनाशक और फफूंदी नाशक नहीं डालना पड़ता है। लगभग वही जब आलू झुलसने का टाइम आता है तब डालना पड़ता है, और हम गन्ने में और आलू में कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल बबेरिया बेसियाना का प्रयोग करते हैं। तो जब हम जुताई करने के बाद ट्राइकोडर्मा और बबेरिया बेसियाना डाल देते हैं।
0: एकड़ पीछे कितना प्रयोग करते हैं?
1: एकड़ पीछे 2 किलो ट्राइकोडर्मा और 2 किलो बबेरिया बेसियाना डालते हैं।
0: और लगभग 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में मिला दे?
1: हाँ, 2 किलो ट्राइकोडर्मा 50 किलो सड़ी गोबर की खाद में और 2 किलो बबेरिया बेसियाना 50 किलो सड़ी गोबर की खाद में मिला देते हैं। शाम के समय उसको डाल के फिर रात में ही जुताई कर देते हैं, क्यों उसमें धूप ना लगने पाए।
0: जी, और फिर गन्ने के साथ जहाँ आलू की सफसली खेती है, तो वैरायटी का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है।
1: ख्याति एक वैरायटी है, और ख्याति ये वैरायटी ज्यादा टेम्परेचर में, जैसे हमें आलू अगर केवल लगाना हुआ तो देर में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आलू जल्दी लगाना होता है तो टेम्परेचर सहने वाली वैरायटी होनी चाहिए। तो इसमें अगले साल मैं एक कुफरी नीलकंठ लाया था, तो वो भी काफी टेम्परेचर में जमा उसका अच्छा हुआ था, और कुफरी ख्याति जो है इसका भी काफी टेम्परेचर में जमा अच्छा होता है, दोनों का उत्पादन भी बहुत अच्छा है।
0: और गन्ने की कौन सी प्रजाति?
1: गन्ने में तो हम अगले साल हमने 16202, 15023 और 14201 ये 3 वैरायटियां लगाई थी।
0: तो फिर बुआई में कौन कौन सी बारीकी करते हैं? 2 गन्ने की लाइनों के बीच में कितनी आलू की लाइनें होती हैं?
1: 2 गन्ने की लाइनों के बीच में 1 लाइन आलू की लगाते हैं, लेकिन आलू थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि 2 लाइन लगाएं, लेकिन 2 लाइन के लिए हमें मशीन लानी पड़ेगी। इस साल बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मशीन बनी है कुछ जगहों पर, तो देख रहे हैं अगर वो मशीन आ जाएगी तो 2 लाइन करेंगे। वैसे 1 लाइन लगाते हैं, उत्पादन तो पूरा आता है, लेकिन साइज बड़ी हो जाती है आलू की। और 4 फीट पर गन्ने से गन्ने की दूरी और 4 फीट पर आलू से आलू की दूरी करते हैं हम।
0: तो फसल की भूख मिटाने के लिए कितनी मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रबंधन करते हैं?
1: फसली में डॉक्टर साहब, आलू और गन्ना दोनों अच्छी खादों वाली फसलें हैं, ज्यादा खाद चाहती हैं, तो इसमें जितना गन्ने के लिए रिकमेंडेड है उतना गन्ने में डालते हैं, जितना आलू के लिए रिकमेंडेड है उतना आलू में डालते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, दोनों की खादें अलग अलग पड़ती हैं, क्योंकि फसली में कोई भी जब आप लगाओगे तो ज्यादा खाद लेने वाली फसलें हैं, अगर उनको खाद कम कर दोगे तो उत्पादन घट जाएगा।
0: यानी दोनों की भूख मिटाने के लिए जितनी संस्तुत मात्रा है
1: जी
0: उसका प्रयोग करते हैं।
1: फिर
0: खड़ी फसल में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं फसली खेती में? गन्ने के साथ आलू
1: अगर सितंबर अक्टूबर में बोते हैं तो 1 हफ्ते में गन्ना जमाता है। गन्ने का शोधन जरूर करना चाहिए, गन्ने का शोधन नहीं करेंगे अगर हल्का भी पानी बरसा या ना भी बरसा तो जमाव खराब हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आलू और गन्ने के दोनों के बीजों का शोधन करें।
0: कैसे करते हैं?
1: एक दवा है एक्सा टॉप करके, तो उससे हम गन्ने के टुकड़े को उसमें डुबो लेते हैं और आलू को भी उसी में डुबो लेते हैं। और आलू और गन्ना बोने में जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो सबसे मुख्य बात यह है कि खेत जोतने के बाद तुरंत आलू बोना होता है। अगर आप खेत की जुताई किए और आलू का खेत सूख गया, ऊपर धूल आ गई, का आलू सड़ने लगेगा, तो एकदम हरा खेत होना चाहिए। तुरंत जुताई करके तुरंत आलू की बुआई शुरू कर दी जाए कि आलू के पास एकदम से नमी रहे, सूखी मिट्टी न जाए। और गन्ने में तो आलू बोने के बाद फिर गन्ना डाल के लाइन में उसमें हल्की मिट्टी गिरा देते हैं।
0: और फिर क्या मेड़बंदी?
1: नहीं, मेड़ उसमें बनी रहती है आलू में। जब हम आलू में बोते हैं एक डोरी रखते हैं, उसी के सहारे किनारे आलू रख देते हैं, फिर हमने टंच प्लांटर एक ले रख

0: खा जो 4 फीट पर मिट्टी दोनों तरफ से एकदम से बीज में पहुंचा देता है। उस टन प्लांटर से उसको आलू की लाइन को बीच में करके लाइन से टन से खींच देते हैं तो वो आलू ढक जाता है। फिर बगल जो मिट्टी गिरती है उसी के बगल मिट्टी रखे फिर एक कूड़ में ट्रैक्टर चलाते हैं, जो एक नाली बनती है एक बाहर करते हैं, ऐसे करते जाते हैं। तो हमारे केवल आलू रखने के लिए मजदूर रखना पड़ता है, मिट्टी चढ़ाने के लिए मजदूर नहीं रखना पड़ता, ट्रैक्टर से चढ़ जाती है।
1: तो जो अब तक का आपका तजुर्बा है सफसली खेती का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: पिछले साल हमने पेड़ी में भी साफ फसली खेती की थी। पेड़ी काट कर उसमें बुआई करके लाइन बना दी तो लाइन से पानी देते थे बीच में कुंड से, तो उसमें हमने पेड़ी के खेत में चना सरसों और गोभी लगाई थी तो पेड़ी में भी हम साफ फसली लेने लगे हैं। हम सलाह यही देंगे कि अगर किसानों को खुशहाल रहना है और खुशहाल रहने के लिए साफ फसली खेती ही एक ऐसा उपाय है जो आपको घाटे से बचा सकती है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 9125086048, 9125086048।
1: अनिल चंद्र पांडे भैया आज आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: बहनी
6: हाँ भैया,
5: देखो अपन जो खेती होते वह मौसम पर आधारित होते, और अगर हम पंचन के यहाँ मौसम के हाल पता चल जाते तो हम पंचे जो अपनी खेती में आगे का काम होते वो बड़ी आसानी थे, बड़े ढंग से कर पाए थे।
6: तो वही के खातिर मौसम की जानकारी देवा दीन जाए। मौसम की जानकारी जो प्राप्त हुई है भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 1 सितम्बर से लगाए के 7 सितम्बर तक में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहूँ कहूँ स्थान पर बरखा होए की संभावना है। और जो चेतावनी की बात की जाए भैया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 तारीख से लगा के 5 तारीख तक भारी से अत्यधिक भारी बरखा होए की संभावना है, और बाकी 6 और 7 तारीख का कोई चेतावनी नहीं है।
5: रत्ना बहनी देखो पंच भाई अपन कार्यक्रम सुनत है, उनका कई स्वागत है, अपन प्रतिक्रिया बतावे खातिर वे अपन पता नोट कर ले, अपन प्रतिक्रिया दे तो पता बताए दो।
6: तो पता है कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाड़ी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन है 226001।
5: और जो अपने कार्यक्रम का ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com, तो ऐप पर अपन प्रतिक्रिया भेजो भैया, ऐसे ही सुनते रहो कार्यक्रम किसानवाड़ी। अब देखो बिरिया हो रही है, पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इस कार्यक्रम को हमने अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 101.9 FM बैंड, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर।

महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड, न्यूज ऑन AIR ऐप, वेब्स, OTT पर। अब से कुछ ही पलों में ही आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 19 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर 4 घंटे में मुआवजा देने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के MSME अवार्ड समारोह में की शिरकत। कहा, विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है MSME सेक्टर। रेलवे ने मुरादाबाद संभाग के 712 किलोमीटर मार्ग के लिए कवच योजना के तहत 170 करोड़ रुपए किए मंजूर। इस कदम से और सुरक्षित होगी रेल यात्रा। और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर की 2000 क्विंटल। प्याज के दामों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षित भंडार से राज्यों को की जा रही सप्लाई। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में बारिश से होने वाली जनहानि, पशुहानि और आर्थिक हानि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्षा, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान का आकलन कर 2 से 4 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन, राहत सामग्री और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 549 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और 248 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित निकालने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए 552 नाव और मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावितों के लिए 312 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इन राहत शिविरों में करीब 1700 लोग रह रहे हैं। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: उधर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और NDRF की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। रसिन डैम का जलस्तर स्थिर रखने के लिए पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण बाढ़ गंगा नदी के डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने जनपद वासियों को बाढ़ गंगा और बागेन नदी के किनारे, घाटों और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। उधर वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गई है। प्रशासन की ओर से गंगा और वरुड़ा के तटवर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। वरुड़ा के जल भरवाव से प्रभावित कुछ परिवारों को पहले ही राहत शिविरों में रखा गया है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए NDRF, जल पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम समेत संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। पीलीभीत में भारी बारिश और बनबसा बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर है। ट्रांस शारदा क्षेत्र में फसलें और संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं।

0: देवहा नदी की बाढ़ से कई गांवों के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। भारी बारिश को देखते हुए चित्रकूट और पीलीभीत में कक्षा 8 तक के स्कूलों में कल अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के आर्थिक वृद्धि को 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाने वाला बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, निर्णायक नीतियों ने देश की आर्थिक नींव को मजबूत किया है और वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित एमएसएमई अवार्ड समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एमएसएमई विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत देश की संकल्पना नहीं है, बल्कि ऐसे राष्ट्र के निर्माण का लक्ष्य है जो मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक में अग्रणी हो और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर सके।
2: विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि एमएसएमईज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक रूप से मजबूत भारत ही नहीं होता है, बल्कि ऐसा भारत है जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली कम्पिटिटिव हो, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी हो, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करे और अपनी स्ट्रेटेजिक तथा इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में भी वह आत्मनिर्भर।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 UPPET के लिए पंजीकरण, शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दी है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। यह असुरक्षित स्थितियों को टालने के लिए आवश्यक होने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाता है, गंभीर परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है और टक्कर के जोखिम को काफी कम करता है। यह पहल रेलवे सिग्नलिंग और ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। उधर देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: चीनी के भंडारण की नई सीमा इसी महीने की 15 तारीख से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक

0: चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। उधर प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है, जिसे दिल्ली NCR, वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर में वितरित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार में प्याज आते ही कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में दाम और कम होंगे। रेल मार्ग से प्याज की सुरक्षित आपूर्ति के लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: कौशाम्बी के मोहम्मदपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मामले में पुलिस ने आज सुबह एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने फरार चल रहे तीन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 19 जिले बाढ़ से प्रभावित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर 4 घंटे में मुआवजा देने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के MSME अवार्ड समारोह में की शिरकत। कहा, विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है MSME सेक्टर। रेलवे ने मुरादाबाद संभाग के 712 किलोमीटर मार्ग के लिए कवच योजना के तहत 170 करोड़ रुपए किए मंजूर। इस कदम से और सुरक्षित होगी रेल यात्रा। और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर की 2000 क्विंटल। प्याज के दामों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षित भंडार से राज्यों को की जा रही सप्लाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आपने सुना प्रादेशिक समाचार, जिसे हमने अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के अयोध्या के इंद्र से बोल रहे हैं। 101.9 FM बैंड, न्यूज ऑन AIR ऐप, वेब्स, OTT पर। लीजिए सुनिए मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर के स्वर में, शैलेंद्र के बोल, और संगीत था शंकर जयकिशन का।

जाबाज फिल्म से हमने इस गीत को लिया था। स्वर किशोर कुमार और सपना मुखर्जी के थे। गीत के बोल इंदीवर के थे और संगीत से धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला अब यहीं पर संपन्न होता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं इंद्रधनुष पॉप एक्सप्रेस।

नेहा कक्कड़, बेनी दयाल, ब्रजेश शांडिल्य और बादशाह के स्वर में अभी आपने सुना भूमि फिल्म का गीत। प्रिया सारिया के बोल थे और सचिन जिगर का था संगीत।

एल्बम नाच मेरी रानी, इसमें आवाजें थी गुरु रंधावा और निकिता गांधी की। तनिष्क बागची के गीत और संगीत में आपने ये गीत सुना।

सचेत टंडन की आवाज में इस गीत को हमने लिया था एल्बम कांधे का वो दिल से। कुमार के बोलों को सुरों में पिरोया था मनन भारद्वाज ने।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं एन आर टंडन का लिखा प्रहसन विवाह यंत्र। आज प्रसारित होगा इसका पहला भाग। निर्देशक हैं मुख्तार अहमद।
1: वाग्दान, वाह वाह वाह वाह, क्या नई सूझ है सचमुच जनसेवक। तुम्हारा आंदोलन सफल रहा तो विद्यादान, द्रव्यदान, वस्त्रदान, अन्नदान, भूदान, श्रमदान और शवदान आदि सब दानों को पीछे छोड़ जाएगा।
2: शांति दत्त का मकान कहाँ रह गया? बातों बातों में हम आगे तो नहीं निकल आए?
1: अरे नहीं यार, हम शांति दत्त जी के मकान के सामने ही तो खड़े हैं। अम्मा उधर बाई ओर देखो ना, ये क्यों भूल गए कि हम नवल किशोर रोड से नहीं हजरतगंज की ओर से गली में घुसे हैं।
2: अरे सच, ये चेतावनी कैसी? खतरा, जानवरों और मित्रों के लिए जान का, अनजानों के लिए प्यार का, इसका क्या अभिप्राय हुआ केशव सुन?
1: झक्की है, कोई ना कोई झक सवार रहती है भाई को। भाई सुना है आजकल सुधारक यंत्रों के आविष्कार में लगे हुए हैं, वैज्ञानिक महाशय उसी से संबंधित कुछ ना कुछ।
2: समाज सुधारक यंत्र? यानी कि अब समाज सुधार भी यंत्रों से होने लगेंगे?
1: बात आश्चर्यजनक अवश्य है पर असंभव नहीं। जन सेवक आज क्या छूटा रह गया है मानव से। अम्मा खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कॉल बेल का बटन दबा।
2: मार ढाला, तुम दबाओ। अरे यार, कॉल बेल के बटन में शॉर्ट सर्किट मालूम होता है, हाथ लगाने से करंट मारता है।
1: तो फिर आवाज दो।
2: अरे भाई शांति, शांति, शांति।
3: आप बदतमीज हैं, जाहिल हैं, आगे बढ़िए। आप बदतमीज हैं, जाहिल हैं, आगे बढ़िए। आप बदतमीज हैं, जाहिल हैं, आगे बढ़िए।
2: अरे यार केशव सुत, क्या बला है? ये शांति दत्त का मकान है या भूतों का डेरा?
1: भाई मैं तो स्वयं चकित हूँ, किसे पूछा जाए। भाई साहब, भाई साहेब, भाई साहब जरा यहाँ आइएगा। क्षमा कीजिएगा, शांति दत्त जी का निवास स्थान यही है ना?
4: जी हाँ, उनके नाम का फट्टा नहीं देख रहे आप?
1: अरे साहब, नाम का फट्टा तो जरूर देख रहे हैं पर यहाँ तो कॉल बेल का बटन दबाते हैं तो झटका लगता है, आवाज देते हैं तो गालियां मिलती हैं।
4: क्षमा कीजिए, आप प्रोफेसर साहब के गहरे दोस्त या संबंधी तो नहीं है?
1: जी
2: हाँ है, है। हम उनके क्लास फेलो हैं, लंगोटी है यार।
4: तब आप कान दबा कर निकल जाइए, नहीं तो आपकी जान का खतरा है। देखते नहीं वो क्या लिखा है?
1: अरे भाई साहब, लिखा हुआ तो पढ़ रहे हैं पर ये मित्रों और जानकारों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों?
4: क्षमा कीजिएगा, मित्र और जानकार कुछ ज्यादा बेतकल्लुफ होते हैं और कई बार उनकी बेतकल्लुफी बदतमीजी में बदल जाती है, जो तमीजदार आदमी को जरा खटकती है।
2: लेकिन हमने तो कोई बदतमीजी नहीं की, कॉलेज में तो हम उसे उल्लू के सिवाय दूसरे नाम से

0: पुकारते ही नहीं थे। यहाँ तो बकायदा उसके असली नाम से पुकारा हमने।
1: आपसे जरूर कोई भूल हुई है। देखिए, आपने कॉल बेल का बटन कहीं जोर से तो नहीं दबा दिया था?
0: भाई, दबाया तो जोर से ही था।
1: बस तो फिर ठीक है, ठीक झटका आपको लगा। सभ्यता कहती है श्रीमान जी कि आप किसी के घर जाएं तो तमीज से आवाज दें, हल्के घंटी बजाएं और उसे लगातार बजाते ही न चले जाएं, घंटी का बटन दबाएं और इंतजार करें।
2: भाई, ये बात तो ठीक है जन सेवक। ये गालियां भी शायद इसीलिए पड़ी कि तुमने बेतकल्लुफी से केवल शांति कहकर पुकारा। अरे भैया, वो MSc हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जरा सम्मान से नाम लेना चाहिए था हमें उनका।
1: जी हाँ, देखिए मैं खुलवाता हूँ दरवाजा। देखिए, ऐसे बटन दबाएं। देखिए, बजी ना घंटी, अभी जवाब मिलेगा।
3: कौन साहब है, कौन साहब है, कौन साहब है?
2: जी हम हैं, श्रीमान प्रोफेसर शांति दत्त जी, MSc के इष्ट मित्र। उनसे मिलने की इच्छा से कानपुर से आए हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उनका अधिक समय नष्ट नहीं करेंगे और चाय आदि भी नहीं पियेंगे।
3: आप धीरे से दरवाजा खोलकर भीतर आ जाइए। देखिए, सभ्यता से काम लीजिएगा वरना जान का खतरा है।
0: मैं तो कहता हूँ शांति दत्त से मिलने का विचार ही छोड़ दो, यहाँ तो कदम कदम पर खतरा है, कहीं सारा घर ही विद्युतमय ना हो।
2: अरे ऐसी कोई बात नहीं है, क्या 5-10 मिनट के लिए भी सभ्य नहीं बन सकते? हाँ, खोलो दरवाजा, जरा धीरे से।
4: जूते यहाँ उतारिए।
0: अम्मा उतार तो रहे हैं, अब चुप ही हो जाओ। अरे अरे भाई शांति दत्त जी, आप कहाँ, यानी कि
5: आओ आओ जन सेवक आओ। ओ, केशव सुत भी साथ हैं। अरे जूते हाथ में क्यों लिए खड़े हो? उन्हें वहां शू रैक में रख दो और निश्चिंत होकर चले आओ। हाँ तो सुनाओ, क्या कर रहे हो आजकल?
0: वही जो कॉलेज में क्या करते थे।
5: यानी कि जन सेवा। और हाँ, तुम्हारी साहित्य चर्चा का क्या हाल है केशव सुत? सुना है बड़े जोरदार लेख लिख रहे हो आजकल।
2: पर अब ये लेख कहाँ चलेंगे? शांति, हमारी और जन सेवक की रोटी तो गई समझो।
5: क्यों?
2: सुनो भैया, तुम विज्ञान को समाज सेवा की ट्रेनिंग दे रहे हो, समाज सुधारक यंत्र बना रहे हो।
5: तुमने ठीक सुना है केशव सुत, भाई साहित्य और प्रवचनों से अब हमारा सुधार होना असंभव है। मेरे विचार में तो केवल यंत्र ही अब हमारा सुधार कर सकते हैं।
0: तुम्हारा विचार ठीक है शांति दत्त, और देखता हूँ कि इस क्षेत्र में तुम्हें पर्याप्त सफलता भी मिली है। कम से कम समाज के 2 व्यक्तियों को तो आज ही सुधार दिया तुमने।
5: अब क्या किया जाए केशव सुत, देखो ना, जूते साफ करने के लिए पायदान रखा हुआ है और कोई भी जूते की तरी झाड़कर कमरे में नहीं आता। नए नए दरी और कालीन मित्रों के गंदे जूते से खराब हो गए। इतना ही नहीं, कोई कोई तो पढ़ने और खाने की मेजों और पलंगों पर भी पांव रखकर बैठने लगे। तब तंग आकर जूता यहां निकालो यंत्र का आविष्कार किया है, और अब यदि 3 बार कहने पर कोई जूता उतारने में आनाकानी करेगा तो उसे फर्श को सलामी देनी है। और हाँ, बहुत जल्द ही मैं एक सड़क कानून यंत्र भी बनाने जा रहा हूं, जिससे ट्रैफिक के सिपाहियों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और एक्सीडेंट भी ना होंगे, और यदि होंगे भी तो उनके ही जो सड़क के कानून को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे।
2: धन्य हो तुम शांति दत्त, तुम धन्य हो। तुम्हारे ये यंत्र साहित्यकों और समाज सुधारकों के लिए चुनौती हैं। जिस काम में साहित्य और भाषण असफल रहे वो तुमने यंत्र द्वारा कर दिखाया। सचमुच आज विज्ञान से मानव के विनाश के स्थान पर उसका उत्थान ही अपेक्षित है।
5: भाई, समाज सुधारक यंत्रों में सबसे उपयोगी यंत्र जिसके बनाने में मैं सफल भी हो गया हूँ, वो है विवाह यंत्र।
2: विवाह यंत्र? विवाह यंत्र? ये क्या यंत्र है भाई?
5: ये यंत्र विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान करके सामाजिक जीवन को सुखी बनाएगा। भाई, मेरी धारणा है कि देश को समुन्नत बनाने के लिए सुखी गृहस्थ जीवन अनिवार्य है। मानव का विकास केवल इस कारण से रुक जाता है कि उसके घर में, जहां उसका अधिकांश समय व्यतीत होता है, उसे अपनी रुचि के अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, और इसका मुख्य कारण है पति पत्नी के स्वभाव और अभिरुचि में अंतर और असमंजस्य। विवाह यंत्र बेजोड़ विवाहों को रोककर दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने में सहायक होगा।
2: भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: बंधु, यह अनोखा आविष्कार हमें भी तो दिखाओ।
5: हाँ, मेरे साथ मेरे अन्वेषण कक्ष में आओ। लो, यहां बैठो, ये देखो।

0: विवाह यंत्र दिखाने से पहले मैं तुम्हें भारतीय सामाजिक जीवन की कुछ झांकियां दिखाता हूं।
1: अरे ये क्या, तुमने तो घर में ही बायोस्कोप का प्रबंध किया हुआ है।
0: हाँ, विवाह संबंधी समस्याओं को समझने के लिए मैंने पारिवारिक जीवन के कुछ सच्चे दृश्य चलचित्रों के रूप में एकत्रित किए हैं।
2: क्यों भाई, अकेले ही आए? भाभी साथ नहीं आई?
3: उन्हें सनीमा का शौक नहीं हरी बाबू।
2: अरे क्यों बहाने बनाते हो, यूं कहो कि वो इस काबिल ही नहीं कि तुम्हारे साथ बाहर निकल सके। तुमने भी क्या पत्थर गले में बांध लिया है, तुम नई रोशनी के पढ़े लिखे और पत्नी मिली एकदम देहात की।
3: क्या कहूं दोस्त,

0: के और पत्नी मिली एकदम देहात की।
1: क्या कहूँ दोस्त, किस्मत में जो बदा था हो गया।
0: भाई तुम्हारे विवाह से तुम्हें कुछ लाभ हुआ हो या नहीं, पर मैंने तुम्हारे कुलपति गृहस्थ जीवन से बहुत कुछ सीखा।
1: वो क्या?
0: विवाह ना करो।
1: हरी
0: हारे भैया, विवाह एक जुआ है, पासा ठीक पड़ा तो ठीक, नहीं तो सारा जीवन ही बैठ कर रह जाता है मनुष्य का।

0: मैंने क्या बंद करवा दीजिए, कहाँ है? अरे देखती नहीं मैं कविता लिख रहा हूँ।
1: मैं तुम्हारे हाथ से कलम छीन रही हूँ क्या? तुम करते रहो अपनी कविता।
0: अरे भाई इतने सुर में कविता लिखी जा सकती है कहीं? अरे कल्पना ही नहीं बन रही है।
1: मगज में कुछ होगा तो कल्पना बनेगी ना। लोग ढोल नगारों के बीच कविता लिख लेते हैं, यहाँ भजन भी अखर रहा है तुम्हें।
0: अरे अरे अरे अरे अरे नीलिमा देखो देखो नीलिमा, हाँ बुरा बोलोगी तो बुरा ही सुनोगी।
1: तो लो तुम करते रहो अपनी कला की उन्नति, इस घर में या कविता रहेगी या गायिका।
0: अरे अरे सुनो, अरे अरे नीलिमा।
2: क्या कहा, शादी नहीं करोगे?
3: नहीं नहीं नहीं, कह तो दिया माँ मैं शादी नहीं करूँगा।
2: लेकिन क्यों?
3: मैं ये जुआ नहीं खेलूँगा।
2: क्या कहा, विवाह को तुम जुआ कहते हो?
3: हाँ माँ, विवाह जुआ ही तो है।
2: हाय हाय तुम क्या कह रहे हो बेटा, मैं क्या बिना बहू के रहूँगी?
3: नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा।
4: बेटी है माँ, आखिर शादी से इनकार की कोई वजह भी हो, कहीं हमारा मुंह तो काला नहीं करोगी?
5: पिताजी आप अपनी बेटी को गलत न समझिए, जीजी के गृहस्त जीवन ने मेरी आंखें खोल दी हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी दूसरी बेटी भी हर रोज आपके दरवाजे पर पड़ी रहा करे?
4: उसका भाग्य उसके साथ बेटी, अब हमने तो इतनी जांच पड़ताल के बाद रिश्ता तय किया था, लता की रुचि ही रमेश से नहीं मिलेगी ये कौन जानता था।

विवाह यंत्र। अभी आपने ये एनआर टंडन द्वारा लिखित प्रहसन सुना। आज प्रसारित हुआ इसका पहला भाग। दूसरा भाग आप सुनेंगे कल हवा महल में। इसके निर्देशक मुख्तार अहमद। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या के इंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड, न्यूज ऑन AIR ऐप, वेब्स OTT पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीत गुंजन।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
2: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: गीत गुंजन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, हम देखते हैं अक्सर फोन का उपयोग अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। हम सोने जाते हैं तो फोन देखने के बाद ही सोते हैं और सोकर उठते हैं तो तुरंत फोन पे नजर जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सोने से कुछ देर पहले फोन ऑफ कर देना चाहिए या फिर उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, या सो के उठते ही तुरंत उसका उपयोग करना हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

मोबाइल का उपयोग अधिक अगर हम करते हैं तो आंखों के अलावा हमारे ऊपर उसका अलग भी असर पड़ता है। कई बार अक्सर होता है, हम अगर एक रील कोई अच्छी लगी देखते हैं और उसको स्क्रॉल करते हैं तो कब हम घंटों रील को स्क्रॉल करते बिता देते हैं इस बात का हमको पता भी नहीं चलता है, और इससे हमारा समय जो बहुत कीमती है वो बर्बाद होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, उपयोग करिए, लेकिन एक सीमित दायरे में मोबाइल का उपयोग करिए।

0: Hello.
1: Hello. Suno. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
4: गीत गुंजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गणेश सिंह के साथ। कार्यक्रम में बने रहिए। श्रोताओं, हम आपसे बात कर रहे हैं मोबाइल फोन के उपयोग के बारे में, जहां आंखों पर प्रभाव डालता है मोबाइल फोन और समय की भी बर्बादी कभी कभी होती है अगर हम अनायास स्क्रॉल करते हैं रील्स को। वहीं हम अगर बहुत ज्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं तो हमें ये डिप्रेशन में भी ले जाता है। इसलिए हमें मोबाइल का उपयोग बहुत ही सावधानी के साथ और जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए।

अभी आपने सुना कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड, न्यूज ऑन AIR ऐप, वेब्स, OTT पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज एट 9 हमारे दिल्ली के।

0: शीघ्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities

0: communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
3: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
4: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
5: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
4: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के दमबन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारम्भ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: माँ ये मोटा चश्मा कब उतरेगा?
4: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है,
5: मुझे तो मोतिया बिंद हो गया है।
6: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतिया बिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा बिना टाका, बिना इंजेक्शन बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी। शुगर से खराब हुए आँखों के पर्दे का इलाज नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनैन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।
7: महफिल गजल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भूपिंदर और आशा भोसले को।

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अब नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतिया बिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: महफिल गजल कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में ये गजल।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम महफिल गजल। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड, न्यूज ऑन AIR ऐप, वेब्स, OTT पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
0: हेलो अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं।

0: को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आप हमसे बात करने के लिए 7376 80 40 90 इस नंबर को डायल करें और हमसे बात करें, सुने अपनी पसंद के गाने। और हमारे एक कॉलर लाइन पर हैं, हम इनसे बात करेंगे। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर, मैं अनु पांडा बात कर रही हूँ गोंडा से।
0: जी अनु जी, क्या हाल चाल है? नियमित श्रोता हैं आप, अक्सर फोन कॉल आती
1: जी
0: है।
1: सर,
0: आज सर, तो बारिश की बूंदे पड़ रही, आज बारिश की बूंदे पड़ रही वहाँ भी?
1: जी सर, बारिश आज कल से हो रही है।
0: अच्छा जी, तो और बताइए, ऐसे में क्या कर रही हैं आप?
1: सर ऐसे में ना कुछ अच्छा अच्छा बना के खा रही हूँ और रेडियो सुन रही हूँ, गाने सुन रही हूँ, आपका शो सुन रही हूँ। और अभी आपने जीत गुंजन किया, इतने अच्छे अच्छे गाने चलाए कि हम लोग एकदम सुनने पर मजबूर ही हो गए।
0: क्या बात है, आपको गाने पसंद आए, ये अच्छी बात है। तो जो आपने कहा कि अच्छी अच्छी चीज बना के खा रही, तो क्या बनाया है आज आपने?
1: आज तो सर अभी इस टाइम कुछ विशेष नहीं बनाया है।
0: अभी तो आपने कहा कि अच्छी अच्छी चीज बना के खा रहे हैं।
1: अरे सर, तो है कल थोड़ी ना खा रहे हैं।
0: अरे हम छीन थोड़ी लेंगे, हम छीन थोड़ी लेंगे, बता दो क्या बनाई थी।
1: अरे नहीं सर, नजर लग जाएगी, आप आओ ना घर पे, तो फिर आपको ढेर सारी चीजें बना के खिलाएंगे।
0: ये बताइए, हमारी आपकी बात ऑडियो में हो रही, हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक नजर कैसे लगेगी?
1: लग सकती है सर, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं ना, तो फिर नजर लग जाएगी।
0: अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, आपके खाने को नजर न लगे, आप जो भी बनाई है उसको खूब अच्छे से खाइए और पूरा बरसात का आनंद लेते हुए, आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए खूब खुश रहिए। गाना कौन सा सुनेंगी आप?
1: लेकिन सर आज आपने गीत गुंजन में जो भी गाने चलाए, जिस भी फिल्म से चलाए, मुझको ना सारे बहुत अच्छे लगे।
0: ये आपकी अच्छी बात है कि आपको गाने पसंद आते हैं, और हमारा सिलेक्शन यही रहता है कि हमेशा आपको गाने पसंद आए। गीत आज कौन सा, अभी इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: सर हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है चोरनी और गाने के बोल है दिल चोरी साडा हो गया।
0: दिल चोरी साडा हो गया, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये नगमा।
1: ओके सर, बाय।

0: दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए की करिए, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत सा नगमा फरमाइश किया था। आइए अगले कॉलर को हम लाइन पर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, नाम बताइए अपना।
1: सर अनु रावत, बदन का पुरा, सुहावा जिला जद्दा से।
0: क्या बात है अनु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: सर बढ़िया है, आप कैसे हैं?
0: एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है आजकल। और बताइए।
1: सब बढ़िया है सर। आपका जितनी भी आपने आज गजल दोनों सुनवाई, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों गजलों से हो।
0: किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, और हया को कितनी हिफाजत से पाल रखा है, ये दोनों गजल
1: ये
0: हमने सुनाई।
1: 2012 में लगभग बजता था, तब हम सुनते थे ज्यादा।
0: अच्छा जी, अच्छी बात है आपको ये गजल पसंद आई। आज कौन सा गाना आप पसंद करेंगी सुनना?
1: सर गंगूबाई काठियावाड़ी का।
0: कौन सा गीत सुना है?
1: सुना है कि उनको शिकायत बहुत है।
0: क्या बात है, शिकायत तो सारे जमाने को है, सबको है, लेकिन जहाँ मोहब्बत होती है वहीं शिकायत भी होती है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा नगमा। जी
1: सर
0: जी,
1: आप जो लोकगीत गाते हैं, आपकी लोकगीत बहुत अच्छी होती है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको लोकगीत हमारे पसंद आते हैं, ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिए।
1: हम एक काजल लीक से होता, काजल सिस्टर हैं, उनको ये कहना चाहते हैं, उनकी एक 15 अगस्त के दिन जो है एक शायरी अधूरी रह गई थी, वो जहाँ भी सुन रही हूँ तो आप प्रयास करिएगा कि वो मतलब शायरी दोबारा में सुनाए, वो बहुत अच्छी शायरी थी, उनकी अधूरी रह गई थी।
0: चलिए, अब उन तक अगर बात पहुंची होगी तो आपकी तमन्ना जरूर पूरी होगी। आपने कॉल किया और फरमाइश की है, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: थैंक यू सर।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: हेलो अयोध्या कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त गणेश सिंह के साथ। कार्यक्रम में बने रहने के लिए 7376804090 जी हाँ 7376804090 इस पर कॉल करें और हमसे बातें करें। और देखिए हमारे एक कॉलर आ भी चुके हैं। हेलो
2: जी नमस्ते सर।
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
2: जी मेरा नाम सरोज वर्मा है, मैं ग्राम रतनपुर कोल्टो परसराम पर बेटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ।
1: और बताइए सरोज जी क्या हाल चाल है आपके?
2: जी सर सब हाल चाल सब बढ़िया है, बस अपना बताइए।
1: एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। ये बताइए सरोज जी, हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई एक रील देखते हैं मोबाइल में तो ऐसा क्या हो जाता है कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद अनगिनत रील हम देखने लगते हैं?
2: जी सर ऐसा होता है कि हम एक जब देखते हैं, जब तक नहीं देखते हैं तब तक हाँ ये कुछ नहीं है, सामने वालों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये पता नहीं क्या देखता है, लेकिन जब हम उस पे जाते हैं तो हम भी वही करने लगते हैं।
1: ऐसा क्यों होता है कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ ये बात सोच करके, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। और जब कुछ देर बाद जब होश में आते तो सोचते हैं अरे ये तो मैंने अपना बहुत सारा टाइम खराब कर दिया।
2: जी जी जी सर ऐसे ही होता है, ये सबके साथ ऐसा ही होता है।
1: क्यों होता है इसका कोई जवाब है? क्यों होता है कभी सोचा आपने? बहुत परेशान रहता हूँ ये बात सोच करके, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। और जब कुछ देर बाद जब होश में आते तो सोचते हैं अरे ये तो मैंने अपना बहुत सारा टाइम खराब कर दिया।
2: जी जी जी सर ऐसे ही होता है, ये सबके साथ ऐसा ही होता है।
1: क्यों होता है इसका कोई जवाब है? क्यों होता है कभी सोचा आपने?
2: जी सर सोचा तो है क्यों होता है, लेकिन बट ऐसे देखने की आदत हो जाती है, लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं तो आदत छूट भी सकती है, ऐसी बात नहीं होती है।
1: अच्छा,
2: मैं तो नहीं देखती।
1: चलिए अच्छी बात है। गाना कौन सा आज आप सुनना पसंद करेंगी?
2: जी सर आशिकी टू का।
1: आशिकी टू का कौन सा गाना सुना दिया जाए आपको?
2: जी सर कोई भी गाना चला दीजिए आशिकी टू मूवी से।
1: चलिए कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए आकाशवाणी अयोध्या से, सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम, सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा नगमा।
2: ओके सर थैंक यू।

0: एक और कॉलर लाइन पर हैं, हम इनसे भी बातें करेंगे। हेलो,
1: जी
0: नाम बताएं अपना।
1: देवानंद मिश्रा।
0: देवानंद जी, क्या हाल चाल हैं आपके?
1: ठीक है सर।
0: अच्छा, आपका नाम है देवानंद, तो क्या आप आनंद में हमेशा रहते हैं कि नहीं रहते? हंस रहे हैं आप भैया, इतना बढ़िया नाम है आपका, देव धन आनंद,
1: नाम
0: देवानंद।
1: तो ठीक
0: हैं, हमने सुना था कि जथा नामे तथा गुणे होता है, तो देवानंद हैं आप, इसीलिए हम पूछ रहे हैं आनंद में रहते हैं कि नहीं रहते।
1: ठीक है सर।
0: ठीक है,
1: जी
0: गाना कौन सा सुनना
1: जी
0: चाहेंगे आज?
1: इसका सी फरहाद का सुनना था, उसका दिल अपना प्रीत पराई का।
0: दिल अपना प्रीत पराई का। चलिए, कॉल
1: या
0: करने के
1: तो
0: लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: तेरी
0: जी।
1: फरहाद का
0: चलिए, दोनों में से किसी एक नगमे को हम आपको सुनाते हैं। कॉल करने के लिए बहुत
1: गुजरा
0: बहुत
1: हुआ
0: धन्यवाद।
1: जमाना आता नहीं दोबारा।

0: और ये देखिए हमारे कॉलर लाइन पर हैं, हम इनसे बातें करेंगे। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, नाम बताएं।
1: हमारा नाम है विक्की यादव।
0: विक्की जी अयोध्या से बोल रहे हैं। गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: गाना बढ़िया सुनवा दीजिए कोई सर।
0: कोई भी गाना बढ़िया सा सुना देंगे। और बताइए क्या करते हैं आप?
1: बढ़िया है सर, प्रभु की माया है।
0: प्रभु की माया है, कहीं धूप है तो कहीं छाया है।
1: जी सर, जी
0: यही तो है।
1: जी जी जी।
0: और क्या करते हैं आप?
1: गाड़ी चलाते हैं सर।
0: गाड़ी चलाते हैं, तो जब गाड़ी चलाते हैं तो हमने देखा है कि जितने लोग गाड़ी चलाते हैं वो गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो रेडियो से सुने।
1: चलता ही सफर में वही है सर।
0: हाँ, सफर में जब चलिए तो
1: साथी है।
0: हाँ सही कहा आपने। अच्छा, अगर ये गीत संगीत ना होता तो ये जो गाड़ी चलाने वाले आजकल क्या, हमेशा जो गाड़ी चलाते हैं उनका समय कटना बड़ा मुश्किल हो जाता ना। हाँ, समय नहीं कट पाता ना, क्योंकि गीत ऐसा चीज है कि लगा दो और सुनते रहो, उसमें ना देखने की जरूरत है ना समझने की जरूरत है, बस झूमते हुए निकल जाओ दूर सफर पे।
1: समझने ही नहीं आएगा।
0: हाँ सही बात कही आपने। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।
1: जी बढ़िया गाना सुनवा दीजिएगा हमको।
0: एकदम लल्लन टॉप वाला सुनाएंगे, ठीक है? नमस्कार।

करता हूँ। ये था हमारा आज का हेलो अयोध्या कार्यक्रम। इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त गणेश सिंह को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आपने सुना फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड, न्यूज ऑन AIR ऐप, वेब्स OTT पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: शूटिंग खेल में चुनौतियां और संभावनाएं। राष्ट्र स्तरीय निशानेबाज व कोच सत्यम सिंह से बातचीत कर रहे हैं चंदन सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार। निशानेबाजी यानी शूटिंग एक ऐसा खेल है जहां जीत और हार का फैसला मात्र मिलीमीटर के अंतर से तय होता है। यह खेल एकाग्रता का है, शारीरिक स्थिरता का है और मानसिक दृढ़ता का है। और पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें,
2: सीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
3: निशानेबाज कैसे बने? प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया।
4: योजना के 6 लक्ष्य,
5: अगर आपका निर्णय अनुशासित है तो आप सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य भेदक बन सकते हैं
1: जी।
5: और एक चीज इसमें और भी हम जोड़ना चाहते हैं कि इसमें नियंत्रण और अनुशासन, ये 2 चीज ऐसी है जो कि मुख्य रूप से इसका अनुपालन करते हैं
1: जी। अच्छा, निशानेबाजी की अगर हम बात करें या जिसे शूटिंग कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
5: सर, मुख्य रूप से निशानेबाजी में 3 तरह की प्रतिस्पर्धा होती है
1: जी।
5: एक राइफल, दूसरी पिस्टल और तीसरी शॉटगन, जिसे हम अपने भाषा में बंदूक भी कहते हैं
1: जी।
5: और इन तीनों प्रतिस्पर्धा में, जैसे कि पिस्टल में हमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज में मैचेस होते हैं
1: जी।
5: जैसे 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल, 25 मीटर

0: स्टैंडर्ड पिस्टल, 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल एंड 50 मीटर फ्री पिस्टल एंड 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल
1: जी।
0: और उसी तरह से राइफल वर्ग में 10 मीटर राइफल, 50 मीटर राइफल प्रोन, 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन और 300 मीटर के लिए इस वर्ग में हमारी बिग बोर की प्रतियोगिता होती है जो कि 300 मीटर की दूरी से खेली जाती है। उसमें भी दो इवेंट होते हैं, एक 50 मीटर, एक 300 मीटर प्रोन और 300 मीटर थ्री पोजीशन।
1: जी अच्छा, जो मुख्य जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वो किस तरह की होती है? जैसे आपने 10 मीटर की बात की एंड देन फिर बाद में आपने और अन्य प्रतिस्पर्धाओं के बारे में बताया, आपने कुछ कंपटीशन के बारे में बताया, तो वो कैसी होती हैं, थोड़ा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बता दें आप।
0: देखिए सर, मुख्य रूप से हमारे इस खेल में प्रतिस्पर्धाओं को अलग अलग चैंपियनशिप, अलग अलग प्रतियोगिताओं के हिसाब से अलग अलग वर्ग के खेल को इसमें रखा गया है। जैसे कि चूंकि यह हमारा जो खेल है शूटिंग, यह 1907 में इसकी हमारे फेडरेशन की स्थापना हुई थी, जबकि 1897 से यह ओलंपिक में खेला जा रहा है, ओलंपिक
1: जी।
0: इसमें मुख्य रूप से पहले जितने भी कैटेगरीज मैंने बताई, जितने भी खेल मैंने बताए हैं, वो सारे होते थे, बट अभी कुछ रिसेंट चेंजेस हुए हैं और उसमें क्या हुआ है कि कुछ बाकी सारे वर्ग को हटा करके मुख्यतः सारे कैटेगरीज में से एक दो इवेंट्स को ही सिर्फ ओलंपिक में जगह दिया गया है। जैसे कि पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल मेन, 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल वुमेन एंड 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन। ये चार कैटेगरीज हमारी पिस्टल में है और राइफल में 10 मीटर एयर राइफल मेन, 10 मीटर एयर राइफल वुमेन
1: जी,
0: 50 मीटर थ्री पोजीशन मेन, 50 मीटर थ्री पोजीशन वुमेन
1: जी।
0: ये हमारी राइफल की चार कैटेगरीज हैं जो कि हम ओलंपिक में खेलते हैं। और शॉर्ट गन में हमारे ट्रैप है, ट्रैप मेन एंड ट्रैप वुमेन
1: जी,
0: स्किट मेन एंड स्किट वुमेन
1: जी। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, आपने ओलंपिक की बात की और जब हम निशानेबाजी की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हम जान पाते हैं कि ओलंपिक जैसे खेलों पे या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई अगर खेल हो रहा है तो वहां से हम समझ पाते हैं कि निशानेबाजी में ये प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो आपने जैसे 10 मीटर के बारे में बताया एंड देन 25 मीटर के बारे में आपने बताया, फिर आपने ट्रैप के बारे में बताया, ऐसा इन सब कॉम्पिटिशन के बारे में बताया, तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये 10 मीटर की प्रतिस्पर्धा में क्या करना होता है या जो और भी प्रतिस्पर्धा है उसमें क्या करना होता है, उनका नाम के साथ आप बता दें।
0: सर देखिए, 10 मीटर प्रतियोगिता जो है ये मात्र इवेंट हमारी है
1: जी,
0: जिसमें कि मदर इवेंट हम इसको कहते हैं। बेसिक सारी यहीं से स्टार्ट होती हैं
1: जी,
0: और जनरली जो भी शूटिंग स्टार्ट करता है वो 10 मीटर पिस्टल या 10 मीटर राइफल से ही स्टार्ट करता है
1: जी।
0: और इसमें होता क्या है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में हमारी दूरी जो होती है वो हमारी हमसे 10 मीटर दूरी पे टारगेट को रखा जाता है। जो एयर पिस्टल में जो टारगेट जिसे हम जिस लक्ष्य को हमें भेदना होता है वो 0.5 मिलीमीटर के लिए हम उस लक्ष्य को भेजते हैं वो होता है, और राइफल में 0.1 मिलीमीटर पे हमारा टारगेट होता है
1: जी।
0: उस टारगेट को हमें 1 घंटे 15 मिनट में 60 बार एक ही जगह पे हिट करना होता है, उसका अभ्यास हम करते हैं
1: जी।
0: ये एयर पिस्टल का हो गया। ऐसे ही 25 मीटर में दूरी 25 मीटर हो जाती है, जो हमारा कैलिबर है, जो हमारा एम्यूनिशन का कैलिबर है वो चेंज हो जाता है। एयर पिस्टल में 0.177 बोर का कैलिबर का हम लोग यूज करते हैं पैलेट्स, और 25 मीटर पिस्टल में 0.22 बोर का एम्यूनिशन हम लोग यूज करते हैं, जिसकी की मारक क्षमता ज्यादा होती है तो, और उसकी दूरी भी 25 मीटर हो जाती है, और इसमें आपके जो शस्त्र हैं वो भी बदल जाते हैं
1: जी।
0: वो अलग तरीके के शस्त्र हो जाते हैं, इसमें हम लोग मैगजीन भी यूज करते हैं इस इवेंट में
1: जी।
0: और इसके जो टारगेट होते हैं इसमें हम लोग 0.5 mm से लेकर के 1 मिलीमीटर तक का हमारा लक्ष्य होता है, जिसे कि हमें इसकी टाइमिंग अलग होती है, इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें हमें उसको भेदना होता है
1: जी
0: जी। और ट्रैप शूटिंग बेसिकली सर ये आउटडोर शूटिंग है
1: जी।
0: जनरली हम लोग अगर देखा जाए तो जो भी हमारे ओलंपिक्स या बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें जो हमारा क्वालिफिकेशन राउंड होता है या जो भी हमारा फाइनल राउंड होता है, जनरली ये इंडोर खेला जाता है, 10 मीटर, 25 मीटर एंड 50 मीटर
1: जी।
0: लेकिन जो ट्रैप है ये प्रॉपर हमारा आउटसाइड गेम है, और इसमें क्या होता है कि दो तरह के इवेंट होते हैं, एक ट्रैप होता है, एक डबल ट्रैप होता है। पहले दोनों कंसीडर किया जाते थे, बट अभी रिसेंट चेंजेस हुए, डबल ट्रैप को हमारे बाकी सभी चैंपियनशिप से डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, और इवेंचुअली अभी कुछ दिनों के बाद मे बी नेक्स्ट ईयर से ये नेशनल में भी ये हमारा डबल ट्रैप इवेंट नहीं रहेगा। बट ट्रैप में दो इवेंट फिलहाल खेले जाते हैं, ट्रैप और डबल ट्रैप
1: जी।
0: ट्रैप और डबल ट्रैप में बेसिक डिफरेंस ये है कि

0: हम ट्रैप में हमें दो शॉट मिलते हैं एक टारगेट को हिट करने के लिए, जो हमारी क्ले बर्ड्स होती हैं वो एक मशीन के थ्रू एक निश्चित स्पीड में एक निश्चित दिशा में वो जाती हैं, और जिनकी दूरी मतलब टारगेट हम जहां तक अचीव कर सकते हैं वो लमसम 30 से 40 मीटर, 50 मीटर इस तरह से तक हम उसको चेज कर सकते हैं। और डबल ट्रैप में क्या होता है कि हमें दो टारगेट को हिट करना होता है, दो शॉट मिलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ट्रैप और डबल ट्रैप में। ये गेम क्या होता है, इसमें हम शॉटगन यूज करते हैं इसको खेलने के लिए। इसमें पांच प्लेटफॉर्म बने होते हैं, बेसिकली होते 6 प्लेटफॉर्म हैं, पांच हमारे फ्रंट पे होते हैं और जो छठवां प्लेटफॉर्म होता है वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म के जस्ट बिहाइंड पीछे होता है। तो इस तरह से हम देखें तो हमें एक साथ में इसमें 6 लोग प्रतिभाग करते हैं, और जब हमारा पहला खिलाड़ी शूट करेगा तो वो अपने प्लेटफॉर्म से हट करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, और जो छठवां प्लेयर रहेगा वो पहले प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। इसी तरह से रोटेशन होता रहता है, और हमें हर एक प्लेटफॉर्म से मतलब पांच प्लेटफॉर्म से फायरिंग करनी होती है, छठवां प्लेटफॉर्म हमारा वेटिंग एरिया होता है,
1: जी
0: और पांच अलग अलग जगह से खड़े होकर के हमें शॉट लेना होता है, टारगेट को हिट करना होता है। और डबल ट्रैप में भी सेम प्रोसेस होता है, बस उसमें हमें दो चांस मिलते हैं ट्रैप में, और इसमें हमें दो शॉट के लिए दो टारगेट होते हैं।
1: जी
0: ये हमारा ट्रैप और डबल ट्रैप हो गया।
1: तो आपने जो कंपटीशंस बताए, जो भी प्रतिस्पर्धाएं आपने बताई हैं, उसमें आपने बताया कि 10 मीटर मेल के लिए होता है और 10 मीटर फीमेल के लिए होता है, विमेन का जो होता है कैटेगरी होता है। अच्छा, लगाना तो सिर्फ निशाना ही है, तो फिर दो कैटेगरी क्यों रखी गई है? क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा मस्कुलिन पावर यूज होना नहीं है, तो महिलाओं में और पुरुषों में ये अलगाव क्यों किया गया है, इसके बारे में बता दें।
0: सर बेसिकली ये डिफरेंस बहुत सारी चीजों को देखते हुए किया गया है, जैसे कि जो हमारी महिलाओं का क्वालिफिकेशन स्कोर होता है वो हम लोगों से कम होता है और पुरुषों का ज्यादा होता है। चूंकि ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा मतलब इसमें स्ट्रेंथ तो यूज होती ही है,
1: जी
0: और पहले से ये चीजें चली आ रही हैं कि थोड़ा सा गर्ल्स को, जो भी हमारी महिलाएं हैं उनको इसमें मोटिवेट करें, ज्यादा मौका मिल पाए और उनकी एक अलग कैटेगरी हो। तो इसमें हमारा एक मिक्स इवेंट भी कराया जाता है जिसमें कि दोनों साथ में खेलते हैं, साथ में रिजल्ट बनता है, साथ में हम उनका मेडल लेते हैं। तो ये भी है हमारे यहाँ है, बट चूंकि हर जगह पे ऐसा है इस वजह से इस गेम में भी मेल फीमेल का वो किया गया है।
1: जी अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा मैं कि एक सफल शूटर बनने के

0: अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा मैं कि एक सफल शूटर बनने के लिए किस किस तरह की ट्रेनिंग से गुजरनी पड़ती है?
1: सर, सफल शूटर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप सही समय पे और सही जगह पे ट्रेनिंग लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी भी कहीं भी ट्रेनिंग लेना, और प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ट्रेनिंग को मतलब शुरू में बहुत प्रॉपर टाइम से करते हैं, अच्छे से करते हैं, बट बाद में वो जा करके उस चीज को फिर एज अ हॉबी ट्रीट करने लगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। शूटिंग अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले शूटिंग खेल के बारे में जानें, अन्यथा इसकी सिर्फ खूबसूरती को और इसमें सिर्फ इसके मतलब अच्छी चीजों को, कि जैसे हमें फिल्मों में शूटिंग होती है उस तरह से कुछ इमेजिन करके ना जाएं, क्योंकि ये इस गेम में पूरी तरीके से आपकी सभी चीजों का परीक्षा होता है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, और चाहे वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस गेम में नहीं चाहते हुए भी इतना आप इकोनॉमिकल ये गेम नहीं है, आपको उस तरह से माइंडसेट बना करके इस गेम को स्टार्ट करना चाहिए, और एक अच्छे कोच, एक अच्छे गाइडेंस में अगर आप करेंगे तो बेहतर करेंगे आप और अच्छा करेंगे।
0: जी, अच्छा, जो युवा इस खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर तक पहुंचने के लिए किन-किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है?
1: जो भी युवा इस खेल को खेलना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो किसी भी सरकारी क्लब या किसी भी एकेडमी पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, या किसी भी सीनियर खिलाड़ी से वो मिल सकते हैं, किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें बहुत ही मामूली प्रक्रिया होती है, जिसमें कि हम एक फॉर्म हमारा होता है एसोसिएशन का, उसे हमें फिलअप करना होता है, वहां रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जब हम वहां रजिस्टर करते हैं खुद को तो वो ₹600 उसकी उसका शुल्क होता है, ₹590। उसे हम फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारे दो एसोसिएशन है, एक स्टेट एसोसिएशन है और एक मेरा नेशनल एसोसिएशन है। दोनों जगह आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। उसके बाद जितने भी कंपटीशन आते हैं, तो जब आप जिस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस पोर्टल पे उन सारे कंपटीशंस की सूची दी जाती है कि कब कौन सा कंपटीशन होने वाला है, और उसके बाद उसमें आप जिस भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसमें आप अपनी एंट्री कर करके और आप सीधे जाकर के प्रतिभाग कर सकते हैं।
0: जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप जो निशानेबाजी जो खेल है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं सभी श्रोताओं से निशानेबाजी के बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग, जो लोग भी निशानेबाजी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं या खेलते हैं, आप सभी लोग इस गेम को सिर्फ इसलिए ना खेलें कि हमें इंटरनेशनल ओलंपिक या इस तरह से खेलना है। इसके बहुत सारे और भी क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है, जैसे कि बहुत सारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जाकर रुक जाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो एक मन में ये होता है कि हमने ये गेम क्यों चुना या अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बेसिक समस्या आती है, और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ये समस्याएं आती हैं आगे चल के, जो भी युवा हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप इसके, अब हमारी जो शूटिंग है ये एक पीएसजी जैसे एचडी कोर्स में भी इसका इसमें आप उपयोगिता है, और ये कोर्स एज अ मतलब आप कर सकते हैं, इससे पीएचडी कर सकते हैं, और दूसरा मतलब इससे आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, आप कोच भी बन सकते हैं, आप ज्यूरी बन सकते हैं, आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप बहुत सारे, इसमें बहुत स्कोप है।
0: जी,
1: तो आप अगर एज अ खिलाड़ी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका अदर सेगमेंट में जाकर के उसमें अपना करियर बना सकते हैं।
0: सत्यम सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और निशानेबाजी से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे शूटिंग खेल में चुनौतियां और संभावनाएं। इस विषय पर राष्ट्र स्तरीय निशानेबाज व कोच सत्यम सिंह से चंदन सिंह की बातचीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपके लिए प्रस्तुत है एक और भेंट वार्ता, जिसका विषय है क्या है रेस वॉकिंग। अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकर रानी यादव से बातचीत की है चंदन सिंह ने।
0: श्रोताओ, मैदान चाहे क्रिकेट का हो या फिर मुक्केबाजी की रिंग हो या फिर एथलेटिक्स का ट्रैक, खेल सिर्फ हमारी शारीरिक परीक्षा ही नहीं लेते हैं बल्कि हमारे अनुशासन की भी परीक्षा लेते हैं। इसी संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ही प्रतिस्पर्धा की, जहां पे सख्त नियमों के अंदर ही आपको अपनी गति और अपने संतुलन का परिचय देना होता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा की। तो क्या है रेस वॉकिंग और क्या कुछ है इसमें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं

0: रानी यादव जी, आप अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हैं, हमारे स्टूडियो में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार सभी को मेरा। मुझे बहुत खुशी हुई जो आपने ऐसा मंच हमको दिया।
0: जी, तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं आप रेस वॉकिंग को अपने करियर अपना कैसे बनाया।
1: पहले तो मेरा स्टार्टिंग गेम जो था वो हैंडबॉल था, और हम लोगों का स्टार्टिंग स्पोर्ट्स का स्कूल से स्टार्ट हुआ। वहाँ हमारी गेम टीचर थी, अब नहीं है हम लोगों के बीच में, तो वो हम लोगों को हर गेम के लिए लेकर के जाते थे। तो पहले हमें पता नहीं था एथलेटिक्स में कितने इवेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया उसमें दिन प्रतिदिन हम लोगों ने अच्छा भी किया, प्लस उसके साथ साथ अपनी जागरूकता को भी इंक्रीज किया कि इवेंट है तो कैसे है, कैसे होता है, कहाँ होता है। और चूंकि हम लोग स्कूल लेवल पे जब खेलते हैं तो हमें इतना नॉलेज नहीं होता है कि हमें ओपन टूर्नामेंट कैसे खेलने हैं, कहाँ जाना है, कैसे एंट्री करानी है, इसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है तो कहाँ जाना है, क्योंकि एक स्कूल का लाइन और स्पोर्ट्स का लाइन बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो स्कूल में जब सीजन आता है कि इंटर कॉलेज के नेशनल होने हैं, स्टेट होने हैं, तो आपको जाना है, पार्टिसिपेट करना है, अपने स्कूल के लिए मेडल जीत करके लाना है। लेकिन उसी बीच में कुछ कुछ ऐसे खिलाड़ी हो जाते हैं कि मतलब वो ऐसे टाइम पास में भी एक्चुअल खिलाड़ी बन जाते हैं। तो हमने कोई मतलब घर से ऐसा सोच के नहीं किया कि हमें स्पोर्ट्स करना ही है, और जब हम करना भी शुरू कर दिए तो हमें जब मेडल आना शुरू हो गया
0: जी,
1: सन 2000 से हमने अपना स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट कर दिया था। एथलेटिक्स में मैं 2002-2003 के आसपास आई, तो सिगरा स्टेडियम में हमारे एक सीनियर थे जो ट्रेनिंग किया करते थे, उनको देख करके मतलब हम लोग जब स्टेडियम में जाते तो हैंडबॉल में क्या था कि शूटिंग पासिंग करने के बाद बिठा देते थे साइड पे कि आप गेम देखो, स्किल देखो कैसे होता है कैसे नहीं होता है। फिर हमें लगता था यार हम यहाँ आते तो हैं, इतना टाइम देते तो हैं, आके बैठने के लिए तो नहीं आते, तो हमें अपने इस टाइम को भी यूज करना चाहिए। तो एक दिन गए हम, बोले भैया ऐसे से हम ये इवेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमको और इवेंट के बारे में नॉलेज नहीं था कि एथलेटिक्स के अंडर में इतने इवेंट आते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट ये हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन मतलब इसमें बहुत मेहनत है, कर लोगी? हाँ, मैंने बोला हाँ मैं कर लूंगी। तो उस टाइम 160 में 3 किलोमीटर होती थी
0: जी।
1: तो फर्स्ट टाइम मैंने बात करके फिर ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे धीरे धीरे मेडल भी आने शुरू हो गए थे। तो पहला मेरा नेशनल में 2004 में मेरा मेडल था
0: जी। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं आप कि आपने रेस वॉकिंग में कौन कौन से कंपटीशन में आपने भाग लिया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी आपने कौन कौन से गेम खेले हैं, वो भी उसके बारे में बता दें।
1: मैंने 2004 से लेकर के 2008 तक जूनियर कंपटीशन जितने भी होते थे, एक साल में 3 से 4 कॉम्पिटिशन होते हैं, तो वो 2004 से लेकर 2008 तक सारे कॉम्पिटिशन में मेरे गोल्ड थे। 2008-9-10 कंटिन्यूअस ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं
0: जी।
1: और मेरे एजुकेशन इधर विद्यापीठ से थी, प्लस उसके साथ 2009 में सीनियर नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट हुई मैं। तो मेरा मतलब स्पोर्ट्स बैकग्राउंड भी किसी हॉस्टल और किसी बड़े कोच के उससे नहीं था, अपना मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, देखते गए जहाँ ट्रेनिंग अच्छा होता गया। तो सबसे ज्यादा हेल्प मुझे मिला सीनियर्स का, सीनियर्स का इसलिए कि वो लोग ट्रेनिंग करते थे, उनसे अगर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते थे, हम लोग बात करते थे, तो वो मतलब जो जूनियर बच्चे उनके पास थे या जूनियर बच्चे ट्रेनिंग करते थे तो उनके साथ हमें भी जगह देते, कहते चलो करने में इंटरेस्टेड है लड़की तो उसको भी जगह देना है इधर करने के लिए। तो उसका बेनिफिट यह होता था ना कि एक लड़के के साथ अगर आप प्रैक्टिस कॉम्पीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छा होगा
0: जी।
1: 2010 में हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स में 6th पोजीशन था, एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप भी मैंने पार्टिसिपेट किया, रशिया में, जापान में, चाइना में। बाकी सीनियर जूनियर के मिला करके लगभग 45-50 के एवम में मेडल होंगे हमारे
0: जी। अच्छा, हम एथलेटिक्स की जब हम

0: बात करते हैं तो एथलेटिक्स में विभिन्न तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं, अलग अलग तरह की प्रतिस्पर्धाएं हैं, उसमें रनिंग आ जाता है, फिर और भी तरह के इवेंट्स होते हैं। तो ये रेस वॉकिंग जो होता है ये रनिंग से कितना अलग है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: पहले तो वॉकिंग रेस के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि वो है क्या
0: जी,
1: और वो भी एक मतलब रनिंग टाइप सा ही है, लेकिन उसमें रनिंग में और वॉकिंग में इतना अंतर है। जैसे कि रनिंग जो करते हैं हम टो पे करते हैं, और जो वॉकिंग करते हैं हम हील बाल टो करते हैं। मतलब वो इसकी लैंडिंग होती है कि हील पहले लगाएंगे फिर बाल से टो होते हुए ये ऐसे चलता रहता है
0: जी।
1: इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे आपका नी बैंड नहीं होना चाहिए और लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे वॉकिंग करने के टाइम में एक पैर हमेशा ग्राउंड के टच में होना चाहिए, कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। अगर वो ग्राउंड का टच छोड़ता है तो कि आप रनिंग कर रहे हो।
0: अच्छा,
1: तो ये अंतर होता है। स्पीड वैसी ही होती है क्योंकि भाई रनर भी ट्रेनिंग कर रहा है और वॉकर भी ट्रेनिंग कर रहा है। तो जब किसी चीज पे हम अभ्यासरत रहते हैं तो वो बढ़ती है, घटती तो है नहीं।
0: अच्छा जी। अच्छा, इसके नियम भी हमारे श्रोताओं को आप बता दें जल्दी जल्दी में कि जो रेस वॉकिंग कंपटीशन है इसके क्या क्या नियम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर।
1: इसमें ये है कि जैसे कि नी बैंड नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, ये एक तरीके से फॉलो होता है। अगर रेस हो रहा है तो इसके टेक्निकल जज होते हैं जो देखते हैं। ये आम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो रनिंग कर रहा है कि वॉकिंग कर रहा है, लेकिन कई कई क्लियरली भी रनिंग करते हैं वो तो एक आम जनता पकड़ सकती है, लेकिन जो इसका टेक्निकल पॉइंट होता है वो टेक्निकल जज ही देख सकते हैं। तो इसका भी एक होता है कि आपको जोन बना देते हैं, पेनाल्टी जोन, वो स्टार्टिंग लाइन से 70 मीटर पीछे होता है, और उसमें जैसे कि 3 रेड कार्ड जब आ जाता है एक खिलाड़ी को तो उसको जितना ड्यूरेशन होगा जैसे 1 मिनट या 30 सेकेंड या 1.5 मिनट, तो उस हिसाब से उसको उतने देर तक के लिए उस बॉक्स में खड़ा कर दिया जाता है, और उसका एग्जिट पॉइंट भी बना होता है। उसको इधर उधर से कहीं से भी नहीं कि आ गए और कहीं से भी चले गए, एक प्रॉपर उसका पाथवे बनाया होता है, वहां से ही जाना है और उधर से ही निकलना है। तो जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है चीफ जज उधर से सिग्नल देता है, फिर खिलाड़ी निकल के फिर शुरू कर देता है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये था कि रेस कर रहे हैं और ट्रैक में ही आपको वार्निंग मिलती थी, और उसके बाद अगर 3 वार्निंग आ गई तो डिस्क्वालीफाई हो जाता था। अभी अब चांस मिलता है खिलाड़ी को।
0: अच्छा, ये जब किसी को चेतावनी दी जाती है तो क्या ये संभव है कि ये मान लेना चाहिए कि वो खिलाड़ी जो है वो चेतावनी देने के बाद जब वहां पे इतनी देर तक वो खड़े रहेगा तो उसके बाद वो जीत नहीं सकता है?
1: नहीं, अभी जैसे एकाएक चेतावनी तो देते नहीं है, जैसे उसको कौशन दिखाएंगे, नी बैंड का दिखाएंगे या जो भी फॉल्ट हो रहा है उसका पहले कौशन दिखाएंगे, तुरंत दिखा करके नहीं करते। जैसे येलो कार्ड देंगे, 2 येलो कार्ड के बाद एक रेड कार्ड देते हैं, तो वो जब 3 रेड कार्ड आता है तब उसको पेनाल्टी जोन में जाना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: और उसमें भी जो पेनाल्टी जोन में आ गए वो तो खिलाड़ी के जीवन पंती पे है। जैसे कभी कभी कोई खिलाड़ी गिर के भी उठ के अच्छा चलता है, वैसे ही कभी कभी लीड पे है प्लेयर, 1 राउंड की लीड दिया हुआ है सेकंड वाले को, तो ज्यादा से ज्यादा आधे राउंड का लीड कवर हो जाता है, आधे का बचा रहता है, तो वो आधे पर से भी रेस को कंप्लीट करता है। और कोई कोई खिलाड़ी होते हैं नर्वस हो के वही रेस भी छोड़ देते हैं कि अब तो बहुत पीछे हो गए।
0: अच्छा, ये जो रेस वॉकिंग जो प्रतिस्पर्धा है इसके लिए रोजाना क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है और क्या दिनचर्या होती है, किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है, इसके बारे में बताएं।
1: अगर इसके ट्रेनिंग के पर्पज से आप जाएंगे तो ट्रेनिंग तो इसकी कम से कम अगर आप 42 किलोमीटर का टारगेट रख के चल रहे हैं या 10 किलोमीटर का टारगेट रख के चल रहे हैं, अगर 10 किलोमीटर का टारगेट रख के चल रहे हैं तो ऑब्वियस जो भी कोच होता है वो 20 किलोमीटर का टारगेट रख के चलता है प्रैक्टिस में। और ये नहीं है कि सुबह शाम केवल 20 किलोमीटर भगा रहे हैं, उसका हफ्ते भर का एक शेड्यूल होता है, और पूरे हफ्ते भर में हमको लग रहा है कि 10 किलोमीटर वाले को 200 से 250 किलोमीटर का एवरेज निकाल देते हैं। एक पीक पे रेस भागने के लिए एथलीट को इंटरनेशनल लेवल पे मतलब कि ये नहीं है कि 10 किलोमीटर है तो हम उसको एवरेज कम कराएंगे या डिस्टेंस 10 किलोमीटर के हिसाब से कराएंगे। अगर 10 किलोमीटर हमें भगाना है एथलीट को,

0: एक टॉप लेवल पे, तो उसके लिए 250-300, अब जैसा वो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं ऑफ सीजन से लेके फुल सीजन और कॉम्पिटिशन पीरियड, मतलब पूरे एक साल का वो उस हिसाब से प्रोग्राम अपना बना करके कि क्या कराना है क्या नहीं कराना है, उसी में हमारी पावर ट्रेनिंग होती है, रिहैब होता है, मसाज होता है, सोना बात होता है, तो हमको विदाउट ट्रेनिंग ब्रेक किए हुए ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं।
1: जी
0: तो जैसे 5 सेशन ट्रेनिंग हो गई, मंडे मॉर्निंग इवनिंग, ट्यूसडे मॉर्निंग इवनिंग, फिर वेनेसडे मॉर्निंग, और वेनेसडे इवनिंग में रेस्ट देंगे, क्योंकि 5 सेशन के बाद बॉडी में इतनी फटीक हो जाती है कि उसको एक रेस्ट चाहिए ही चाहिए।
1: जी चलते चलते हमारे जो युवा खिलाड़ी रेस वॉकिंग कर रहे हैं और उसमें अपना करियर तलाश रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: को भी यही सजेस्ट करना चाहूंगी, निरंतर अभ्यास करते रहने से फलता जरूर मिलती है, लेकिन आप बंद करके प्रयास मत करिए। पता चला कि हमारी कैपेसिटी 10th के क्लास की है और हम 5th क्लास वाले टीचर के पास पढ़ रहे हैं, तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए समय के साथ साथ बदलाव भी जरूरी है। कोचिंग पे जो आज की युवा पीढ़ी है बहुत शॉर्ट टर्म में रिजल्ट ढूंढती है, मतलब एथलेटिक्स एक ऐसा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है गेम का कि कम से कम 8 साल 9 साल जब ट्रेनिंग एज होती है, बायोलॉजिकल एज नहीं बता रही हूँ, ट्रेनिंग एज, जब इतना अगर आप कंटिन्यूअस ईमानदारी से कर रहे हैं तो 8 साल 9 साल जा करके आप नेशनल में बेस्ट ऑफ 4 में, बेस्ट ऑफ 3 में, बेस्ट ऑफ 2 में घुसना शुरू कर देते हैं।
1: रानी यादव जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और रेस वॉकिंग से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकर रानी यादव से चंदन सिंह की ये बातचीत अभी आप सुन रहे थे, जिसका विषय था क्या है रेस वॉकिंग। इसी के साथ कार्यक्रम खेल दर्पण संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में वाचन आकांक्षा सिंह का था, संपादन और प्रस्तुति चंदन सिंह।
3: राज्य स्तरीय प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी की प्रस्तुति था, जिसे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किया गया।
4: अभी आपने सुना राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण, जिसे हमने अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। लीजिए सुनिए समाचार, पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत

0: की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मैरिज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, CB George, in a media briefing said, the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
3: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved.